0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपनी किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियाँ।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर स्वागत करते हैं आप सबका। हैप्पीनेस इंडेक्स की इस श्रृंखला में बहुत सी बातें सामने आई हैं और अगर पिछली कड़ी को देखें तो याद आता है कि हमने बात की थी कि क्या एंटरटेनमेंट खुशी दे रही है। हम अभी तक ये सोचते थे कि हम टीवी जो देख रहे हैं या फिल्म देखने जाते हैं या किताब पढ़ लेते हैं वो हमें एंटरटेन करती है कुछ टाइम तक, मेरे थॉट्स जो मुझे तंग कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे मुझे दूर ले जाती है, मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। लेकिन फिर ये बात समझ में आई थी कि क्यों कहा जाता है कि टीवी देखना या फिल्म देखना एक एडिक्शन बन सकती है, क्योंकि जैसे ही हम जो वहां सिचुएशंस हो रही थी उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं, उन्हें अपना थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे चूज करने का हक उनको दे देते हैं। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी बात थी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, एक्सपीरियंस करते जाएंगे, हमें समझ में आता जाएगा। आज थोड़ा इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं कि हाउ डज इट रियली वर्क। हमारा सौभाग्य हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: इनफैक्ट सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक अगेन आई कैन अंडरस्टैंड नाउ व्हाई पीपल से कि आप रोज हमारे साथ ड्राइंग रूम में होते हैं, बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स अ जर्नी और हर बार हमारा जो अनुभव है, हम बात यहाँ कोशिश करते हैं समझें, फिर उसे जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एक रिकैप लेना चाहेंगे आपके साथ कि व्हाट रियली हैपेंस जब मैं किसी भी टीवी के प्रोग्राम में या फिल्म में या नॉवल में इन्वॉल्व हो रहा हो।
1: Yeah, it's not that we're not trying to say के हम ये नहीं देखें। Fundamental of course हम choose करें क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि information तो अंदर feed हो रही है। सिर्फ अब ये ध्यान रखें देखते हुए भी कैसे देखें। You know, and it's applicable both the places। जैसे movie को या TV को देखते हुए कैसे देखें, और वही चीज फिर आपकी practical day to day life में आएगी कि ये जो ड्रामा सारा दिन, इसको भी हम ड्रामा ही कहेंगे। माई जर्नी ऑफ लाइफ इज अ ड्रामा। वाई इज इट अ ड्रामा? बिकॉज एक सीन के बाद दूसरा सीन विथ सो मेनी एक्टर्स इन्वॉल्व। तो दोनों तरफ हमें ये सीखने को मिलता कि ड्रामा की हर सीन को कैसे देखें। तो जब हम मूवी देखते या टीवी देखते, जस्ट वॉच योर सेल्फ। अगर आप हाफ एन आवर का सीरियल देख रहे हैं या 3 घंटे की मूवी देख रहे हैं, सिर्फ आज शाम को अगर आप कुछ देखें तो उसको देखते हुए अपने मन को बीच बीच में देख लेना कि वो कैसे कैसे।
0: एक्चुअली आई वॉन्ट टू शेयर व्हाट हैपेंड टुडे। मैं जब आ रही थी तो पहले मैं कुछ अपना सोच रही थी, ड्राइवर ने गाना चला दिया, वो मेरा सबसे फेवरेट गाना था, एकदम से मुझे स्ट्राइक किया, मैं गाना सुनने लग जाती हूँ तो मेरा थॉट खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने इस बार चाहा कि नहीं, मैं जो सोच रही थी वो करती रहूं, बट उसकी अट्रैक्शन इतनी थी गाने की, गानों के शब्दों की, और तब मैंने देखा कि गानों के शब्द ना सिर्फ मुझे इन्वॉल्व करते गए बल्कि वो इमोशन भी क्रिएट होने, क्योंकि मैं देख पा रही थी, हम इस पे बात कर चुके थे इसलिए। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वो इमोशन तक नहीं जाना, मुझे वापस आना है अपने थॉट पर मेरा मन नहीं था आने का मेरे को, क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट मिल रही थी।
1: स्टिम्युलस था ना, वो एक स्टिम्युलस था जो मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट कर रहा था। क्या होता, हैप्पीनेस या पेन दोनों चीज हॉर्मोन्स तो सिक्रीट करती है ना बॉडी के अंदर, एंड द माइंड नीड्स दैट क्रेविंग बट द बॉडी ऑल्सो नीड्स दोज हॉर्मोन्स। इफ आई एम वेरी वेरी स्टेबल, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, दिस ऑल्सो डिवेलप्स धीरे धीरे ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन मेरी बॉडी की कुछ वो होती है, एडिक्शंस होती है, वो हॉर्मोन्स की मुझे आदत पड़ी हुई है, तो मुझे कुछ ऐसा बाहर से चाहिए होता है स्टिम्युलस, कि वो स्टिम्युलस आएगा, वो स्टिम्युलस मेरे अंदर वो इमोशंस क्रिएट करेगा, और जैसे ही वो इमोशंस क्रिएट होंगे मेरे बॉडी के अंदर भी वो हॉर्मोन्स सिक्रीट होंगे एंड आई फील गुड, जैसे कि मुझे वो चीज मिल गई जो वो चाहिए थी। फिर इवन भले वो दर्द के ही यू नो इमोशंस हो, वो एड्रेनालिन सिक्रीट हो, लेकिन वो सिक्रीट हुआ ना, वो बॉडी को जो चाहिए था वो सिक्रीट हुआ, आई फील गुड एंड देन आई से दिस इज एंटरटेनमेंट। यू नो ये मुझे चाहिए, दिस मेक्स मी फील गुड इवन इफ आई हैव क्राइड फॉर हाफ एन आवर। हाउ कैन आफ्टर क्राइंग यू फील गुड अदरवाइज? तो कोई लॉजिक ही नहीं। आप आधा घंटा पिक्चर देखा, आप कितनी बार रोए उसके साथ, यहाँ तक कि आपने हैंकी तक निकालना पड़ गया, एंड देन वी से आई फेल्ट गुड आफ्टर वॉचिंग द मूवी। वॉट फेल्ट गुड? समवेयर दोज इमोशंस गॉट क्रिएटेड, द बॉडी सिक्रीटेड व्हाट इट हैड टू डू, एंड आई वॉज लाइक ओके दिस इज वॉट इज माई नीड। जैसे ड्रग्स है, डैमेजिंग है, लेकिन बॉडी को आदत पड़ गई है ना, तो जब तक बॉडी लेती नहीं है उस चीज को,
0: वो
1: लेना उसको अनकंफर्टेबल लगता है।

0: सो दिस इज अबाउट वॉचिंग आवर माइंड. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे ही हम आकर बैठे टीवी के सामने, पहले थोड़ी देर मेरे मन में कुछ और चल रहा है जो मैं छोड़कर आया हूँ अभी, ऑफिस का काम या घर का. धीरे धीरे वो थॉट्स खत्म हो जाती हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ लिटिल स्टेज वेयर यू आर इन, यू नो, नॉट टू मेनी थॉट्स. दिस माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, क्योंकि ये वो वाली जो बातें लेकर आया था घर, वो बातें तो खत्म हो गई. तो ये माइंड थोड़ा थोड़ा स्टिल हो जाता है. ये जो स्टिलनेस की स्टेज है, ये है कि यू आर हियर, प्रोग्राम इज देयर, एंड आप उसको डिटैच्ड ऑब्जर्वर की तरह आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं. उसका इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर रहता है. धीरे धीरे हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती, वो आती है कि हम जजमेंटल होना शुरू करते हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं ये, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे वट एवर आर ओपिनियन.
1: देखा उसने ऐसे किया तो अब ऐसा ही होना चाहिए. अब व्हाट नेक्स्ट,
0: इवन इन द क्रिकेट मैच ऐसे क्यों,
1: ये बॉल
0: यू सी. सो द सेकंड स्टेज बिकम्स जजमेंटल, कि हम अपना ओपिनियन चाहते हैं कि दैट इज हाउ इट, ऐसे करते तो. इवन द एक्टर्स क्लोज, द सीन, वट एवर, एवरीथिंग, आई स्टार्ट बिकमिंग जजमेंटल. जैसे ही हम जजमेंटल शुरू हुआ, मतलब क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन मार्क की सीरीज में गए, ये जो स्टिलनेस थी वो क्या हो गई,
1: वो खत्म हो गया.
0: बिकॉज वो माइंड ऐसे ऐसे, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ऐसे, तो द माइंड स्टार्ट्स गेटिंग डिस्टर्ब. वो स्टिलनेस हमारी खत्म हो गई. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टेज. द थर्ड स्टेज जो आती, कि हम उस कैरेक्टर की स्टोरी के अंदर ही
1: इन्वॉल्व हो जाते,
0: पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं. एंड दैट स्टेज विल बी कि वो कैरेक्टर जो इमोशन वहां एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इमोशन आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग हियर. तो फिर आई एम टोटली इन द स्टोरी, लाइक पूरी तरह से. देन आई हैव नो अदर थॉट एंड देन आई, माय क्रिएटिविटी इज ओवर, बिकॉज नाउ आई एम ओनली क्रिएटिंग व्हाट दे आर क्रिएटिंग. मेरी अपनी अब कोई नहीं रह गई.
1: उससे पहले तो मैं कर रही थी, वैसे
0: उससे पहले
1: जजमेंटल जब मैं हो रही थी,
0: पर जैसे जजमेंटल हुए तब क्या हुआ, क्रिएटिविटी नहीं थी. जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, आपकी एनर्जी तो उल्टा खत्म होने लगती है, क्योंकि आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. आई कैन सिट अक्रॉस द टेलीविजन एंड कीप ऑन सेइंग व्हाट आई वांट टू से. मैं कितना भी जजमेंटल हो सकती हूँ, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ सामने से बैठकर, और मैं कहूँ ये नहीं पहनना चाहिए था, ये पहनना चाहिए था, ये सेट ऐसा नहीं, कैन आई डू एनीथिंग अबाउट इट. नो, आई एम थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच आर नॉट इन
1: माई कंट्रोल. बट आई हैव अ राइट टू हैव माय ओन ओपिनियन.
0: दैट्स ओके, दैट्स फाइन, यू हैव अ राइट. लेकिन आप बस बैठे हैं और यहाँ आपका माइंड कंटिन्यूसली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है उन चीजों के बारे में जो आपके कंट्रोल में नहीं है. यूजफुल एनर्जी?
1: No, it can't be. Yes.
0: Useful energy?
1: Actually, I know, it's of no use.
0: It's a drain. ये आपका drain शुरू हो गया, कि जो वो stillness थी, वो आपका drainage शुरू हो गया, क्योंकि आप एक एक वो thought create कर रहे हैं जो आपके control में.
1: Actually, और इससे मुझे आदत भी पड़ती जाएगी फिर.
0: Exactly. यही चीज तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आएगी ना, डे टू डे.
1: हर एक को, oh yes.
0: जो आपने कहा, do I not have the right to have an opinion? Yes.
1: So then I'll have my right with
0: सारा दिन भी. ये बिल्कुल सेम चीज फिर रोज के ड्रामा में होती है ना. दैट्स व्हाट वी सेड, जो टेलीविजन के ड्रामा के साथ पहले प्रैक्टिस होती है, वही चीज फिर हैबिट बन गई, तो वही चीज फिर मेरे डे टू डे लाइफ में आती है. सो वी वेंट थ्रू दीज थ्री स्टेजेस, पहले स्टिलनेस, फिर जजमेंटल, एंड तीसरा तो पूरी तरह से इन्वॉल्व. एंड जब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई, तब तो अपनी थॉट क्रिएट करने की मेरी अपनी कैपेसिटी है वो भी भूल गया. मेरी थॉट की पावर मैंने टोटली उस प्रोग्राम को दे दी. नाउ दिस, because I'm doing every day, it's not ki I'm watching a movie just once in a while ya main TV dekh rahi hu once in a while, nahi, hum roz kar rahe hain. To koi bhi cheez jo roz karenge,
1: well, of course,
0: wo ban gayi meri habit. Ab jo humne pichli baar bhi dekha ki agar gussa office mein sirf kar rahe hain ye soch ke ki gusse se kaam hota, lekin wo meri agar ban jati hai habit, to wo habit mere sath har jagah
1: meri personality banti. Yes, now I understand it actually.
0: Ab ye tha, shuru kiya tha jab baith kar dekhna, मैं एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक साक्षी दृष्टा थी, लेकिन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर मैं उस ड्रामा के अंदर पूरी तरह से घुस गई. अब यही चीज फिर सारा दिन होती, क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है. अब धीरे धीरे तो वो साक्षी दृष्टा होना कैसे, वो ही हमें आज नहीं पता चलता. और इसलिए आज हमारी वोकैबुलरी ये हो गई है कि अटैचमेंट तो नेचुरल है, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट कंफर्टेबल नहीं लगता लोगों को, बहुत

0: कोल्ड लगता है कि हम बहुत स्टिल हैं, हम बहुत डिटैच्ड हैं, हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा। लेकिन ये जो असर पड़ने का प्रभाव पड़ने की आदत जो पड़ी थी वो इससे पड़ती
1: हाँ,
0: है।
1: वो कंटिन्यू।
0: यस
1: इनफैक्ट अगर हम देखें, वो जब अभी हुआ था, जब मुंबई का जो अटैक हुआ था, तो उसमें मुझे कितने दिन तक, 2 दिन लगातार चला था, हम पूरा टाइम डिस्टर्ब्ड रहे थे।
0: अब
1: लेकिन हम
0: इसको ही अगर आप देखो जो न्यूज में अगर कोई यस एक इंसिडेंट हुआ है एब्सोल्युटली कि वो नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है बात, लेकिन जब हम उसको 24 घंटा हर रोज स्ट्रेच करते हैं और उसमें हम करते क्या है, किसी के साथ कुछ हुआ हम उसी को लेकर वो रोते हुए को बार बार दिखाएंगे, बार बार उसको पूछेंगे आपको कैसा फील हो रहा है। समवेयर वी आर यूजिंग इमोशंस एंड द अदर पर्सन फीलिंग टू सेल इट इन टू द मार्केट। और क्यों? क्योंकि हम फील करते हैं कि ये लोग देखना चाहते हैं। दिस साउंड वेरी हार्श, दिस साउंड वेरी हार्श, बट इट इज द ट्रूथ। हमें लगता है कि ये रहम है, एक्चुअली नहीं, उनको रहम नहीं चाहिए, उनको कंपैशन चाहिए, उनको लव चाहिए, लेकिन लव नहीं है। अगर हमने भी पेन क्रिएट किया कुछ भी ऐसा देखकर, जब ये पूरा टेरर अटैक हुआ तो व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन दैट वाज बीइंग फ्लडेड एवरीवेयर कि आप सबको गुस्सा होना चाहिए इस बात को लेकर, व्हाई आर यू नॉट एंग्री, पीपल शुड गेट एंग्री, वही तो सोल्यूशन है। हाउ कैन एंगर बी द सोल्यूशन टू एंगर? जिन्होंने जो किया दैट वॉज अ साइन ऑफ एंगर, रिजेंटमेंट। ऑलरेडी उस शहर के अंदर जो वातावरण फैल चुका था वो दर्द का था, बहुत लोगों की जीवन ऊपर नीचे हो गई थी, बहुत लोग डर में थे, अपने अपने घरों में ट्रैप्ड थे। नाउ इन एन एनवायरमेंट जहां ऑलरेडी इतना पेन है, इतना दर्द है, वी ट्राइंग टू से गेट एंग्री।
1: नहीं, एंड इनफैक्ट वही बात कर रही हूँ कि वो सिचुएशन, अगर हम जो हम जिस मुद्दे पे थे, उस सिचुएशन ने जो कहीं और हो रही थी, उसने पूरी तरह से पूरे जो वॉच कर रहे थे, टीवी देख रहे थे, उन सबके माइंड्स को कैप्चर ही तो कर लिया।
0: या बट नॉट इवन सी, अगर हम देख भी रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद मेरे माइंड में इमिजिएटली ये आना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आई टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपेंस एट द ब्रह्मा कुमारीज। वी नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, जो समथिंग वेरी वेरी नाइस दैट हैपेंस हियर इज कि जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो जाता है, थोड़ा भी ऊपर नीचे, चाहे वो नेचुरल कलामिटी है या वो कुछ ऐसी बात है, इमिजिएटली एवरी वन नोज दिस, हर सेंटर पर जितने भी हम सारे भाई बहने हैं, वी हैव कलेक्टिव मेडिटेशन। हम सब इकट्ठे मिलकर अलग अलग अपनी अपनी रीति से घर पर तो करते हैं, लेकिन कलेक्टिव टाइम फिक्स करके हम सब सेंटर पर बैठते हैं और सेंटर पर इकट्ठे मिलकर वी क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड पावर। क्योंकि भगवान परमात्मा हमेशा ये कहते कि दर्द तो ऑलरेडी है, आप दर्द के बारे में चर्चा करते हो, दर्द की खबरें सुन रहे हो और दर्द क्रिएट कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस टाइम? डोंट जस्ट सी इट एज अ स्टिमुलस, सी व्हाट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो वहां दर्द है, हमें क्या भेजना? हमें प्यार भेजना, हमें शांति भेजनी, लेकिन वो कब भेज पाएंगे?
1: जब
0: जब हम
1: हम होंगे।
0: डिटेच्ड हैं।
1: यस,
0: लेकिन अगर मैं ही दर्द में चली गई, हाय क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वेयर इज द
1: और
0: पावर टू
1: इनफैक्ट
0: क्रिएट पीस?
1: अननोइंगली मैं दिए जा रही हूँ, भेजी जा रही हूँ,
0: हमें
1: मुझे
0: लगता है कि ओ मैं तो दिल्ली में बैठी हूँ,
1: मेरे उससे क्या
0: ट्रेजेडी
1: होगा।
0: तो बॉम्बे में हुई, बट इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ कलेक्टिव वाइब्रेशन।
1: डेफिनेटली सुश्री शिवानी, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स के, ह्यूमन काइंड के, तो हम ही तो हैं, इंसान ही तो हैं जिन्होंने अपनी वॉइस भी रेज करनी है। तो अगर हम स्टेबल होके देख रहे हैं, या मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, इजंट इट बीइंग नॉन रिएक्ट, आई मीन नॉट डूइंग थिंग्स?
0: यू बिकम वेरी पैसिव।
1: यस, यू नो, लाइक मतलब आप बहुत स्लो हो जाते हैं, आपको अपनी बात कहने का भी तो वो जरिया चाहिए फिर।
0: एब्सोल्युटली। लेकिन अपनी बात कहने का जो तरीका है, एक तो वो मैटर करता, और दूसरी अपनी बात कहने के लिए पहले आपकी सोच में तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए ना। जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी एंगर, पेन, हर्ट, उस टाइम जो हम जिस अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीन फंडामेंटल इमोशंस बहुत हैवी थे, एंगर, पेन, हर्ट, रिजेंटमेंट, एंड स्पेशली वो पूरी एक पूरा एक फ्लेवर जो क्रिएट हो गया हर जगह, इट वॉज दीज थ्री। जब हम इन तीनों इमोशंस के वशीभूत हैं, ये तो डू वी हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट? क्या हम उस समय राइट सोच पाएंगे, राइट बोल पाएंगे? अब इसी स्पेसिफिक बात को भी अगर हम देख लें, जितने दिन वो न्यूज में था, हम देख रहे थे क्या हो रहा है. सो वी वर ऑल्सो यू नो एवरी वन इज वेरी एंग्री, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट. किया हमने क्या इज अ क्वेश्चन मार्क. हमने क्या किया अपने देश के लिए.
1: कलेक्टिव एंगर जो था,
0: कलेक्टिव एंगर था, कलेक्टिव एंगर का रिजल्ट.
1: अगेन यू नो दिस इज व्हाट पीपल हैव सीन.
0: सी इफ यू वांट टू वॉइस योर ओपिनियन ऑल द मोर यू रिक्वायर स्टेबिलिटी. वी थॉट के एंगर एंड रिएक्शन हमारी आवाज ज्यादा यू नो जैसे नॉर्मल भी वो तो बड़ी बात है, छोटी बात पे ऑफिस में भी हम देखेंगे या घर पे भी कि मैं जोर से चिल्लाकर बोलूंगा ना तो आपको ज्यादा ठीक से समझ में आएगी. सी द थिंग इज फर्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन यू कि आप जो इमोशंस क्रिएट करते हैं उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट, फिर कलेक्टिव सब लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट, फिर उसका एंड रिजल्ट. इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, हमने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, हमने सिर्फ उसके बारे में जितने दिन वो न्यूज में था हम भी न्यूज के साथ थे, हम भी उसको यू नो ऑफिस में भी वही बात हो रही है, घर में भी वही बात हो रही. हमने किया क्या 10 दिन 15 दिन, आई थिंक दैट्स अबाउट इट ऑल. उसके बाद न्यूज चेंज हो गई, कोई और चीज हो गई दुनिया के किसी और कोने में,
1: पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है,
0: हम उसके बारे में बात करने लगे. जिनके जीवन पर उसका इफेक्ट हुआ, जो आज दर्द में है वो तो आज भी दर्द में है. हमने उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया. हमने कंट्री के लिए क्या किया इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. हमने सिर्फ गुस्सा किया, व्हाट डज दैट रिजल्ट.
1: अच्छा लेकिन
0: अगर सारे इकट्ठे होकर इफ वी हैव टू रियली डू समथिंग उसके लिए, क्योंकि टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इवन कुछ करने के लिए पावर चाहिए. अगर हम अंदर से हर्ट हैं, गुस्से में हैं, हम वीक हैं, वीक अंदर से वीक होकर सिर्फ शोर मचाकर हम कोई परिवर्तन ले आएंगे विल नॉट रियली वर्क. एंड वी नीड टू रिमेम्बर वो करना, वो उस तरह से करना धीरे धीरे मेरी क्या बनते जा रहा
1: है,
0: हैबिट बनता जा रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो क्या होता है कि हम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वी नीड टू रिमेम्बर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, डिटैच होकर देखें एंड तुरंत अपने आप से पूछें अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सो दैट लाइक आई वाज शेयरिंग एट द ब्रह्मा कुमारीज हम लोग कलेक्टिव मेडिटेशन करते कि हम सब बैठकर, और ये तब नहीं सिर्फ कि अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट होता, बट एवरी मंथ ऑल्सो. एक है कि एवरी डे हम शाम को जब मेडिटेशन करते 6:30 to 7:30 हम दो बार मेडिटेशन करते हैं हर रोज दिन में. वन इज इन द मॉर्निंग एंड ये हमने बहुत यू नो क्लियरली जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जैसे ये किया है कि मॉर्निंग में जो मेडिटेशन है वो है अपने ऊपर काम करने का समय, अपनी मेहनत, अपने संस्कारों को परिवर्तन. और शाम को जब मेडिटेशन करते इट इज फॉर सर्विंग द वर्ल्ड. कि सुबह आपने मेडिटेशन किया, आपने अपने अंदर पावर्स भरी, शाम को आप मेडिटेशन करो एंड वो पावर्स जस्ट सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड, जस्ट सेंड इट आउट. Now, when I came first to the Brahma Kumaris, I just didn't know how this works. ये कैसे होगा कि हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ create कर रहे हैं कुछ, and this is going out to the world. ये and for me it was a question mark कि इसका क्या फायदा हो सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं, वो किसी और देश में है, वो तो अभी भी दर्द में ही है. एंड ये ऐसी चीज है जिसका कोई तुरंत प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं पता चलता कि यू नो जैसे we used to call this donation of peace and power. तो आई सेड धन डोनेट करो तो दिखाई देता, कपड़े डोनेट करो दिखाई देता, मतलब हमें ये नहीं कि फॉर एटलीस्ट आई कैन सी दैट आई एम गिविंग इट टू यू एंड यू आर टेकिंग इट. हां एंड आई सी कि आपको वो मिला जो आपको चाहिए था. लेकिन पीस डोनेट करो, वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, आई वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. के बट नाउ व्हाइल आफ्टर डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स आई हैव रियलाइज्ड इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. हाँ हमें उसका तुरंत वो नहीं पता चलेगा कि वो किस तक पहुंचा, क्या हुआ, लेकिन जब ये समझ में आ गया कि थॉट्स एनर्जी है और जो एक एक थॉट हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है जो एनवायरमेंट में फैलता है, पहले मुझे मिलता, मेरे आसपास जो है उनको मिलता, देन ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड कि एक एक थॉट जो हम क्रिएट करते वो वाइब्रेशन है. इट डजंट स्टे इन, इट रेडिएट्स, इट वाइब्रेट्स इनटू द एनवायरमेंट. एंड वो जिनके प्रति भी क्रिएट किया गया होगा, क्योंकि दैट्स व्हाट वी हैव सीन एवरी टाइम कि जो थॉट मैं आपके लिए क्रिएट करूंगी वो आप तक पहुंचेगा. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं इट इज कॉन्शियसली क्रिएटिंग थॉट्स. यू नो वी डोंट रियलाइज, हम लोग आज सब बोल रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए, एवरी वन इज टॉकिंग कि दुनिया में शांति होनी चाहिए. कैसे आएगी, जब हम एक एक शांत रहेंगे तब ऑटोमेटिकली शांति के वाइब्रेशंस फैलेंगे, ऑटोमेटिकली शांति होगी. हम सब अशांत हैं और हम कहते हैं दुनिया में शांति होनी चाहिए. दुनिया मीन्स व्हाट, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द वर्ल्ड. हरेक जो हम हैं, हम सब की मन की स्थिति क्या है, कलेक्टिव सबकी मन की स्थिति को अगर हम लें, वो दुनिया की स्थिति है। तो हम कहते हैं दुनिया में शांति हो तो मैं शांत हो जाऊंगा, यू नो, दुनिया सब ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं शांत होंगी तो दुनिया में शांति आएगी। तो नाउ वी आई कांट वेट के पूरी दुनिया में सभी 600 करोड़ लोग जब शांत हो जाए तो दुनिया शांत होगी, लेकिन एक एक करेगा, एक एक क्रिएट करेगा वो पीसफुल वाइब्रेशन, तो दुनिया में तो आएगी, लेकिन सबसे पहले आई विल बी पीसफुल, माय फैमिली विल बी पीसफुल, वेयर आई एम वर्किंग विल बी पीसफुल। तो ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, वी डू इट एवरी इवनिंग 6:30 to 7:30, सर्विंग द वर्ल्ड, सेंडिंग आउट पावर्स ऑफ पीस, लव एंड पावर, एंड स्पेसिफिकली every third Sunday of the month, ye to fixed hai all over the world, every third Sunday of the month 6:30 to 7:30 sabhi bhai behne center par aate, and it is called meditation for world peace, ki vishv mein shanti ke liye hum ikatthe milkar meditation karte.
1: In fact, you know, it's such a beautiful aspect ki it will make me feel so good ki I'm doing it for the world. You know, अभी तक तो सब कुछ इवन प्रोग्राम में भी हम अपने लिए कर रहे थे, यू नो, हर चीज हम पर फोकस हो रही थी, और कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन एलिमेंट ये होता है कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं, और हर बार हमारे को लगता है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम इतने बिजी हैं अपनी लाइफ में, कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कुछ किसी का दर्द नहीं बांट सकते, कुछ नहीं कर सकते. So this gives me such a good feeling. Actually, we should all try to experience
0: and
1: it. You know?
0: In this case, it is कि जब आप कर रहे हैं किसी और के लिए, सबसे पहले किसको मिलता?
1: हाँ, खुद को मिलता
0: सबसे पहले. See, if I do something for you, it's for you. तो उसमें शायद हो सकता है मुझे कोई benefit नहीं, लेकिन इसमें सबसे पहले मुझे मिलता और फिर मेरे through औरों तक पहुंचता. And जब हम देते हैं, that's the most beautiful feeling. लेना लेना सारा दिन, ये तो बहुत easy है. लेकिन जो खुशी मिलती है जब हम देते हैं, दिस इज समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, एब्सोल्युटली.
1: इन फैक्ट इट ऑलवेज हैपेंस, यू नो, हम कुछ भी जब देते हैं हमें अच्छा लग रहा होता है,
0: यू नो, गिफ्ट, जैसे गिफ्ट होता है, आई हैव टू आस्क मायसेल्फ, गिफ्ट देने में ज्यादा अच्छा लगता या गिफ्ट लेने में? इट्स ऑलवेज द गिविंग, अ गिविंग ऑफ अ गिफ्ट. आप चूज करने जाएंगे, आप लेंगे, यू ऑलवेज सो हैप्पी बिकॉज गिविंग इज ह्यूमन नेचर. लेकिन वो हम अपने बेसिक नेचर को आज थोड़ा सा भूल गए हैं, एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हैप्पीनेस, giving love, giving peace, we are wanting asking happiness, for asking for love, asking for peace. So let's experiment this meditation together.
1: In fact, Sister Shivani, हम जो बात कर रहे थे वो ये थी कि जो impact था आज इस पूरी बातचीत में, ये तो समझ में आया कि क्या process है, क्या कुछ कैसे होता है, जो जिससे हम हमारा जो पूरा जितनी देर हम टेलीविजन के आगे होते हैं, क्योंकि ये जो हमने एग्जांपल्स लिए उसमें भी तो यही हुआ, जितने दिन तक वो टीवी पर दिखते रहे, जितने दिन तक वो चर्चा में रहा, उतने दिन तक वो हम पे हावी रहा, उसके इमीडिएटली बाद हमें याद भी नहीं रहा,
0: कुछ और आ गया ना तब.
1: हाँ, सो इट मीन्स इट टुक ओवर ना.
0: सो दैट मीन्स मेरी अपनी क्रिएटिविटी क्या थी, इफ यू रियली फेल्ट फॉर व्हाट हैड हैपेंड. तो टीवी से वो हट भी गई न्यूज, आपकी फिर भी वो रहना ही चाहिए थी ना, वट एवर यू थॉट, वो तो फिनिश्ड. सो इट्स नॉट रियली दैट यू फेल्ट इट, इट इज समवन एल्स वाज क्रिएटिंग योर इमोशंस फॉर यू दैट टाइम, एंड वो समवन एल्स चेंज्ड द टॉपिक, हमारा भी चेंज.
1: तो हमारी रैशनैलिटी खत्म हो चुकी होती है.
0: वो दैट्स व्हाट वी सेड, हमारी क्रिएटिविटी कि कौन सी थॉट्स क्रिएट करनी है, चूज करनी है, इट्स ओवर.
1: तो वी अंडरस्टूड कि शुरुआत में क्या होता है, देयर इज अ स्टेज वेयर वी आर स्टेबल, वी आर डिटैच्ड, हमने जो पूरा प्रोसेस देखा, और उसके बाद हमारा जो यू नो लोगों के ऊपर जो जजमेंटल होना कि ये ऐसा किसी भी चीज के लिए, एंड देन पूरी इमोशंस हमारे जो टेक ओवर करती है. ये तीन प्रोसेस हैं जब हम किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, बाहर ही किसी भी, और ये फिर मेरी हैबिट बनता जाता है, जजमेंटल होना, और फाइनली फिर उस सिचुएशन को अपने ऊपर हावी होने देना. इनसे अब काम कैसे करना, हम टेलीविजन के प्रोग्राम से ही जुड़े हुए चीजें करेंगे, सो दैट क्योंकि आप इस प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं, तो उसको भी अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको कम ना होने दें. यू नो, आपको जो समझ में आ रहा है, जो एक्सेप्ट, मतलब आप ब्लाइंड, बार बार हम ये कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ ना रखकर, इसीलिए अनुभव की बात कही जाती है,
0: एक्सपेरिमेंट.
1: हाँ, कि आपका एक्सपेरिमेंट और फिर आपका एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ वो कैसा होगा, वही आपको तय करवाएगा. आपके मन में कोई बात आ रही है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है ओम शांति @bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें आज हमने मेडिटेशन के उस एस्पेक्ट को भी समझा जो कलेक्टिव होती है और जो सिर्फ मुझसे जुड़ी नहीं हो सकती, लोगों से भी जुड़ सकती है, विश्व से जुड़ सकती है। तो आज सिस्टर शिवानी चलते चलते चाहेंगे कि थोड़ा सा अनुभव वो करें।
0: आज दिन तक हमने मेडिटेशन किया, आज उसमें एक नया एस्पेक्ट देखते कि हाउ आई कैन क्रिएट वाइब्रेशंस ऑफ पीस एंड सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। तो इसमें कोई हमें स्पेसिफिकली लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन आई क्रिएट वो शांति की संकल्प, वो अनुभूति, एंड देन आई सेंड इट आउट टू द वर्ल्ड। डोंट सिट एंड थिंक कि वो किस तक पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, नहीं, जस्ट सेंड इट आउट विद अ प्योर फीलिंग एंड अ प्योर इंटेंशन एंड इट विल रीच आउट टू देम। लेट्स सिट कंफर्टेबली। बाहर की रोजमर्रा की बातों से अपनी बुद्धि को हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आते हैं। आई दैट पावरफुल बींग जो हर संकल्प क्रिएट करता है। आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट। आई एम अ पीसफुल बींग। शांति मेरा अपना स्वभाव, मेरी अपनी नेचर है। ये शांति के वाइब्रेशंस, ये शांति की शक्ति मुझसे निकलकर सारे विश्व तक पहुंच रही है। देखने का प्रयास करें वाइब्रेशंस ऑफ पीस। इट्स लाइक अ लेजर बीम मुझसे निकल सारे विश्व तक पहुंच रही है, विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। ओम शांति,
1: ओम शांति। थैंक यू सो मच। अब आपसे भी विदा लेंगे, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली घड़ियों में बहुत सी और बातें हम समझ पाएंगे। ओम शांति।

ख्वाब और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अला अला अला।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। अगर आपको याद हो पिछली कड़ी में हमने ये जाना है कि इमोशंस और फीलिंग्स दो ऐसे एस्पेक्ट है जिन्हें आज तक हम ये समझ रहे थे कि वो एक ही तराजू का हिस्सा है या एक ही थैली के हिस्से हैं, लेकिन हमने ये जाना कि इमोशंस जहां नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं वहीं फीलिंग्स मेरी नेचुरल सेंस को लेकर आते हैं, जो नेचुरली मैं हूँ, सहज हूँ। और आज हम बात करेंगे एंगर की। और आपको बता दें कि आने वाले जो कड़ियां हैं, आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे कि किस तरह से एंगर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो एक नेगेटिव इमोशन है, और क्या है उसका एंटीड्यूट। कहीं ना कहीं शांति जिसे हम और आप तलाश रहे हैं, क्या हम उस फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं। और फिर आगे चलकर बात आती है क्षमा की, यानी कि फॉरगिवनेस की। ये होगा आने वाली कड़ियों में, लेकिन आज बात करते हैं एंगर की। कई सारे रॉन्ग बिलीफ्स जुड़े हैं एंगर के साथ। इन सभी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, अगर हम गुस्से को देखते हैं तो गुस्सा ऐसा लगता है कई बार, अगर हम पूरे अपने सिनेरियो को देखें तो चारों तरफ वो एंगर नजर आता है, और उस एंगर को हमने इतना नॉर्मल मान के एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आप पहले भी हमसे कह चुके हैं कि अंदर से हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो कैसे खुद को बार बार ये समझाना जरूरी है कि ये कहीं गलत है, और उसे सिर्फ अंदर ना रह के बाहर भी लेके आए।
1: बाहर की दुनिया की जो आज हालचाल हम देखते, तो बस एक बार न्यूज़ ऑन करने की ही ज़रूरत है या एक न्यूज़पेपर ही उठाने की ज़रूरत है, और पढ़ते ही या देखते ही वो एंगर हमारे अंदर भी इतना क्रिएट हो जाता, क्योंकि हम देखते हैं एक देश दूसरे देश के अगेंस्ट, एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट, एक शहर दूसरे के अगेंस्ट, एक टीम दूसरे के, यू नो, एवरीवेयर वी आर फाइंडिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इतना ज़्यादा, और वो कॉन्फ्लिक्ट एक एंगर जेनरेट करता है। कहीं फैमिलीज के अंदर वो भी सारा दिन आज मीडिया में दिखाई देता कि फैमिली के अंदर ही ब्रेकडाउन है, तो चारों तरफ से एक नेगेटिव वायुमंडल तो है ही, लेकिन हमारा सारा दिन ध्यान बहुत ज्यादा उसकी तरफ होता कि बाहर क्या हो रहा है, और इस प्रोसेस में कहीं रुक कर अपने आप से पूछना होगा कि बाहर तो जो है तो है, दैट वी कैन डू व्हाट वी कैन डू अबाउट, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है। बाहर बहुत एंगर है, बहुत नेगेटिविटी है, और वो देखकर हमें अच्छी नहीं लगती, और यू नो वी सिट डाउन एंड से ये दुनिया कहाँ जा रही है, यू नो व्हाट इज द वर्ल्ड हेडिंग टुवर्ड्स, समाज का क्या होगा, घर में लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हालचाल है, यू नो, एंड हु विल आस्क दैट, वो मेरे से कौन पूछेगा। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि अंदर नेगेटिविटी है या प्योरिटी है या पॉजिटिविटी है, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर का एंगर इतना है जो मेरे अंदर भी उतना एंगर ही क्रिएट हो रहा है। तो आई नीड टू स्टॉप एंड चेक दिस कि मेरे अंदर क्या हालचाल है। कई बार क्या होता, हम जैसे हमने पहले भी बात किया, हम बुक्स तो पढ़ते हैं, इस तरह से प्रोग्राम भी सुनते या ट्रेनिंग सेमिनार्स अटेंड करते, सब कुछ करते हैं, और ये सारी चीजें हमारे सामने सत्यता को लाकर रख देती हैं, क्योंकि क्रोध, इस पर अब कोई डिबेट करने जैसी बात नहीं है कि ये राइट है या रॉन्ग है। आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, लेकिन सच जानने के बाद फिर भी उस पर काम नहीं करना, फिर भी कोई स्टेप्स नहीं उठाना जिससे आई कैन यू नो गेट रिड ऑफ इट, तो ये तो अपने आप से धोखा है।
0: लेकिन यही से सचिवानी बहुत से लोग यही इस ये भी एक कंफ्यूजन या जिस दौर में हम रह रहे हैं कि मुझे सच पता चल गया तो समझ गया, बस हो गई बात, कि मुझे इम्प्लीमेंट भी करना है कुछ कुछ, कैसे ये हो पाएगा क्या। और यही ये जो एक जो सो कॉल्ड अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं कि आज जब मुझे समझ में, मुझे पता तो चल गया, हाँ ठीक है, मुझे भी पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानती हूँ, तो फिर अब क्या करना है।
1: क्योंकि सच बहुत सिंपल है, गुस्सा क्या है वो भी बहुत सिंपल है, उसको ओवरकम करना है वो भी बहुत सिंपल है, लेकिन होता क्या कि जब सत्यता सामने आ जाती है तो वो एक शीशे का काम करती है, इट इज अ मिरर टू माय इंटरनल स्टेट, और वो सत्यता मुझे दिखाती है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अंदर है, कि अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे मान्यताएं, बहुत सारी ऐसी बिलीफ सिस्टम, परसेप्शन, दृष्टिकोण ऐसा बन चुका है जिसने मेरे थॉट्स को उस डायरेक्शन में बनाना शुरू कर दिया है, तो अब अगर मुझे उसे चेंज करना है तो मुझे अंदर काफी सारा वर्क करना पड़ेगा, पर वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता है.
0: Are we ready? That's what
1: you know, वो डिफिकल्ट लगता है, एंड देन वी से इट्स ओके, आई एम ओके द वे आई एम, यू नो. क्योंकि जहाँ परिवर्तन की और मेहनत की अंदर पे बात आती है, तो हम कहते नहीं जैसे हैं ठीक है, क्योंकि हमने कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिया है.
0: तो पहले मुझे लगता है उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे अंदर काम करने की. ये जो इससे
1: मुझे जरूरत नहीं है भी क्यों, क्योंकि हम अनकंफर्टेबल रहते हुए भी कंफर्टेबल बन चुके हैं. यू नो इट्स लाइक दिस, के सपोज ये कुर्सी कंफर्टेबल नहीं है, यू नो इट्स गिविंग मी अ लॉट ऑफ पेन, लेकिन रोज उस पर ही बैठे हैं, तो बैठते बैठते इस अनकंफर्टेबल कुर्सी पर बैठने की भी आदत हो जाती है. एंड वो जो दर्द वो दे रही है उसको भी हम स्वीकार कर लेते हैं, बिकॉज आई डोंट हैव अनदर ऑप्शन, लेट्स से यू नो आई कांट चेंज माय चेयर, तो आई एक्सेप्ट दिस पेन एंड आई एक्सेप्ट दिस डिसकंफर्ट, और इस पर ही मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लेती हूँ. आई से ओके एंड आई गेट यूज्ड टू सिटिंग ऑन दिस. तो इसी तरह वो जो कंफर्ट जोन हमने क्रिएट कर लिया, गुस्सा दर्द देता है, गुस्सा तकलीफ देता है अंदर, हमें पता है, लेकिन उसी के अंदर हमने अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया कि ये ठीक है, दिस इज ओके. तो अनकंफर्टेबल में भी हम कंफर्टेबल रहने लग गए हैं, अनहैप्पी होते हुए भी हम अपने आप को हैप्पी समझने लग गए हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग इल्यूजन, या ये एक चीटिंग है अपने आप से. तो उस कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं हमें बाहर निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि ये गुस्सा मन पर तो नुकसान करता ही करता है, और हमारे शरीर पर भी नुकसान करता है. एंड इट्स नॉट दैट वी आर ऑल इन द सेम थिंग. अगर आप चारों तरफ देखें तो इट्स लाइक अ स्पेक्ट्रम, यू नो, हमें हर तरह के लोग मिलेंगे समाज में. एक तरफ हमें उस तरह के लोग मिलेंगे जो दुनिया में छोटी से छोटी जो बात हो रही होगी उस पर उनको गुस्सा आ जाएगा. न्यूज देखते हुए भी उनको उतना ही गुस्सा आएगा जितना उन लोगों को आ रहा है जिनके साथ वो अत्याचार हो रहा है. यू नो, इतना ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस है. थोड़ा से बीच में आए तो उस तरह के लोग मिलेंगे जिनको उस बात से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है. दे विल लिसन एंड दे विल से ओके, इट्स एक्सेप्ट. लेकिन उनके जीवन में, उनके नजदीक, उनके ऑफिस में और घर में जो छोटी छोटी बातें हो रही है उससे उनको काफी गुस्सा आ जाता है. और एक एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे वो लोग मिलेंगे जो इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी हो रहा है, एंड देन इट मीन्स जो भी, कुछ भी, चाहे बाहर चाहे उनके आसपास, उनको गुस्सा नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है. जिनको हम कहेंगे द इनलाइटेंड पीपल, दे विल नॉट लूज देयर कंट्रोल, दे विल नॉट गेट एंग्री. तो हर प्रकार के लोग हैं. अब मुझे अपने आप को उस ग्राफ के ऊपर ऑफ 1 to 10 मुझे अपने आप को रख कर देखना पड़ेगा कि वेयर एम आई. एंड देन देर आर सम काइंड ऑफ पीपल जो कहेंगे कि गुस्सा अगर नहीं किया तो ये सारी जो गलतियां हो रही हैं समाज के अंदर, इसको ठीक कौन करेगा. तो उन्होंने जैसे अपने ऊपर ये जिम्मेवारी उठाई हुई है कि उनके गुस्सा करने से जो गलत हो रहा है वो सही होगा, जिसको आपने कहा राइटियस एंगर. यू नो, वो अपने एंगर को भी राइट जस्टिफाई कर देते हैं. तो इट्स नॉट फॉर एनीवन एल्स टू टेल मी व्हाट्स राइट और रॉन्ग. आई हैव टू आस्क मायसेल्फ कि मेरे लिए क्या, डू आई फील एंगर इज गुड फॉर मी. इफ यस, live on with it, live on with it, but then don't complain. Don't say कि मुझे तो खुशी चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो प्यार चाहिए, मुझे तो सबके साथ बहुत अच्छे relationships चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छा career चाहिए, because both these things साथ साथ नहीं चलेंगे.
0: ये coexistence नहीं हो सकता, peace और anger का coexistence. This is what we'll have to understand actually.
1: तो हमें चाहिए कुछ और, लेकिन हम comfortable इसके साथ हो गए हैं. It's like I'm sitting on this chair, I'm not even moving, और फिर इस पर बैठकर मैं complain भी करती रहूं, ये कुर्सी ठीक नहीं है, ये कुर्सी ठीक नहीं है. So you will say, get up, move, change your chair. It's so simple. लेकिन रहना भी गुस्से के साथ है, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए.
0: बिफोर वी मूव ओवर टू यू नो कि कौन कौन से किस किस तरह के गुस्से होते हैं, एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि जो जैसे आपने कहा, एक वो लोग हैं जो कोई भी सिचुएशन आ जाए उसमें नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं होते हैं. लेकिन उससे पहले एक और भी ऐसे लोग हैं जो शो नहीं होने देते कि उन्हें गुस्सा है,
1: लेकिन वो गुस्सा तो हो रहे हैं.
0: वही वो एक और मेजर चीटिंग है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट अंदर, जिसे इंटरनलाइज कर लेते हैं, और उसको वो फिर कहीं ना कहीं किसी रूप में निकल रहा है.
1: वो सबसे पहले तो अपने शरीर पर निकलेगा, लेकिन इसका भाव ये भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस भी बिलीफ के साथ चलते कि अंदर नहीं रखना चाहिए इसलिए निकाल दो. अगर मैंने अपना गुस्सा अंदर रख दिया तो वो मेरा नुकसान करेगा अंदर, तो इससे अच्छा आप अगर आपने गल्ती की थी तो आप पे मैं वो गुस्सा निकाल,
0: अल्टीमेटली बात अपना नुकसान ना बाहर कहीं नहीं रखना चाहिए।
1: बट अगर हम उस तरह से उसको चलेंगे कि अंदर नहीं रखना है तो बाहर निकाल दो, तो हम बाहर निकालते ही जाएंगे, निकालते ही जाएंगे। वेयर इज इट गोइंग टू स्टॉप, यू नो? सो समवेयर, जैसे इस मेडिटेशन के करते दौरान हम जिस यात्रा पर चले, तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस हैज बीन कि समवेयर यू हैव टू फर्स्ट स्टॉप आउटसाइड। आपको, क्योंकि उतना लेवल नहीं है हमारा एकदम से कि बिल्कुल मन में भी गुस्सा नहीं आए। अल्टीमेट स्टेज वो है कि थॉट में भी एंगर नहीं आएगा, लेकिन एकदम से हम सोचें कि वो वाली स्टेज अचीव हो जाए तो वो नहीं हो पाती है। आइडियली होता क्या है, यहाँ गुस्सा आता है और ये बाहर निकल कर आता है। अब अगर इसको हम नहीं रोक पाते कि यहाँ नहीं रोक पाते, एटलीस्ट हमें इसको यहाँ रोकना पड़ेगा। एक बार वो यहाँ रुकेगा बिहेवियर में, आप कॉन्शियस रहेंगे कि चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई कुछ भी करे, आई शुड नॉट रिएक्ट, यू नो, एंड यू विल कॉन्शियसली कीप अटेंशन इन इट फॉर सम टाइम एंड यू विल सी दैट आप बहुत जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं। कि अगर आपने डिसाइड कर लिया आप नहीं रिएक्ट करेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, तो एटलीस्ट उतना नुकसान खत्म हुआ। तो बहुत सारी एनर्जी जो इस तरह से डिस्चार्ज होने वाली थी, रिलेशनशिप्स बिगड़ने वाले थे, वो रुक गया। देन इट्स अ जर्नी, तो नाउ नेक्स्ट स्टेज इज, ठीक है, मैंने बोला नहीं, मैंने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन अब मुझे गलत सोचना भी नहीं है। देन आई विल वर्क ऑन द नेक्स्ट स्टेज कि अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे बुरा सोचना भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस प्ली को ले लूं कि जब भी मैं मुझे गुस्सा है मुझे बोलना तो चाहिए, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, then it never stops. It just goes on and on.
0: No, but then we have to understand that if we have reached a stage where जहां हम ओपनली गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चुप हो गए हैं, उसके बावजूद भी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ,
1: वो अभी भी गुस्सा,
0: मंजिल कहीं और है।
1: बिकॉज गुस्सा वो नहीं है जो बाहर आ रहा है, गुस्सा सबसे पहले वो है जो यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि अंदर से वो इमोशन खत्म हो जाए, वो जो बात बात में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है वो खत्म हो जाए, क्योंकि वो हमारे रिलेशनशिप्स पर भी अफेक्ट कर रही है, हमारे ऊपर अफेक्ट कर रही है और हमारे शरीर पर भी अफेक्ट कर रही है। बहुत सारी इस तरह से स्टडीज भी हुई है जिसमें ये बताया, और जो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने कोई चीज अंदर पकड़ कर रखी है, यू नो, यू होल्डिंग अ ग्रज अगेंस्ट समबडी, या किसी ने आपके साथ कुछ किया और आपने वो पकड़ कर रखा है, आप तब तक हेल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके अंदर वो नेगेटिव थॉट्स जब तक चलते रहेंगे तो वो आपके शरीर को तकलीफ देते ही रहेंगे। एंड दिस वाज दिस रिसर्च डन इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कि दे वर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन फॉरगिवनेस, तो उस फॉरगिवनेस के प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा

0: कि इट इज इम्पॉसिबल, नॉट इवन दैट इट्स डिफिकल्ट, लेकिन ये असंभव है कि आप खुश रहें और आप हेल्दी रहें अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई बात अंदर पकड़ कर रखी हुई है. टिल यू लेट गो, द डे यू आर एबल टू लेट गो, यू विल बी. नाउ व्हाट हैपेंस इज वी वांट टू बी हैप्पी. सी दिस इज वेयर द आयरनी कम्स. एंड येट हमने कितनी सारी बातें पकड़ कर रखी हुई हैं. इम्पॉसिबल. तो फिर पूरी यात्रा चलते रहेंगे चाहिए ये और पकड़ कर ये रखा हुआ. सो इट विल नेवर बी पॉसिबल.
1: वही अगेन हम ये सोचते हैं कि ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर लेंगी या गुस्सा और शांति इकट्ठा कर रहे
0: हो नहीं सकता. जब भी हमारे अंदर स्ट्रेस या गुस्सा इस तरह से आता है तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जो हमने देखा. और जैसे ही वो सिक्रीट होता है हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है. यू नो इमिजिएटली अगर आप देखो कि लेट्स से आप गाड़ी चला रहे हो और एक गाड़ी कोई बहुत नजदीक से आपसे चले जाए एंड यू फील कि यू जस्ट मिस्ड एन एक्सीडेंट वेरी क्लोजली, उस क्षण अंदर क्या क्या हो जाता है, वो सारा बॉडी में, वो सारा सिस्टम में फ्लो हो जाता है. लेकिन ये कभी कभी होता है. तो कभी कभी होने से उसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता कि छोटा सा एक्सीडेंट होना था बच गया, अंदर हॉर्मोन क्रिएट हुआ लेकिन जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स. लेकिन जब हम एंगर, स्ट्रेस ये सारा दिन क्रिएट करते हैं, दीज आर लाइक एक्सीडेंट्स विच आर टेकिंग प्लेस
1: एवरी मोमेंट, यू नो लाइक आई थिंक कॉन्स्टेंटली.
0: और वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होने से वो केमिकल्स सारा दिन क्रिएट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं हमारे शरीर के अंदर. और फिर हमें बीमारियों का अलग अलग रूप ले लेते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, हाई ब्लड प्रेशर है, इवन इम्यूनिटी सिस्टम हमारा क्रैश हो जाता है. तो इसमें अब दो राय कहाँ होनी चाहिए कि गुस्सा हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है. इसमें कोई दो राय है ही नहीं, जिसका हर एस्पेक्ट पे नुकसान हो रहा है. Why have we kept it with us?
1: लेकिन शिवानी अगर हम बात आम जिंदगी में देखें तो बहुत सी ऐसी प्लीज हैं जो जुड़ी हैं गुस्से के साथ, जिन्हें हम अपना बिलीफ सिस्टम में कह सकते हैं कि
0: एक्चुअली गुस्से को खत्म करने के लिए बहुत सिंपल है. सिर्फ सबसे पहले समझ लेना इट्स अनहेल्दी. यू नो जैसे स्मोकिंग इज डेंजरस, हानिकारक है. सिमिलरली एंगर इज हानिकारक है मेरे लिए, वो हानिकारक.
1: इनफैक्ट आई शुड राइट इट, एंगर इज टॉक्सिक नाउ.
0: एब्सोल्युटली इट इज टॉक्सिक. यू नो इसीलिए तो वो पूरा जो डेंजर का साइन होता है दैट गोज विद एंगर ओनली, क्योंकि वो इतना ज्यादा नुकसान कर देता है हमारे में. तो तीन स्टेप्स में हम चल सकते हैं. एक, समझ ले पहले अच्छी तरह से. जब तक समझ नहीं आएगा आई विल नॉट वॉन्ट टू चेंज. तो सबसे पहले समझ ले कि एंगर इज एब्सोल्युटली अनहेल्दी, ये मेरे लिए हानिकारक है. दूसरा, ये मेरी जिम्मेवारी है. मेरा एंगर ये मेरी जिम्मेवारी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति. ये मेरी अपनी क्रिएशन है, मेरी, किसी और की वजह से नहीं क्रिएट हो रहा. क्योंकि जब तक वो किसी और की वजह से क्रिएट हो रहा है आई कांट चेंज इट. बट व्हेन आई अंडरस्टैंड कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आई हैव अ चॉइस, देन आई कैन डू समथिंग अबाउट इट. एंड थर्ड इज वो जो आपने कहा बिलीफ्स, जो मान्यताएं हमने पकड़ कर रखी हुई हैं जिसकी वजह से ये गुस्सा क्रिएट होता है. चेंज, लेट देम गो. जैसे ही बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ गुस्सा आना खत्म हो जाएगा. तो तीन स्टेप्स पर चले. पहले तो समझ ले कि दिस इज अनहेल्दी फॉर मी. सेकंड, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन फिनिश इट. एंड थर्ड, व्हाट इज द रॉन्ग बिलीफ सिस्टम व्हिच नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड देन चेंज इट. बिकॉज हमने बहुत सारी बिलीफ्स पकड़ी हुई है और उन बिलीफ्स की वजह से ही हमने एंगर को पकड़ा हुआ. बिलीफ गया एंगर भी चले जाएगा.
1: बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने अभी भी कहा कि बहुत से बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो उन पे आते हैं हम कि कौन कौन से ऐसे जो बिल्कुल हमें बिल्कुल गुस्से को जाने नहीं देते हैं हमारे पूरी जिंदगी से. उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि कैसे हम उसे ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे
0: बिलीफ को. अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज कर पाएंगे? कुछ नहीं है, नॉलेज से. क्योंकि जैसे सपोज अभी तक मेरा एक बिलीफ सिस्टम था कि मेरा गुस्सा आपकी वजह से, यू नो नॉर्मल भी भाषा में अगर हम सारा दिन देखें, मेरा मूड तो बिल्कुल ठीक था, मैं बिल्कुल ठीक थी जब मैं ऑफिस में आई, उन्होंने बात ही ऐसी की कि मुझे गुस्सा आना ही था. तो आई वॉज लिविंग विद द बिलीफ सिस्टम कि मेरा गुस्सा इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ अदर पीपल. तो इसीलिए मैंने हर बार अपने गुस्से को जस्टिफिकेशन दे दी, थोड़ा सा रुक कर चेक किया कि उन्होंने जो कहना था वो तो किया.

0: आपने जो अंदर क्रिएट किया उससे गुस्सा आया. दिस विल नॉट हैव टू बी डन वंस, नंबर ऑफ टाइम्स. आप 8 बार, 10 बार, 1 हफ्ते के लिए हर सिचुएशन में जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा डजंट नेसेसरली ऑलवेज मीन अ बिग, यू नो, गुस्सा छोटा छोटा छोटा छोटी छोटी इरिटेशन हो रही है, तो वो आप हर टाइम चेक करें. यू नो लाइक सिंपल है कि लेट्स से कई लोगों को आदत है कि वो बैठ के यू नो अपने नकल्स को इस तरह से दबाते रहते हैं. अब कई लोगों को आदत है कि वो देखकर बहुत इरिटेशन होती है, राइट? तो इट्स लाइक ये मेरी चॉइस है, आई एम डूइंग दिस. अब इससे आपको इरिटेशन हो रही है. अब तक हम सोच रहे थे आप ऐसे कर रहे हो इसलिए मुझे इरिटेशन हो रही है. आई एम डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई फील लाइक डूइंग. आई एम नॉट गेटिंग इनटू योर माइंड एंड टेलिंग यू गेट इरिटेटेड विद दिस व्हाट आई एम डूइंग. नो, यू आर चूजिंग कि यू डोंट लाइक दिस. तो इरिटेशन किसने क्रिएट की? आपने. क्या आप उसको फिनिश कर सकते हैं? एब्सोल्युटली. द मिनट यू रियलाइज दिस इज माई क्रिएशन, इट्स ओवर. एब्सोल्युटली. सो जस्ट वर्क ऑन दिस फॉर 1 वीक. Every situation stop.
1: That's wonderful. What you're trying to say is कि हम ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि गुस्सा मेरी वजह से ही अगर मैं create करती हूँ, किसी और की वजह से नहीं होता. ये एक मान्यता, ये एक जो मान्यता है, ये wrong belief है. लेकिन मैं तब तक उसे स्वीकार ना करूँ जब तक मैं खुद experience.
0: कोई भी belief को नहीं स्वीकार करना, because otherwise अभी तक एक belief था कि औरों की वजह से गुस्सा create हो रहा है. अभी हम एक और बिलीफ क्रिएट कर देंगे कि नहीं ये मेरी वजह से हो रहा है. कल फिर वो उसको कोई चैलेंज कर देगा. तो डोंट, यू नो, दैट्स ऑल अबाउट, यू नो, दैट्स व्हाई वी डोंट से जस्ट लिसन एंड रीड एंड स्टार्ट डूइंग इट. एक्सपेरिमेंट, डू इट, एक्सपेरिमेंट इट, एक्सपीरियंस हो गया, देन इट्स द ट्रुथ. तो अब आप उसको एक्सपेरिमेंट करें, उसको सच नहीं माने कि दिस इज द ट्रुथ. लेकिन जब आपको उसको अनुभव हो जाएगा, एंड यू विल रियलाइज दिस इज द ट्रुथ.
1: Okay, so this is again a new thing for us, you know, कि जो भी जिन भी मान्यताओं को आप ये कह रहे हैं कि ये गलत मान्यताएं हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि वो गुस्सा आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं, उन्हें हम जैसे ही गुस्सा आने लगे, that's wonderful actually.
0: Just stop and check.
1: खुद एक्सपेरिमेंट करके.
0: Absolutely. जब 2 बार 4 बार आई विल रियलाइज कि आपने गुस्सा क्रिएट कर रहा है, ये मैं क्रिएट कर रही हूँ, नाउ आई चेंज माई बिलीफ सिस्टम. और जब मैंने उसको चेंज किया, एंड ये क्योंकि मैंने अनुभव किया, किसी के सुनने से या बोलने से नहीं किया, जब मैंने अनुभव कर लिया, नाउ दिस इज ट्रुथ फॉर मी. और जब ये सच, ये सत्यता की ताकत मेरे पास आ जाएगी, ये मुझे परिवर्तन करने देगी. अभी तक ये आपकी स्टेटमेंट है सिर्फ, यू नो, अगर कोई सिर्फ ये प्रोग्राम सुने और सोचे कि हाँ मुझे तो गुस्सा अपनी वजह से ही आता है, तो चलो फ्रॉम टुमारो आई विल चेंज, इट विल नॉट हैपन. परिवर्तन किसी और की वजह से नहीं आ सकता. परिवर्तन सिर्फ तब आएगा जब अंदर से there is that inner work, you listen to it, wo aapko samajh mil rahi hai, but the work will have to be done inside. Experiment kare, baar baar ruke, dekhe kisne create kiya. It's my creation. Kitni der create karke rakhna? 1 minute, 10 minute, 1 ghanta, choose, and you will see that you have all the power.
1: Wonderful. In fact yahi ek aur jo manyata hai ki anger is good. You know, anger is good. तो यहाँ पे एक और फीलिंग भी हम चेक कर सकते हैं बार बार कि
0: what is good about it?
1: क्या मैंने गुड फील किया?
0: Yeah, ask. That's all. It's all about. See, self awareness क्या है? Every time talking to yourself. बहुत लोग बोल रहे हैं anger is good. Now let me ask myself. What is good? पूरा हो गया, सीन खत्म हो गया, गुस्सा कर दिया मैंने. जिसको डांटना था उसको डांट दिया, और 4 लोगों को भी डांट दिया, सब कुछ कर लिया. Now stop. What is good? Put it down on paper. अगर आप नहीं थॉट्स क्रिएट कर पा रहे, सिट विद अ पेन एंड पेपर, क्योंकि लिखने से फिर मे बी इट जस्ट फ्लोज, एंड राइट डाउन अच्छा क्या निकला इससे और नुकसान क्या क्या हुआ. फाइंड योर लिस्ट. मेरे को अच्छे वाले साइड पे तो पता नहीं क्या निकलेगा, लेकिन बिकॉज देयर इज नथिंग अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं निकला.
1: मैं इसलिए बता पाऊंगी क्योंकि मैं खुद ये कर रही हूं, क्योंकि ये एक बिलीफ है या व्हाट एवर इट इज, हम से लाइक वी ऑल एक्सपीरियंस दैट कि गुस्सा करने से कम काम निकलता है. वी लिव ऑन दैट कि गुस्सा किए बिना काम नहीं हो सकता.
0: तो काम तो निकल गया, और अगर प्यार से कराते तो अगर आप प्यार से कराते तो काम निकलता?
1: कोई नहीं सुनता. मतलब
0: आपके साथ कोई किस तरह से काम करवाए तो आपको अच्छा लगेगा. यू सी, इट्स जस्ट दैट वी डोंट हैव द पेशेंस. हमारे वो पेशेंस नहीं है कि हम प्यार वाला मेथड यूज करके देखें. एक्चुअली क्या हुआ, everyone has got used to that belief system.

0: उनके गुस्से से काम हो जाता है। अब अगर हमने किसी को एक बार कहा ये कर देना, उन्होंने नहीं किया, दूसरी बार कहा भैया कर देना, नहीं किया, तीसरी बार हमने थोड़ा सा जोर से बोल के कर दिया, और जैसे ही हमने जोर से बोलकर किया उस व्यक्ति ने कर दिया फटाफट। तो हमने कहा अरे वाह वेरी गुड, दिस मेथड वर्क्स, तो मैंने दो बार टाइम वेस्ट क्यों किया अपना। एंड क्योंकि टाइम तो है ही नहीं आजकल, वी आर ऑलवेज शॉर्ट, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस यहाँ फिट होता जा रहा है कि नेक्स्ट टाइम मैं दो बार प्यार से फिर तीसरी बार गुस्से से नहीं बोलने वाले,
1: सीधा गुस्से से बोलूंगी।
0: एंड फिर एक बार ऐसे करते हैं, दो बार करते हैं, धीरे धीरे वो हमारा संस्कार बन जाता है। क्यों? क्योंकि किसी एक के साथ ऐसा हुआ था, हुआ एक के साथ था कि एक को प्यार से बोलने से उसने दो बार में नहीं किया, लेकिन वो करते करते करते वो मेरा तो संस्कार बन गया, एंड नाउ दैट संस्कार विल कम इन टू प्ले एवरीवेयर एंड विद एवरीबडी, विद एवरीबडी।
1: हैबिट बना ली मैंने उसको,
0: मैंने हैबिट बना ली अपने आप की उसको, तो वो कहीं ना कहीं उनका तो कितना फायदा कर रही है वो नहीं पता, लेकिन अपना मेरा बहुत ज्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि एवरी टाइम हर काम कराने के लिए मैं अपने अंदर वो एड्रेनालिन, वो कॉर्टिसोल्स, वो हॉर्मोन्स, वो नेगेटिविटी, हार्ट बीट फास्ट, वो सब क्रिएट कर रही हूँ एक एक काम कराने के लिए।
1: लेकिन शिवानी अगर ठीक है सब जगह मैं नहीं करूंगी, लेकिन कई जगह मुझे दिख रहा है कि चार बार बोलने पे भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँ?
0: असर्टिवनेस, अथॉरिटी, अथॉरिटी चाहिए। यस, अगर हम समझते हैं कि प्यार से बोलने से नहीं काम होता तो हमें अथॉरिटी चाहिए, लेकिन अथॉरिटी इज नॉट एंगर, टोटली डिफरेंट। एंगर इज वो कि जब अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, टर्मोइल, हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं, हमारे अंदर से पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है। अथॉरिटी, हम बिल्कुल स्टेबल हैं, मुझे कोई गुस्सा नहीं आया हुआ है बिल्कुल भी अंदर, एंड फिर भी हम थोड़ा सा स्टर्नली, वो भी तब अगर आपको लगे कि प्यार से काम नहीं हो सकता, एक्चुअली इवन दैट्स नॉट नीडेड, प्यार से डेफिनेटली काम हो सकता है। ये हो सकता है आपको चार की जगह छह बार बोलना पड़ेगा, लेकिन इन द प्रोसेस आप क्या बिल्ड कर रहे हैं? बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स,
1: लेकिन बहुत अच्छी बॉन्डिंग जिन हालात में हम रह रहे हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति भी
0: यूज अथॉरिटी दे, वो भी इसलिए हो गया है। देखो ये सामने वाले व्यक्ति पे भी जो हम ब्लेम डाल रहे हैं, उनको भी किस चीज की आदत पड़ गई है।
1: मैं कहना चाह रही थी कि सामने वाला व्यक्ति को भी आदत है कि मुझ पे चिल्लाएंगे तभी मैं काम कर दूंगा, कि भाई अभी एक चिल्ला,
0: क्योंकि जब हम बार बार चिल्लाते हैं तो सामने वाला भी ढीठ हो जाता है उसके ऊपर, हाँ ठीक है जब चिल्लाएंगे तभी होगा। सो यू नो वी आर क्रिएटिंग दैट होल सिस्टम लाइक दैट, बट हमें ही उस सिस्टम को फिर से चेंज करना होगा। तो अगर प्यार से आपको लगता कि नहीं हो रहा है तो अथॉरिटी, लेकिन अथॉरिटी एंगर नहीं है, अथॉरिटी में आप पूरी तरह से स्टेबल हैं अंदर, आप सोच समझ कर एक एक शब्द बोल रहे हैं, आपका एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं निकलेगा, सिर्फ आप थोड़ा सा स्टर्नली बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन करके बोल रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू यूज समटाइम्स विद चिल्ड्रन ऑल्सो, अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड नीड्स टू यूज दैट, कि आपको थोड़ा सा असर्टिव होकर बोलना पड़ता है, बट नॉट एंग्री, एंगर इज नॉट नीडेड। लेकिन इसके लिए सबसे पहला बिलीफ सिस्टम जो तोड़ना पड़ता है वो यही है कि गुस्सा मेरी अपनी क्रिएशन है, इट्स मी। अभी तक बिलीफ था इट्स देम,
1: सिचुएशन, द अदर पर्सन, गुड, वंडरफुल। एंड यू नो अगेन ये बात सुन के हमें इसे अपना बिलीफ सिस्टम बना लेना ये भी जरूरी नहीं है,
0: नहीं, हर बात इसको एक्सपेरिमेंट करो, सारा दिन में ट्राई करो, आपको जो बोलना था आपने बोल दिया। सी इट्स लाइक दिस, यू वॉक इन एंड यू कम एंड से यू आर गुड फॉर नथिंग, दैट्स व्हाट यू से, तो आपने बोल दिया। अब मैं उस सेंटेंस को अंदर ले लेती हूँ और अपने आप को बोलना शुरू करती हूँ, इन्होंने बोला कि आई एम नो गुड, इन्होंने बोला आई एम नो गुड, नाउ आई लिसन टू दैट सेंटेंस, मेरा जो इमेज अपने साथ अपने बारे में अंदर है आई एम वेरी गुड, ठीक है, लेकिन आपने बोल दिया कि आई एम नो गुड, तो ये दोनों के साथ क्लैश हो गया, जहां वो क्लैश हुआ वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। इफ आई वॉन्ट टू मेंटेन माई स्टेबिलिटी आई कैन से इट्स ओके, इन्होंने वो बोला कि आई एम नो गुड, पहली बात या तो ये मुझे पूरी तरह से जानते ही नहीं है, दूसरी बात ये फिर भी एंटाइटल्ड है अपने ओपिनियन से, इनके बोलने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं बन जाऊंगी उस तरह से, लेकिन अब अगर मैं अपना आपा खो दूं देन तो आई एम रियली नो गुड, देन आई विल एक्चुअली बी प्रूविंग टू यू व्हाट यू आर सेइंग। सो यू से समथिंग टू मी दैट्स ओके, बट दैट डजंट क्रिएट द एंगर. उसको अंदर लेके जो मैं क्रिएट करती हूँ ना, इन्होंने ऐसा कैसे बोला, इन्होंने अपने आप को क्या समझते हैं, ये इन्होंने ऐसा, तो नाउ आई एम क्रिएटिंग दैट एंगर. अब वो कितना क्रिएट करना है, किस लेवल का क्रिएट करना है, कितनी देर का क्रिएट करना है.
1: Okay. लेकिन वो इतना रिएक्शन इतनी देर तक होता है ये हमें खुद ही नहीं पता, क्योंकि वो एक इंस्टेंट जो एक्चुअली एंगर है, जो रिएक्शन की बात है, वो इतना इंस्टेंट होता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैं इतना देर लगा पाऊंगी अपनी अपने अंदर की जो कॉन्वर्सेशन, क्योंकि मे भी आदत नहीं है इस कॉन्वर्सेशन.
0: अगर वो अवेयरनेस हमने अदरवाइज प्रैक्टिस की होगी तो नेक्स्ट टाइम ये बहुत स्लो चल रहा है, देन वो अवेयरनेस में रहेगा कि हाँ इन्होंने कह दिया. अभी हम क्या कर सकते हैं, सपोज अभी हमने गुस्सा कर दिया, लेकिन शाम को जब हम बैठ के रिफ्लेक्ट करेंगे, दैट टाइम चेक इट आउट, और आप देख लें और तब अपने आप को कंक्लूजन दे दें, उन्होंने गुस्सा नहीं क्रिएट किया था, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था. टॉक टू योर सेल्फ, काउंसिल योर सेल्फ, उन्होंने जो बोलना था वो बोला था. गुस्सा किसने क्रिएट किया,
1: मैंने खुद.
0: तो उस टाइम शायद अभी नहीं याद आएगा क्योंकि नया नया प्रोसेस चल रहा है, लेकिन शाम को बैठकर उस पर वर्क करेंगे तो कल जब होगा तब वो याद आ जाएगा.
1: वंडरफुल सिस्टर शिवानी, एंगर के इस एस्पेक्ट की बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि जिन भी रॉन्ग बिलीव्स को या जिन भी बिलीव्स को हम रॉन्ग या राइट समझते हैं, जो आप कह रहे हैं उसको भी ना मान के एक एक्सपेरिमेंट करते रहे, उसको एक सूत्र पकड़ के उस पर खुद अनुभव का जो हमारा एक सफर है उसे तय करते रहे और फिर देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अगेन काम अपने ऊपर करना जरूरी है. लेकिन आज ये जो पूरा हमारी श्रृंखलाएं चल रही हैं उसमें ये बात तो सामने आती है, जिस तरह से हमारा परिवार जुड़ा है, कि हम काम करने को तैयार हैं. शायद वो रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब ये रास्ता हम जरूर पकड़ेंगे. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: जिस गुस्से को हम सही मानते हैं, हो सकता है वो सही हो अगर आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा, क्योंकि हर बात की तरह बात यही कहेंगे कि जिस बिलीफ को लेकर हम चल रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है और उसके लिए अनुभव बहुत जरूरी है. आज तीन बातें हमारे सामने आई हैं कि सबसे पहले ये कि हम समझ लें कि गुस्सा अगर हम करते हैं या एंगर या क्रोध जो है वो किस तरह से ना सिर्फ हमारे मन को बल्कि शरीर को परेशान करता है, उसके लिए नुकसानदायक है. दूसरी बात ये, हम ये अभी तक मानते आए हैं कि गुस्सा कोई और क्रिएट करता है, किसी और के कारण मुझे आता है, लेकिन करने वाला मैं खुद हूँ, ये बात जानना बहुत जरूरी है. और तीसरी बात ये कि जो रॉन्ग बिलीव्स हैं या जो बिलीफ सिस्टम है वो सही है या गलत, ये भी हमें खुद तय करना है. सफर अभी लंबा है, लेकिन अगर हमने एक सूत्र पकड़ लिया है तो फिर सफर पर चलने को भी हम तैयार हैं. ये इंटरनल जर्नी यूं ही चलेगी. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं.

खौफ और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन, आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे, सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: Assertiveness without generating anger. तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब आपके ऊपर किसी का उधार हो तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं अपनी बात करूं तो मुझे दिन रात उस चीज की याद आती है कि मुझे ही किसी को लौटाना है, मुझे ही किसी को लौटाना है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी से लिया हुआ कोई सामान हो, किसी से लिया हुआ कोई किताब हो। हमेशा ही बुद्धि में ये बात रहती कि मुझे सामने वाले को लौटाना है। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो उसको धन्यवाद बोलना या उसके लिए कुछ उपयुक्त ऐसा कर्म करना जिससे उसके किए हुए उस सहयोग का मैं ऋण चुका सकूं, ये मुझे हमेशा याद रहता है। आपको भी याद रहता होगा। लेकिन एक ऋण ऐसा है दोस्तों जो हम अक्सर भूल जाते हैं। माता पिता का ऋण हमें याद होता है, दोस्तों का ऋण याद होता है, परिवार जनों का ऋण हमें याद होता है, लेकिन जो ऋण माँ प्रकृति का हमारे ऊपर है वो ऋण हम भूल जाते हैं। नैसर्गिक ऋण है ये, निसर्ग ऋण है ये, जिसको हम भूल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस निसर्ग ऋण को भूलता नहीं है, याद रखता है, वही जीवन में कुछ ऐसा कर जाता है जो कि पूरे भारत का नक्शा ही बदल देता है। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर श्री शरद काले जी के साथ। डॉक्टर श्री शरद काले जी भारत के वो यशस्वी वैज्ञानिक हैं जिन्हें 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कारण निसर्ग ऋण। जी हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर शरद काले जी और समझते हैं क्या है निसर्ग ऋण। स्वागत करते हैं डॉक्टर शरद काले जी का हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर शरद काले जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद होने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। डॉक्टर शरद काले जी, आपका रेडियो मधुबन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे श्रोता साथियों से जुड़ने के लिए आप हमारे बीच में आए। आपका दिनचर्या मैं समझता हूँ बहुत बिजी रहता होगा, क्योंकि आपको हमारे जैसे कई लोग ढूंढ रहे होते हैं समय आपसे बातचीत करने के लिए, आपका थोड़ा सा समय पाने के लिए। तो हम खुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।
4: मैं वैज्ञानिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर कोई जो कोई मुझसे बात करना चाहे उससे मैं बात करूं, उसे सैटिस्फाई करूं, ये तो मेरा कर्तव्य है
3: जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे शरद काले जी के सफर की, जहां पर बचपन से लेकर के एक वैज्ञानिक बनने तक और एक वैज्ञानिक ही नहीं भारत के प्रबुद्ध व्यक्तित्व बनने तक का जो सफर है वो हम सुनना चाहेंगे, आपकी कहानी आपके जुबानी।
4: मैं अहमदनगर में शालेय शिक्षण ले चुका हूँ मेरा, और सबसे ज्यादा मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ने वाले व्यक्ति थे मेरे स्कूल के जो 68 शिक्षक, मुझे पूरे नाम याद है, और मैं उनको अपनी तरफ से किताबें लिख के एक एक करके अर्पण कर रहा हूँ। 14 किताबें हो गई है और 54 किताबें लिखनी है। तो तभी मैं कहूँगा मेरा उत्तरदायित्व उनके प्रति थोड़ा सा तो जिसे हम रिटर्न कहते हैं वापस दे सकता, पूरा तो नहीं दे सकता। और दूसरे जो व्यक्ति ने इन्फ्लुएंस किया है मुझ पर, वो मेरे पिताजी और माताजी। मेरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक गुरु मेरी माताजी रही है। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पाल पोस के हमें तो बड़ा किया, लेकिन जो संस्कार दिए, मुझे याद है कि मैंने जो मेरे जीवन में अगले अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कचरे पे काम किया, उसकी शायद बीच मुझे याद है कि 1964 की दिवाली, उस दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा थी और लक्ष्मी पूजा के दिन मेरी माता जी ने कहा बेटे चवन्नी थी तो चवन्नी मेरे हाथ में दिया और कहा कि बाजार में जाके केरसुनी खरीद लाओ। केरसुनी को मराठी में मतलब मेरे शब्द इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। केरसुनी मतलब छोटा झाड़ू, वो उस जमाने में बैठ के झाड़ू लगाते थे तो छोटा झाड़ू हुआ था, लंबा झाड़ू नहीं हुआ करता था आजकल जैसे होते हैं, छोटा झाड़ू हुआ करता था, उसे हम लक्ष्मी केरसुनी कहते थे। तो मैंने माता जी से कहा माता जी आप सब लोग नए कपड़े खरीद रहे हैं, पटाखे खरीद रहे हैं, मिठाइयां खरीद रहे हैं, हम आप मुझे झाड़ू खरीदने को क्यों कह रहे हैं। तो मम्मी जी ने कहा कल बताऊंगी, कल दूसरा दिन लक्ष्मी पूजा थी तो लक्ष्मी पूजा के दिन उन्होंने चौरंग पे एक 5 रुपए की नोट थी, उस जमाने में 5 रुपए भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, और मम्मी के पास एक छोटा सा गोल्ड का ऑर्नामेंट था वो रखा और उसमें झाड़ू रखा और ये तीनों की पूजा करने को कहा। मैंने कहा मम्मी जी मैं लक्ष्मी की पूजा तो समझ जाता हूँ लेकिन झाड़ू की पूजा क्यों। तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया था, इतना सुंदर उत्तर मुझे आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है और पूजा का अर्थ भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से समझाया था कि आज भी मैं हाथ जोड़ता हूँ मम्मी जी को कि मुझे पूजा का अर्थ उन्होंने समझाया और बहुत छोटी उम्र में समझाया। उन्होंने कहा बेटे तुम जैसे केरसुनी कहते हो, झाड़ू कहते हो, वो असल में जुड़वा बहन है लक्ष्मी जी की और दोनों को सह अस्तित्व होता है और ये सह अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है तो दूसरी है, एक नहीं है तो दूसरी नहीं है, इसलिए एक की पूजा करना और एक का अपमान करना हमारे संस्कृति को शोभा नहीं देता, दोनों को पूजा दोनों को होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा पूजा मतलब क्या, हल्दी कुमकुम चढ़ाना, हार लगाना, आरती करना और नैवेद्य खुद खा लेना, इसका मतलब पूजा होता है क्या? ऐसा नहीं होता पूजा, पूजा होती है 364 दिन, 364 दिन जब सेवा कर रहे हो तो पूजा कर रहे हो, 365वें दिन याद करके, लक्ष्मी पूजा के दिन याद करके, खुद मिष्ठान्न खा के फिर खुद को याद दिलाना है कि मुझे अगले 364 दिन लक्ष्मी माता और झाड़ू माता आप दोनों की पूजा करनी है। तो ये होती है पूजा, तो ये जो अर्थ है पूजा का कि आपका कर्तव्य आप निभाते रखो वही पूजा होती है, वर्क इज वर्शिप। ये बहुत अच्छा लेसन, और झाड़ू ये अलग चीज नहीं है, ये जो कचरा है ये नाम की वजह से हमने इसका इतना हमारे देश में पूरा डंपिंग यार्ड जैसे लगता है क्योंकि वो धारणा मन में एक बार बैठ गई कि यह कचरा है। अगर मन में धारणा बैठ गई कि यह कचरा नहीं, ये लक्ष्मी की जुड़वा बहन है, तो फिर उसका देखने का नजरिया बदल जाता। तो ये बहुत उम्दा काम, सकारात्मक काम मेरे मम्मी जी ने मेरे मन पर संस्कार ये किए थे। दूसरे थे हमारे टीचर्स, बहुत ही अच्छे थे। एक टीचर ने हमें एक पौधा लगाने को दिया था, वो पीपल का पौधा आज 65 इयर्स ओल्ड हो गया है जो हमने अपने हाथों से लगाया था। तो उस 65 साल के पीपल के वृक्ष के नीचे जब मैं बैठता हूँ तब मुझे समझ आता है कि मेरे शिक्षक ने मेरे लिए क्या किया। हम कहते हैं कि हम सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है लेकिन कितनी मिलती है इसका हिसाब नहीं करते क्योंकि फ्री मिलती है। अभी आपकी अगर श्वास की हिसाब करें तो हम 21,000 बार श्वास लेते हैं दिन में और 21,000 बार श्वास लेते समय हम 17,000 लीटर हवा लेते हैं अपनी फेफड़ों में। तो 17,000 लीटर हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, मतलब 3,500 लीटर ऑक्सीजन होती है। उसका अगर वजन करें, केमिस्ट्री में एक रूल है कि 1 ग्राम मोल ऑफ ए सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, उस हिसाब से हमें 2.7 किलोग्राम ऑक्सीजन रोज लगती है। और जब कोरोना काल में हम ऑक्सीजन खरीदते थे तो पता चलता था कि 11,000 रुपए किलो पे ऑक्सीजन बेची जाती है इंडस्ट्रियल, मतलब 33,000 रुपए का ऑक्सीजन रोज हम 21,000 बार श्वास के लिए इस्तेमाल करते, मतलब हर श्वास के लिए हम 1.5 रुपए मोल अला करना चाहिए प्रकृति। अगर प्रकृति ने ये ऑक्सीजन का सप्लाई कट किया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं दिया तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती। प्रकृति ने कहा आप 1.5 रुपए नहीं दे पा रहे, आप श्वास नहीं ले पाओगे, ये हमारा जो मुलाकात है ये ऊपर लेनी पड़ेगी चित्रगुप्त के सामने, क्योंकि ना तो आप बिल दे पाओगे ना हम दे पाएंगे, लेकिन जो सर ने मेरे लिए काम किया था, मैं हाथ जोड़ता हूँ सर को पेड़ के नीचे जब बैठता हूँ, कि मेरा ऑक्सीजन का बिल सर ने दिया है ऑलरेडी। वो जो पेड़ अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से 3 किलोग्राम से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो जितना मैंने लिया उतना दे दिया। ये जो निसर्ग ऋण, जिसे मैं संस्कृत में निसर्ग ऋण या प्रकृति का ऋण, ये चुकाने की जो बात है, ये सातवीं पांचवी से छब्बीस पांचवी छठी सातवीं कक्षा में ये संस्कार हमारे ऊपर मन में, स्कूल में और घर में हुए। इसकी वजह से ही मैं आगे अच्छे काम कर सका। अगर ये संस्कार शायद नहीं थे तो शायद नहीं कर सका। एक और एक छोटी कहानी मैं बताना चाहूंगा, छोटी सी, कि हमारे एक सर ने एक बहुत अच्छा सम दिया था पांचवी कक्षा में। एक टंकी है, उस टंकी का वॉल्यूम 10,000 लीटर है और वो टंकी का पानी भरने का जो रेट है 120 लीटर प्रति मिनट है, लेकिन उसको एक छेद गिरा है और छेद से पानी बह रहा है, तो उसका पानी बहने का रेट 20 लीटर प्रति मिनट है। तो टंकी भरने को कितना समय लगेगा? होशियार बच्चे थे क्लास में, सबने जवाब दिया 100 मिनट लगेंगे, लेकिन मैंने कुछ सोचा, सवाल मेरे मन में आया, तो मैंने सम किया नहीं, सर की तरफ देखता रहा। सर को गुस्सा आया, सर ने कहा जवाब मेरे चेहरे पे लिखा है। जवाब तो नहीं लिखा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, पूछो। सर, मैंने कहा सर अगर टंकी गल रही है तो भरेगी, अगर हम उसे लीक बंद करें और फिर भरे तो पानी भी नहीं वेस्ट होगा और एक सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना पड़ेगा, एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। तो सर ने बहुत उम्दा चीजें दो बताई। सर ने कहा बेटे ऐसा कभी मत सोच, ये गलत सोच है, क्योंकि भारत में सब मार्क्सवादी लोग हैं, मतलब सबको मार्क्स चाहिए, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, ज्ञान की बात है मत बोल। लेकिन सर ने दूसरी बात बहुत अच्छी कही। सर ने कहा बेटे जब बड़ा होके समाज में जाएगा, भारत में जाएगा, मधुबन रेडियो में मुलाकात करेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि सारा भारत देश ही गलती हुई टंकी में पानी भर रहा है, और अगर उसमें से एक गलती बंद करने की कोशिश तुम करोगे तो आसमान में मेरी तरफ देख के बोल कि सर मैंने गलती बंद करने की कोशिश की है, तभी मैं तुम्हें किताब की गलती निकालने का अधिकार दूंगा, तब तक तुम्हें यह सम ऐसा ही करना पड़ेगा। पांचवी कक्षा के बच्चे को सर ने ये चीजें क्यों बतानी चाहिए, वो सर का ही बड़प्पन है, सर की ही सोच थी कि अगर इस बच्चे के मन में कुछ, दिमाग में कुछ सीड डाले तो उसका किसका किसके ब्रेन में वो से, अभी ये स्टोरी तो सर ने सबको बताई थी, तो ये सीड कहां पैदा होगा, कहां जर्मिनेट होगा। तो ये होता है शिक्षक का जो दृष्टिकोण जो होता है ना, बहुत उम्दा थे हमारे सर। ऐसे अच्छे शिक्षक मुझे मिले थे स्कूल में, और इतनी बढ़िया शिक्षक मिलने से मेरे जीवन को एक दिशा मिली। तो 1966 की बात है, जब डॉक्टर भावा जी का, अपनी बाबा का देहांत हो गया प्लेन एक्सीडेंट में 24 जनवरी को, तो उसे दूसरा दिन था, वो सैटरडे था, और उस दिन हमारे स्कूल में छुट्टी डिक्लेयर की थी, लेकिन सर ने बहुत ओजस्वी ऐसा भाषण दिया, ओ नहीं बाबा, क्या है विज्ञान, क्या है एटॉमिक एनर्जी। और उस सुन के मैंने घर में आके उसके नोट्स बनाए, आज भी मैंने मेरे पास वो नोट्स रखे हैं, कभी मौका मिले तो आपको दिखाऊंगा। तो वो जो नोट्स से मैंने मम्मी को बताया, मम्मी जी मैं वैज्ञानिक बनना चाहता, तो मम्मी ने कहा बेटे जो भी बनना है उसमें कभी चेंज मत करना, योर माइंड शुड बी फोकस्ड, अगर फोकस है, केंद्रीभूत रहेगा, लक्ष्य तुम्हारा ठीक रहेगा, तो तुम यशस्वी हो जाओगे, नहीं तो नहीं होगे। तो मैंने कभी मेरा लक्ष्य बदला नहीं, और आज तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया मैं वैज्ञानिक क्यों बना। तो ऐसे वैज्ञानिक बनने के जो रास्ते थे वो स्कूल में खुले हुए, तो कुछ देखे, कुछ सुने, कुछ समझे, कुछ लिखे, कुछ पढ़े, तो ऐसे जैसे जिंदगी बनती गई, तो भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च सेंटर में मैंने प्रवेश किया। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पहली चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में पढ़ रहा था, तो एक दिमाग में आया, अरे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कितना सुंदर है, आपको मालूम है आपके शरीर में कितना सेल्स है, पेशी है, तो हमारे शरीर में 3 ट्रिलियन पेशी होती है, सेल्स होती है। अभी हर पेशी में, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं आप उसका एविडेंस भी दे सकता हूँ कि हर सेल में 10^16 एटम होते हैं, मतलब 3 × 10^12 सेल, 12 सेल्स, और हर सेल में 10^16 एटम, तो हमारा शरीर 3×10^28 एटम से बना हुआ। और ये एटम में आपको मालूम है प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को मैं अलग नहीं मानता, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन

न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन। बेसिक कण जिसे कहते हैं वो दो ही मूलभूत कण दो ही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और निगेटिव है। तो ये निगेटिविटी समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की जो बात आपने की, ये समझना, ये मुझे एटॉमिक एनर्जी से लेसन मिला कि जब हमारा प्रोटॉन, जब हमारा एटम उसका इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पॉजिटिव हो गया, तो सोडियम पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन ने ले लिया तो क्लोरीन निगेटिव हो गया। तो सोडियम को पॉजिटिव, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो आपकी निगेटिविटी आप छोड़ दीजिए, आप पॉजिटिव बनोगे। आपका ही एटम आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है और आपके शरीर में ऐसे 3×10^28 एटम आपको बता रहे हैं भाई निगेटिविटी छोड़ दो, आप पॉजिटिव बनोगे। अभी ये निगेटिविटी इतनी खराब चीज है क्या? वो सोडियम ने दी, क्लोरीन ने ली, इसलिए बॉन्ड बना। अगर बॉन्ड नहीं बनता था तो सोडियम क्लोराइड नहीं बनता था, सोडियम क्लोराइड तो पेशी नहीं बनती थी, पेशी नहीं बनती थी तो ऑर्गन नहीं बनते थे, आप नहीं बनते थे, मैं नहीं बनता था, फिर ये भाषण नहीं सुनना पड़ता था। ये सब बना क्योंकि निगेटिविटी यूज एट राइट प्लेस इज कन्वर्टेड टू पॉजिटिविटी। ये लेसन हमें इस एटॉमिक एनर्जी से मिलता है कि आप निगेटिविटी, निगेटिव एंड पॉजिटिव दीज आर टू साइंस, डोंट टेक इट इन अ निगेटिव सेंस। ये निगेटिविटी भी जरूरी है लेकिन उसे निगेटिविटी के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। अगर मेरे सामने ये प्लग पॉइंट है, इसमें निगेटिव में हाथ डालूंगा तो शायद मुझे शॉक नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव में हाथ डालूंगा तो पूरा मंडल पूरा होके मुझे शॉक लगता है। तो ये निगेटिविटी इस नहीं होती तो ये फ्लो नहीं होता पहले, तो निगेटिविटी होना जरूरी है। तो कचरे को मैं लोगों को कहता हूँ कि कचरे को निगेटिविटी मत सोचो। तो मैथमेटिक्स में भी जो थर्ड कोऑर्डिनेट आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निगेटिव इनटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो पॉजिटिव? तो निगेटिविटी पुट एट राइट प्लेस बिकम्स पॉजिटिविटी, कचरा पुट एट राइट प्लेस बिकम्स रिसोर्स। एंड शेक्सपियर से मेरा वही झगड़ा है कि शेक्सपियर को मैं कहूंगा जब ऊपर जाऊंगा मिलूंगा उसे कि भाई आपने नाटक तो बहुत अच्छे लिखे थे लेकिन एक बात आपने बहुत गलत कही, आपने कहा कि व्हाट इज देयर इन द नेम, आपने देखो कचरे को कचरा कहा, हमारा पूरा भारत देश डंपिंग यार्ड बन गया। अगर हमने हमारे बच्चों को हम पढ़ाते थे ये कचरा नहीं है रिसोर्स है तो ये डंपिंग यार्ड नहीं बनता था। कितनी छोटी छोटी चीजें होती है कि देखिए हम अपने थाली में, अभी आप ब्रह्म कुमारी के यहाँ सेवा देते हो तो आप बिल्कुल नहीं फेंकते होगे, लेकिन कितना अनाज हम फेंक देते हैं अपने डिश में। जब हम अनाज फेंकते बना बनाया खाना सब्जी अच्छी नहीं हुई फेंक दी, तो हम ये नहीं सोचते कि खाना फेंकने से हम अपनी मम्मी जी का या पत्नी का या अपने बहन का अपमान करते हैं, हम किसान का अपमान करते हैं और हम सृष्टि का अपमान करते हैं। किसने अधिकार दिया आपको ये तीन लोगों का अपमान करने का? अगर ये अपमान नहीं करना है, अगर नहीं करोगे आप तो 20% कचरा तो उधर ही खत्म हो जाएगा पैदा होने से पहले ही। फिर आप बाजार में जाके केला खरीदते हो तो केला खरीदते हो तो छिलके के साथ खरीदते हो या बिना छिलके का खरीदते हो? तो छिलके के साथ खरीदते हो। तो केला आप खाए छिलका किसी और ने उठाई, ये कहाँ का न्याय होगा? उसकी भी मरम्मत आपको ही करनी है, वो धरती माता को आपको ही वापस देना है। और मैंने ऐसी टेक्निक बीआरसी में डेवलप की है कि जिससे मैं 24 घंटे में ये केले के छिलके का खाद बना सकता। मेरे घर से कभी कचरा बाहर नहीं जाता, मैं सारे मेरे घर में जो अपशिष्ट बनते हैं वेजिटेबल के, मैं वेजिटेरियन हूँ, जो भी वेजिटेबल के बचे हुए पार्ट है मैं मिक्सर में डालता हूँ और उसे ऑर्गेनिक मैन्योर में घोल देता हूँ, तो 24 घंटे में उसका जैसे दूध का दही बनता है मेरे घर में खाद बनता है। और मैंने मेरी वो उसे मैं डस्टबिन नहीं कहता, मैं उसे निसर्ग लक्ष्मी कहता हूँ, वो मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे रखी और वो डाइनिंग टेबल पे उसको कोई स्मेल नहीं, कीड़ा नहीं आता, कीटक नहीं आता, क्योंकि वो सूक्ष्मजीव मेरा काम करते हैं, वो इतना आसानी से 24 घंटे में काम करते हैं कि उसे खुशबू आती है, जैसे पहले बारिश के बाद जैसे खुशबू आती है वैसे मेरे खाद को खुशबू आती है। अगर सोचिए कि भारत में सब लोगों ने ये काम किया तो उसमें एक बिजनेस प्रपोजल भी मैं बच्चों को देना चाहता हूँ मैं, कि मैं अपने घर में दो लोग हैं हम 5 किलोग्राम खाद में हर महीने में ब्यूटीफुल FCO क्वालिटी जिसे फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया है उस क्वालिटी का

0: खाद में बना दो। अगर ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में करना है तो मैं आके करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे में आप खाद करके दूंगा। तो क्योंकि इतना बड़ा पैमाने पे आप लोग खाना खिलाते हो तो अपशिष्ट तो बनता है, तो उनका खाद बनाने की आपको ट्रिक बताता हूँ ना। ये तो भगवान का दिया हुआ है, कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं है, मैं आके आपके साथ जुड़ जाऊंगा और करूंगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 किलोग्राम खाद में आपके 2 लोग बनाते हैं, भारत की लोक संख्या 140 करोड़ है, अभी 110 करोड़ लोग भी एक्टिव है समझिए, तो 55 करोड़ यूनिट हो गए 2 लोगों के, 55 करोड़ गुना 5 मतलब 275 करोड़ किलोग्राम हर महीने में गुना 12 भारत को यूरिया की जरूरत है। भारत पूरा सेंद्रीय खाद पे काम चला सकता है अगर आपने आपके घर से खाना और जो अपशिष्ट है फेंकना बंद कर दिया। कितनी आसानी से कहते हैं, मैं अभी एक कविता में आपको एक सवाल करूंगा कि चांद पे तो पहुंच गए थे कई साल पहले, अंतरिक्ष अब दूर नहीं है, पहुंचेंगे कल मंगल ग्रह पर या शायद उसके आगे भी, आएगी कल बुलेट ट्रेन देश में हमारे, होगी कई सारी स्मार्ट नगरी हमारे देश में, लेकिन क्या बदल सकेंगे हम खुद को, क्या करेंगे कूड़ा मुक्त अपने घर को, डंपिंग यार्ड बढ़ाते जा रहे हैं, धरती माँ को कब से तड़पा रहे हैं, घर का कूड़ा म्युनिसिपालिटी के गाड़ी में डाल के, घर तो स्वच्छ होगा मेरे मित्र, लेकिन क्या भारत स्वच्छ होगा, उसी कूड़े से आएगी ना कल के अनाज की बोरी, यही बतला रही ना पदार्थ के अविनाशित्व की कहानी, कूड़ा बाहर फेंकने से जहां दिन की शुरुआत होती है वहां भारत बदलने की बात हो रही है, मेरा भारत।
1: जी बहुत सही,
0: आपके घर से कूड़ा मत फेंकिए। अभी और एक कविता में हमारे देश की समस्या में बता दू, छोटी कविता है कि कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है, पहले मुझे सताता था ये सब, कहीं मुझमें का इंसान खो तो नहीं रहा है, जब मैं वातानुकूल महल में अपने रेशम के कंबल लेकर सोता हूँ, बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है, मैं रेशम के कंबल लेकर सोता हूँ तो मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आता कि मेरा वातानुकूल यंत्र ऊर्जा खर्चा कर रहा है, आधी आबादी को पंखा भी नहीं मिलता, आधी आबादी को कंबल नहीं मिलता, ये मेरे दिमाग में नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। जब मैं बाजार में जाता हूँ हाथ में थैली लिए बिना और प्लास्टिक की थैलियां भर भर के सब्जियां लाता हूं तो मुझे शर्म नहीं आती है क्या, सिर्फ मेरी प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की प्लास्टिक की थैलियां प्रदूषण नहीं फैला रही है, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं। जब मैं पार्टियां देता हूं गजब की और थालियां भर भर के खाना खिलाता हूं ऐसे मित्रों और सज्जनों को जिसको जिनको खाने की तो समस्या नहीं है लेकिन खाने से समस्या हो सकती है, वो फेंक रहे खाना थाली में वो मुझे समझने मुझे नजर नहीं आता, पार्टी के वेटर तरस रहे खाने के लिए वो मुझे नजर नहीं आता, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा। जब मैं आलीशान गाड़ी में बैठ के रास्ते से निकलता हूँ सैर करने तो रास्ते के मुसाफिर नजर नहीं आते ना, मुझे गाड़ी से होता हुआ प्रदूषण नजर आता है क्या, सिर्फ मेरी गाड़ी प्रदूषण फैला रही है, दूसरों की गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैला रही है, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा। जब मैं मोबाइल लेके चित्रीकरण करता हूँ किसी दुर्घटना का या किसी के मृत्यु का तो आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता, मेरे हाथ कांपते नहीं है, आगे बढ़ के मैं मदद नहीं करता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे वापस आके वो वीडियो फेसबुक पे अपलोड करके लाइक्स कमाने हैं दोस्तों से, कहीं मुझमें का इंसान हो तो नहीं रहा है। लेकिन आजकल आनंद की बात यह है दोस्तों, मैं बिल्कुल नहीं घबराता क्योंकि मेरे अंदर का इंसान मौत की नींद सो रहा है, मैंने अब सोचना ही बंद कर दिया है। जब मैं देखता हूं ना कि कितने हम उदासीन हो गए हैं, कितनी असंवेदना अपने मन में पैदा हुई है, कितनी आसानी से हम कचरा दूसरों को देते हैं, मिक्स करके देते हैं, सोचते नहीं है। एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ कि मेरे हाथ में समझिए कि प्लास्टिक की दूध की थैली भरी हुई है, ये मैं आप कैसे काटोगे, हाथ में कैंची लिए कॉर्नर कट करते हैं, हम सब कॉर्नर कट करते रहते जिंदगी में, तो ये कॉर्नर कट करते हैं, अभी एक थैली है तो कॉर्नर कट करने की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन भारत में अमूल का जो बिजनेस है 25% मिल्क बिजनेस है एंड दे टेल 2.5 करोड़ पैकेट्स एवरी डे, That means 10 crore packets are sold. 10 crore corners fall down onto the ground और वो सारे पर्यावरण में जाते हैं, उनका कुछ विघटन नहीं होता, उनके सारे सूक्ष्म जो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल बनते हैं और वो सारे जमीन में मिल जाते हैं, क्योंकि वही पहुंचते हैं वो, और पानी में पहुंच जाते हैं, उसी से हमारे शरीर में आते हैं। तो ये जो समस्या पैदा हुई है ये हमारे असंवेदनाशील वर्तन से पैदा हुई है। और ये कचरे पे काम करने के बाद बागाड़ परमाणु अनुसंधान केंद्र में ये मुझे तीव्रता से ये लग रहा है कि हमारे देश में अगर किसी की जरूरत है तो ये इंडिविजुअल टीचिंग की बहुत जरूरी है। इसलिए फिर मैंने अपनी विज्ञान धारा प्रोग्राम से बच्चों से बातें, मैं 30 साल हो गए रोज कम से कम 300-400 बच्चों को साल में 200 दिन तो मैं बातें करता रहता हूँ। ये एक ज्वाला है, एक मशाल है, ये मशाल लेनी है कि अरे ये काम करना है, जरूरी है। अगर हम वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से बाहर जाके तो हम नहीं रह रहे, उसी जिंदगी में उसी सिस्टम में रह रहे। पानी की समस्या है, पानी की इतनी समस्या है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहाँ डिस्टिलेशन प्लांट चलते रहते हैं, एक जगह ऊर्जा खर्चा होती है, दूसरी जगह एसी से पानी जो बाहर से लीक होता है वो मानसरोवर क्वालिटी पानी होता है, लेकिन उससे झगड़े होते हैं, मेरे सर पे आपके एसी का पानी गिर रहा है। अगर वो कलेक्ट करके आपके सारे डिस्टिलेशन प्लांट आप बंद कर सकते हो, आपके सारे जो कार बैटरीज को पानी लगेगा वो एसी पानी से लगा सकते हो। भारत में 10 करोड़ अगर एसी है तो आपको रोज 60 करोड़ लीटर मानसरोवर क्वालिटी पानी मिल रहा है, और वो उधर ड्रेनेज को जोड़ते हैं, ड्रेनेज को कनेक्ट करते हैं और वहां से बह जाता है। कितनी मतलब ये दो जो हमारे टीचर ने कहा था ये भारत में सारे लीकेजेस है, ये लीकेजेस इतने बड़े हैं, हमारे जो फूड का जो वेस्ट होता है, पानी का वेस्ट होता है, कचरे का, कपड़े का वेस्ट होता है। अभी आपको मैं कहूंगा आप खुद का एक बार अकाउंटिंग कीजिए, अकाउंटिंग में आपको लगेगा कि घर में इतने सारे चीजें पड़ी रहती है जो हमने सालों से इस्तेमाल नहीं की है। अगर वो इस्तेमाल नहीं की है तो रखना मेरे हिसाब से क्रिमिनल अपराध है और ये प्रोसीडिंग किया हुआ अपराध है। तो शेयरिंग नहीं है भारत में, ये शेयरिंग कैसे बढ़ाए, अगर ये चीजें शेयर हो सकती है क्यों हम पीछे पड़ते हैं? हर नई चीज आई मार्केट में मुझे चाहिए, क्यों हम इसके पीछे भागे? हम विज्ञान के सारे उपकरण यूज तो करते हैं लेकिन उससे हमारी वैज्ञानिक मेंटालिटी नहीं बदली। अभी इतने गड़े चांद पे तो पहुंच गए, ये यूनिवर्स कैसे एक्सपांड हो रहा है उसके बारे में, और हम इक्लिप्स में वो हमारे ऊपर क्या परिणाम होगा, ये सारा परिणाम विज्ञान हमारे किताबों में रह गया, इसका सब ये परिणाम है। नहीं होता है परिणाम। अगर आप प्रिकॉशन लेके अगर आप समाज में जाओ कोई गलत परिणाम नहीं होता ये, लेकिन ये समझ नहीं पाते हम, क्योंकि हम आधे, हम जो मैंने जैसे कहा मार्क्सवादी एजुकेशन से चलते हैं,
1: नंबरों के पीछे बहुत ज्यादा भागने लगे हैं, चाहे वो स्कूलों में नंबर हो, चाहे स्कूलों में नंबर हो या अकाउंट्स में पैसों का नंबर हो या बुद्धि में कहीं पहुंचने का होड़ हो, तो इट्स लाइक अ रेस
0: में हम। अभी ऐसा है ना कि मैथमेटिक्स इज देयर परफेक्टली इन योर लाइफ, हम जिसे डेरिवेटिव कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, आपका एक पीस देन इट बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू 10 क्रोर्स, इट बिकम्स अ ह्यूज, इट इज नॉट सिंपल समेशन, इट बिकम्स इंटीग्रेशन। और इसका बहुत बड़ा एक जिसका होता उतने 10 क्रोर टाइम्स नहीं होता, वो 100 क्रोर टाइम्स होता है, बिकॉज इट इज एन इंटीग्रेटेड इफेक्ट। तो ये डेरिवेटिव, और हम इस बच्चों को इतना उसे चिढ़ आती है कि हमें ये समझता नहीं है, लेकिन इस तरीके से इंटीग्रेशन आप समझा दो बहुत अच्छी तरह से बच्चे समझ जाते हैं। तो सर तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, समझने को आसान भी है, फिर डालो उसमें वो फॉर्मूला, क्या चीज है फॉर्मूला, तो हमने बनाए अपने सिंपल करने के लिए। तो ये जो तरीका है पढ़ाने का, हमारे शिक्षकों का जो तरीका था पढ़ाने का, शिक्षा सेवा नहीं, आज धंधा बन गया है। तो मैं तो सैडली कहता हूँ धंधा बन गया, हम बहुत सेल्फी बन गए, हम अपनी मातृभाषा में नहीं पढ़ते। मुझे बहुत बड़ा गर्व है, मैंने 11वीं तक अपनी मातृभाषा में पढ़ा और आज तक मुझे जिंदगी में कहीं भी मुझे कुछ डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी।

0: देर आर ओनली टू प्लेसेस वेर यू कैन फोर्सिबली टेक पीपल, यू हैव टू टेक फोर्सिबली पीपल, वन इज जेल एंड अदर इज स्कूल. तो इफ आई हैड मेट हिम आई वुड हैव टोल्ड हिम, मैं बताता था उनको, मुझे जेल का तो पता नहीं लेकिन हम स्कूल में सर ऐसा कभी फोर्सिबली नहीं गए. हमारे स्कूल में इतने अच्छे संस्कार थे, लोग पढ़ाई भूल गए, पढ़ना भूल गए. आप खुद को पूछिए, आई एम नॉट गोइंग टू एम्बरेस एनी क्वेश्चन टू एनी वन, आप कितनी किताबें पढ़ते हो साल में? आजकल नहीं पढ़ते. लाइब्रेरी भूल गए हम. लाइब्रेरी होती है दिखाने के लिए लाइब्रेरी. हमारे स्कूल में एक रूल ऐसा था, अलिखित नियम था, कि हर बच्चे ने हर हफ्ते एक किताब पढ़नी चाहिए. बाय द टाइम मैं 11वीं में पास होके बाहर आया, आई हैड रेड माय 350 बुक्स. और आज मेरी 5000 किताबों की लाइब्रेरी है. मैंने ए टू जेड हर किताब पढ़ी हुई. ये बड़ी गर्व से कहता हूं मैं. और ये होना जरूरी है, ये हर एक के लाइफ में होना जरूरी है. अभी आप, क्योंकि आप जब टीवी देखते हो, सीरियल देखते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते हो, आपका ब्रेन काम नहीं करता. जब आप पढ़ते हो ना, तब आपको ब्रेन काम करता. तो आखिर ये समस्या है.
1: मुझे लगता है चूंकि पढ़ते समय बुद्धि को बहुत ज्यादा केंद्रित करना पड़ता है, जो थोड़ा सा मशक्कत वाला काम है, इसलिए लोग उससे बचना चाहते हैं. जबकि वो ये भूल जाते हैं कि ये मशक्कत ही जो है बुद्धि का एक्सरसाइज है, ये उस इंटेलेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाएगा. तो वो उस मेहनत से बचना चाहते हैं. जैसे अभी कोई जिम जाता है, अगर वो जिम जाकर के कुछ करे नहीं, बस लोगों को मशक्कत करते हुए देखे, तो उसके तो कभी मसल्स बनने ही नहीं वाले. उसको खुद को मेहनत करना पड़ेगा. ठीक ऐसे ही किताबें पढ़ना, जैसे आप कह रहे हैं, वो बहुत वाकई में इम्पोर्टेंट है. ऐसे में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए? क्योंकि चलिए मानते हैं कि लोगों का अब वो जो एक हैबिट है पढ़ने का वो छूट गया है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आज इस एपिसोड को जो सुनने वाले हैं उनके मन में आता है कि डॉक्टर शरद जी ने कहा था कि उन्होंने किताब पढ़ करके अपनी बुद्धि को बड़ा बलशाली बनाया है, मुझे भी करना है. Where to start? What is the beginning point? कहाँ से शुरू किया जा सकता है?
0: बहुत बहुत सिंपल सी चीज है. ये मेरे मम्मी जी ने एक मंत्र दिया था कि unless you read something new, don't sleep. एक छोटा सा मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है कि नया कुछ पढ़ने से आप सोना नहीं. अगर यू आर वेरी ट्रू टू दैट, अगर आप उसमें वेरी फर्म, आपका मन अगर उसमें बन गया, नहीं आज कुछ पढ़ूंगा तभी सो जाऊंगा, तभी आप जरूर पढ़ो. छोटी सी चीज होती है. एंड शुरू में ये सारे जो चीजें हैं, बदलाव है, कोई भी बदलाव आसानी से नहीं होता, लेकिन बदलाव को आप इस तरीके से ले लीजिए कि जो जीवन का अंग बने. तो अगर छूट जाए, ये बच्चों को, अगर बेटा पिताजी को हाथ में मोबाइल लेके बातें करते हैं और पिताजी, वो बच्चा बेचारा बाप से बोलने को बहुत तरस रहा है, एंड ही डजंट हैव टाइम, इट डजंट रिफ्लेक्ट नाइसली, अच्छा नहीं दिखता, वो प्रतिबिंबित नहीं होता. तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, उसका मेरे पास जवाब है. जो स्विट्जरलैंड में मैंने देखा, जर्मनी में मैंने देखा, ये लोग, ये देश रईस क्यों है मालूम है आपको? ये देश रईस इसलिए है, जो मैंने देखा, कि शाम को 6 बजे उनका सफर डिनर हो जाता है और 6:30 बजे किचन बंद हो जाता है, और 6:30 बजे के बाद 11:30 तक वो खुद का समय होता है, पढ़ते रहते ये लोग. आप देखिए स्विट्जरलैंड में सारी टाउन लाइब्रेरी भरी हुई रहती है. तो ये 5 घंटे अपने को देते हैं. आप खुद को पूछिए, आपको कितना समय देते हैं? मैं ये, आपको 2 घंटे का समय दे दी, बहुत काम हो जाएगा. एंड कीप ऑन टेलिंग योर सेल्फ यू आर ए स्टूडेंट. हर मनुष्य विद्यार्थी होता है अंतिम श्वास लेने तक. अगर वो हमारे आइंस्टाइन थे, एक बड़ा बाप आदमी था, नोबेल प्राइज विनर था, फिजिक्स का जानकार था, उसके मेंदू के बारे में, ब्रेन के बारे में कहते थे ऐसा ब्रेन हुआ नहीं. वो आदमी ने क्या कहा उसके पीएचडी स्टूडेंट को, व्हेन ही वाज डाइंग ऑन मृत्युशैया पे थे, तब उन्होंने बच्चों को कहा, पीएचडी बच्चों को, आज मुझे पता चलता है कि मुझे कितना विज्ञान मालूम नहीं है. कैन यू सी द पर्सन? तो विद्यार्थी होना बहुत जरूरी है. अगर आप विद्यार्थी है और आपका काम आप निभा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. मुझे आत्मविश्वास की दिक्कत मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई. मुझे ना तो कभी टेंशन आता है, ना कभी अभी अभी क्या होगा ये दिमाग में कभी नहीं आता, क्योंकि आई एम वेरी श्योर. मैं खुद, मुझे पक्का मालूम है मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे एक तपस्या है. ये तपश्चर्या पुराने जमाने में

0: वो भगवान के सामने बैठ के करते थे। आज की तपश्चर्या अलग होती है। ये 5 घंटे की तपश्चर्या अगर आप करेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में लोग करते हैं, जर्मनी में करते हैं, इसलिए लोग आगे आगे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए, यूनिवर्स एक्सपांड ऐसा करने हो रहा है, ये ढूंढने के लिए वो यूक्लिड मिशन उन्होंने भेजा है, हमने भी भेजा है, आदित्य भेजा है, चंद्रयान भेजा है, हमारे भी लोग है, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। हमारे देश में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, लेकिन दो चीजें हमें खराब हो रही है। एक, हमारा समय अच्छी तरह से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये व्हाट्सएप ये जो चीजें आई है ये एक्चुअली वो डाइवर्टिंग टाइप आई है, और बाहर के लोग यही देने की कोशिश करेंगे ताकि ये 140 लोगों का देश मूर्ख रहे और अच्छी मार्केट प्लेस बनी रहे, यही चाहेंगे वो, अपनी उन्नति वो नहीं चाहेंगे। इसलिए हमारी उन्नति हमारे हाथ में है। अगर हम आपके सवाल का आंसर यही जवाब यही है कि खुद को आप 2 या 3 घंटे दिन में शुरू में दे दीजिए, बाद में वो नंबर बढ़ा दीजिए, और खुद को बताते रहिए मुझे मालूम नहीं है, मुझे ये पढ़ना है। डोंट से दैट यू आर ए मास्टर,
1: मुझे सब आता है। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे हैं डॉक्टर शरद काले जी को, जो कि भारत के एक बहुत जाने माने वैज्ञानिक हैं, जिन्हें भारत सरकार ने वर्ष 2009 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया है। बट आपने इनको बहुत पहले और कई जगह पे अपने विज्ञान के तथ्यों के द्वारा समाज में सुधार लाने का प्रयास करते हुए देखा है, सुना है। आप में से कईयों ने इनको आमिर खान जी के शो सत्यमेव जयते पे भी देखा है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको वहीं देखा था डॉक्टर शरद काले जी। मैं उस किस्से पे आऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब मैं किसी को पूछता हूँ कि आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनाए, तो वो अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं, और अक्सर उन कहानियों में कई माइलस्टोन्स होते हैं, कई ऐसे पड़ाव होते हैं जिनका वो जिक्र करते हैं। लेकिन मैंने आपकी कहानी में पाया डॉक्टर शरद काले जी कि आपने कहीं पर भी किसी पड़ाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन उस पड़ाव के पीछे के व्यक्तियों का जिक्र किया। आपके 68 शिक्षक, आपकी माता जी, आपके पिताजी, आपने लोगों का जिक्र किया। ये बहुत अनोखा है और बहुत सुकून देने वाला एक विषय है कि व्यक्ति की जो यात्रा होती है उसमें यात्री पड़ाव याद रखता है, मुकाम याद रखता है, लेकिन मुकम्मल उन मुकामों को बनाने वाले जो लोग होते हैं उनको भूल जाते हैं अक्सर। आप उन लोगों को याद रखते हैं, इसलिए शायद आप भी यादगार। आपको पहले तो उस चीज के लिए हम सलाम करते हैं, लेकिन साथ में एक सवाल भी इसके साथ पूछते हैं कि ये जो भावना है, आभार की भावना, ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये आपको पर्सनली कैसे एनरिच करता है? इसकी वजह से आप अपने जीवन में क्या अनुभव करते हैं? अगर मान लीजिए शरद काले जी के जीवन से ये आभार की भावना को थोड़ा भी कम कर दिया जाए, तो क्या देखते आप शरद काले जी के जीवन?
0: मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता था, मैं बिल्कुल यहाँ तक नहीं पहुंचता था। ये सारा जो है, जैसे बीआरसी के लाइफ में भी डॉक्टर काकोडकर सर जैसे एक बहुत अच्छे गुरु मेरे सामने खड़े थे। मैंने जब कचरे पे काम शुरू किया तब सारे लोगों ने तो हंसने लगे, ये क्या कचरे पे काम करने की, अनुसंधान केंद्र में आप जहाँ एटॉमिक वेपन्स बने जाते हैं, एटॉमिक एनर्जी बनती है, वहां आप कचरे पे क्या काम कर रहे हो? तब सपोर्ट दिया था सर ने। तो मैंने उसमें उपाधि मैंने मिली, उपाधि मैंने जिस दिन मैंने निवृत्त हो उपाधि भी छोड़ दी, उपाधि इज वेरी गुड, आई हैव नथिंग अगेंस्ट उपाधि, लेकिन वो उपाधि और जो डॉक्टरेट वगैरह है मैं इसे नहीं मानता हूँ। उसके साथ जो हमारे सर ने जो कहा था कि वो गलती बंद करने की कोशिश, अगर किसी ने मुझे आके बताया कि सर मैंने आज से खाना फेंकना बंद कर दिया है, मुझे अच्छा लगता है कि अरे कुछ तो चीज असर हुआ इस चीज का। तो ये जो हमें क्या फाइनली हम इस धरती पे, मैं ये मानता हूँ कि पंचतत्व ने आत्म तत्व अलग किया, उसे शरद काले नाम देके बोला कि जा धरती पर चला जा, लेकिन जाते समय नंगा जाएगा, आते समय नंगा है, तो क्या किस लिए मैं भेज रहा हूँ? मेरे हाथ में उन्होंने पूरी वसुंधरा सौंप दी। अगर आप किसी को 15 रुपए 10 रुपए देते हो तो आप उसे मॉर्गेज लिखते हो कि मेरे को के दे दो, तभी इसने भगवान ने तो कुछ लिया नहीं, मॉर्गेज पूरी दुपरते आपको दे दी। तो उसने एक एक्सपेक्टेशन है पंचतत्व को आपसे, वो एक्सपेक्टेशन ये है, अपेक्षा ये है कि आप जब गए थे तब धरती जितनी सुंदर थी उससे और सुंदर बना के वापस आए, और सुंदर बनाने में आपको जो लोग मदद करेंगे उनके चरण छुओ आप। वही आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी वजह से आप ये जो रास्ता है चल रहे हैं, रास्ता कट रहा है। और ये अगर धरती आप सुंदर कर रहे हो तो उनका योगदान उसमें बहुत बड़ा है, आप सिर्फ निमित्त।
1: ये बहुत सुंदर बात आपने रखी कि जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जहां पर आप हो वहां से जब आप वापस आओ तो उस जगह को 100 गुना सुंदर बना करके, ये जो लक्ष्य है ये अगर व्यक्ति अपने जीवन में ठान ले तो मैं समझता हूँ उसका हर कदम जो है बहुत कल्याणकारी कदम होगा, वो कभी भी किसी का नुकसान कर ही नहीं सकता।
0: नहीं सुनेगा किसी गलत नहीं
1: जी।
0: ये जो मैं बच्चों से बोलता हूँ, आप ये धर्म की बातें हैं, पूजा की बातें हैं, आप घर में रख, ये पूरे विश्व में एक ही धर्म है वो मानव धर्म, और दो ही जाति है, एक स्त्री और एक पुरुष। अगर ये सोच के आप चाहो, जब रास्ते पे मैं चलता हूँ, मैं मेरी गाड़ी में बस में बैठा हूँ, बस का ड्राइवर मुस्लिम है क्रिश्चियन है, मुझे क्या वास्ता है, मुझे जगह पे ले जा रहा है, मेरे लिए मेरा गाइड है, भगवान है, वो श्री मेरा श्री कृष्ण है, सारथी है, वो लेके जा रहा है, उसमें गलत क्या है। ये जो भावना मन में पैदा हुई, आप किसकी पूजा करते हो आप घर में रखो, आपको अगर शांति मिलती है ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाके आप जरूर जाओ, कोई रोकता नहीं है, लेकिन दूसरे को आप नीचे
1: मानो,
0: इसकी ये मत कहो कि आप ये मत कहो, आपका आपने रास्ता तय किया, आप उस रास्ते से चलते रहो।
1: ये जो दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो वृत्ति है, इसकी वजह से ही शायद हम कभी भी कचड़े का समाधान नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कचड़ा मतलब यूजलेस या वेस्ट, लेकिन किसी का वेस्ट जो है वो किसी के लिए गोल्ड होता है, समझिए जैसे जो कचरा बिनने वाले लोग होते हैं उसके लिए तो वही वेस्ट गोल्ड है। तो मैंने कहीं किसी को बोलते हुए सुना था,
0: गोवा में 250 टन का एक प्लांट चलाता हूँ मैं, उनका मैं एक्सपर्ट हूँ, वहाँ 250 टन कचरा जीरो हो जाता है, और उसमें 1 मेगावाट बिजली भी निकलती है, 40-50 लाख रुपए रिसाइकलेबल वैल्यू भी उसे मिलती है, और उसे जो RDF करके वो सीमेंट फैक्ट्री को ईंधन भी मिलता है, और कचरा भी शून्य,
1: लोगों को रोजगार भी मिल रहा है उससे।
0: 165 रैक भी कर अभी उनके बहुत अच्छे हालात हो चुके हैं, कहीं भी गोवा में जाके सालीगांव प्लांट देखिए आप खुद खुश हो जाओगे, 165 लोगों का जो रास्ते पे कचरा उठाते थे अभी उनको 20,000-25,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, 2 वक्त का खाना मिलता है, पूरा मेडिकल इंश्योरेंस उनका भरा रहता है, तो उनका कितना अच्छा हुआ, और गोवा भी जीरो वेस्ट होता है। तो ये चीजें होती है कि प्रकृति के विश्वकोश में कचरा शब्द नहीं है, वो हमने लाए, अगर प्रकृति के विश्वकोश में एक कचरा दूसरे का रिसोर्स है, इसे ही पुनर्चक्रांकन कहते हैं। जीवन चक्र होता है, जो पानी से एक कविता मैंने लिखी थी, युगों से रहा हूं मैं धरती पर, बारिश झरना नदी सागर, फिर बारिश झरना नदी सागर, चक्र से मैं गुजरता हूँ, लेकिन वक्त के मुसाफिर मानव मित्र मेरे, जितना पिया है आज तक आधा तो शुद्ध करो, धरती माता की मदद करो, नहीं तो मेरा जनाजा उठने वाला है, उसके साथ साथ मानव वंश का भी जनाजा उठने वाला है, अगर पानी की हम समस्या पैदा करें। रोज हम 100 लीटर पानी प्रदूषित करते हैं, हर एक तो इंटीग्रेशन इतना बड़ा होता है उसका।
1: मैंने ये देखा शरद जी कि आप केवल वैज्ञानिक ही नहीं, ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, आपके शब्दों में बड़ा जादू है और आपके बोलने के तरीके में एक रोमांच है जो कि लोगों को छू जाता है, तो मैं समझता हूँ अगला जो पढ़ाव है आपके जीवन में, मैं समझता हूँ आपके साहित्य की वजह से शायद आ सकता है। डॉक्टर शरद काले जी, आपके साथ बात करते हुए समय का पता ही नहीं चलता है कि कब हम इतने लंबे समय से बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ हमें अभी भी बहुत कुछ जानना है आपसे, बहुत कुछ सीखना है आपसे, इसलिए इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे अगले एपिसोड के लिए। साथियों बने रहिएगा यशस्वी भारत के साथ, और उम्मीद करते हैं अगले एपिसोड में दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। एक और एपिसोड में डॉक्टर शरद काले जी हमारे साथ होंगे अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस इज द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी तलाश हर इंसान करता है और उसे पाने के लिए अक्सर बाहर की दुनिया में भटकता रहता है। यह विषय है आंतरिक शांति। आंतरिक शांति एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन स्थिर, शांत और संतुलित रहता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने की अवस्था है। मित्रों, आज हम बाहरी रूप से सुविधाओं से भरपूर हैं, लेकिन भीतर से अशांत हैं। हमारे पास तकनीक है, साधन है, उपलब्धियां हैं, फिर भी मन में बेचैनी, तनाव और असंतोष बना रहता है। कारण स्पष्ट है, हमने जीवन की गति तो बढ़ा ली है लेकिन मन को थामना भूल गए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आंतरिक शांति प्राप्त करना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन कुछ सरल तरीके अपनाकर इसे संभव बनाया जा सकता है। आंतरिक शांति पाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं से जुड़ना। दिन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, जिम्मेदारियों और समस्याओं में उलझे रहते हैं, लेकिन खुद से बात करने का समय नहीं निकालते। प्रतिदिन कुछ मिनट मौन में बैठना, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मन की गति को देखना, यह एक छोटा सा अभ्यास है जो हमें भीतर की शांति से जोड़ सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है। अतीत अब बदला नहीं जा सकता और भविष्य अभी आया नहीं है। जीवन तो केवल इसी क्षण में है। जब हम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हैं तभी मन शांत होता है। श्रोताओं, आंतरिक अशांति का एक बड़ा कारण है नकारात्मक सोच। हम अक्सर वही बातें याद रखते हैं जो हमें दुख देती हैं। आवश्यकता है दृष्टिकोण बदलने की। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीख छिपी होती है। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे रोज अपनाया जा सकता है। आंतरिक शांति के मार्ग में क्षमा का विशेष महत्व है। जब हम दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या शिकायत पालते हैं तो सबसे अधिक नुकसान हमारा ही मन झेलता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति है। माफ करने से सामने वाले का नहीं हमारा मन हल्का होता है। मित्रों, संतोष और कृतज्ञता भी आंतरिक शांति की कुंजी है। हम जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं और जो है उसे अनदेखा कर देते हैं। प्रतिदिन जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों के लिए आभार व्यक्त करना सीखें। यह आदत मन को गहराई से शांत करती है। प्रकृति भी हमें शांति का संदेश देती है। प्रकृति के सानिध्य में समय बिताना, जैसे सुबह की सैर, पेड़ों के बीच कुछ पल, आकाश को निहारना, यह सब मन को सहज रूप से शांत करता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि बिना शोर किए भी संतुलन में कैसे रहा जाए। आंतरिक शांति का एक और सशक्त माध्यम है आध्यात्मिकता और प्रार्थना। इसका अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थ को समझना है। जब हम किसी उच्च शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें विचलित नहीं कर पाती। अंत में श्रोताओं, इतना ही कहना चाहूंगा कि आंतरिक शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, यह हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता है तो केवल उसे पहचानने, अपनाने और रोजमर्रा के जीवन में उतारने की। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें। प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा. कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलत.
1: अश्विनी
0: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं.
2: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे.
0: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत.
3: दादी भोळी माझी आई.
0: या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर. आनंदी रहा, आनंद लुटा.
4: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
5: ओम शांति.
4: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
5: थैंक यू सो मच.
4: आज फिर से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ.
5: जरूर.
4: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो. वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो बट थ्रू अ मिरर. आईने के द Everything we discern is comparatively held to the vision with which we see ourselves.
5: Look at the line. We do not see the world through the window. We see the world through a mirror. Dunya ko hum ek khidki ke through nahi, ek aaine ke through dekh rahe hain. Dunya ko agar hum ek khidki ke through dekhte, खिड़की के थ्रू तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देती है.
4: तो डिटैच होके देखते हैं.
5: जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी थ्रू अ विंडो. बट इन द मिरर व्हाट डू आई सी? आईने में व्हाट डू आई सी? नो, आईने में आई सी ओनली माई सेल्फ.
4: वही तो मैंने आपसे
5: कहा. आई कैन सी हियर इज द वर्ल्ड. सपोज दिस इज द वर्ल्ड, यू आर द वर्ल्ड फॉर मी. लेट्स से ये दुनिया है, मुझे इसको देखना है. अगर मैं आपको खिड़की के थ्रू देख रही हूँ, मतलब खुला है सब, आई कैन सी यू एज यू आर. लेकिन अगर बीच में एक आईना है, मिरर है, आईने में आई कैन सी ओनली माई सेल्फ. थ्रू व्हाट आई सी माई सेल्फ देन आई सी यू. सो आई डू नॉट सी यू एज यू आर. ये बहुत डीप लाइन है और इसीलिए उसने लिखा कि बहुत कम हम लोगों को और सिचुएशंस को वो जैसे हैं वैसे परख सकते हैं. वी डू नॉट डिसर्न देम एज दे आर. जो लास्ट टाइम भी हम बात कर रहे थे कि जब हम औरों को चेंज करने के लिए कहते भी हैं या औरों को उनकी आदत के लिए, संस्कार के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपने कहा इतना भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं आता, एट दैट टाइम वी आर सीइंग पीपल थ्रू अ मिरर नॉट थ्रू द विंडो.
4: और ये सारी बातों में आता है, कर्टेसी में, खाने में, उठने में,
5: हर चीज में,
4: ताकत में, सेहत में, मतलब कॉमन सेंस में, हर जगह बोल देते हैं इतना तो होना चाहिए.
5: कॉमन सेंस के लिए कितना इजीली बोलते हैं, इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है.
4: कर्टेसी पे कम बोलते हैं क्या? कम से कम खड़े तो हो जाते. नमस्ते झुक के निकलते तो एटलीस्ट दिस बार चाय तो पूछ लेते. नहीं पिलाओ भले पूछ तो लेते. मतलब हर चीज में हेलो.
5: सब कुछ हम आईने के थ्रू कर रहे हैं.
4: किस किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं. मेरे घर में एक झगड़ा हुआ था कि सम गेस्ट ऑफ माइन, उन्होंने मेरे भाई का फोन उठा दिया. तो उन्होंने सोचा कि अमेरिका से फोन कर रहा है मेरा भाई. तो उन्होंने जल्दी से फोन ला के मेरे को दिया. तो बोले फोन उसको वापस दो. वापस दे कि आपको इतनी कर्टेसी नहीं है, पहले हेलो हाय नमस्ते कुछ भी. तो वो बोल रहे भाई मैं समझी आप अमेरिका से लाइटनिंग शाइटनिंग पता नहीं क्या आपके पैसे लगेंगे. वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से
5: कॉन्फ्लिक्ट का कितना बड़ा रीजन है. और इसीलिए जैसे वो लाइन थी कि इसीलिए हम लोगों को और सिचुएशंस को परख ही नहीं सकते, क्योंकि हम वो जो हैं जैसे हैं वैसे उनको हम नहीं देख रहे हैं. हम उनको आईने के थ्रू देख रहे हैं. आईने के थ्रू देख रहे हैं मतलब अपने संस्कार के थ्रू जब हम उनको देखेंगे तो वो जो हैं जैसे हैं वैसे हम उनको नहीं देखेंगे. राजयोग मेडिटेशन से जब हम अपने माइंड को साइलेंट

0: करना शुरू करते हैं। एक माइंड में टर्बुलेंस चल रही है, अपने संस्कार, ईगो का कभी, हर्ट का कभी, एंगर का कभी, इरिटेशन का, ये जब चल रहे हैं और इनके थ्रू हम दूसरों को देखेंगे तो दूसरे जो हैं जैसे हैं वो कभी नहीं दिखाई देंगे।
1: धूल थी चेहरे पर, हम आईना पोछते रहे,
0: बिल्कुल
1: चेहरे पे अपना नहीं पोछ रहे हैं।
0: अब सेम चीज जब ये माइंड साइलेंट हो जाएगा, मतलब ये जो अक्वायर्ड संस्कार है वो साइलेंट है, तब सामने वाला जो है जैसे है वैसे दिखाई देगा। इसीलिए परखने की शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। परखने की शक्ति अगर सही नहीं होगी तो निर्णय शक्ति सही नहीं होगी। निर्णय शक्ति सही नहीं होगी तो कर्म सही नहीं होगा। कर्म सही नहीं होगा तो भाग्य सही नहीं बनेगा। तो एक परखने की शक्ति में अगर गलती हुई कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इस समय सही क्या है, गलत क्या है, एक छोटी सी गलती का इफेक्ट मेरे भाग्य तक पड़ेगा।
1: ये जो दोनों रिश्तेदार थे, जो जिसने फोन मेरे घर पे उठाया और जिसने अमेरिका से रिश्तेदार ने फोन किया, अब मेरे हिसाब से दोनों राइट है। वो कहता है कि तुम छोटे हो उम्र में, पूछो तो सही भाई कैसे हो, कैसे है, क्या हाल है। तो वो बोल रहे है कि नहीं, मैं तो ये समझ रही थी कि आपका पैसा लगेगा।
0: ये जो आपने अभी कहा ना कि मेरे हिसाब से दोनों राइट है, क्योंकि एक्चुअली दोनों राइट है, लेकिन किसको ये दिखेगा कि दोनों राइट है, जो दोनों से डिटैच्ड होके सिचुएशन को देख रहा है। लेकिन उन दोनों को नहीं दिख रहा कि दोनों राइट है।
1: पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोलता है कि भी कम नमस्ते तो करो।
0: उनका दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू राइट है, लेकिन राइट परखने के लिए हम अगर डिटैच होकर देखते तो हमें ये भी दिख जाता कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो राइट है। दिस आपको कैसे दिख रहा है?
1: अगर सपोजिंग वो बंदा पूछ लेता कि बेटा तुम मेरे को आज हेलो तो करो, क्या बात है, नमस्ते भी नहीं किया, इतनी जल्दी क्या है।
0: जैसे हमें कोई ऐसा बिहेव करेगा जो हमारे संस्कार के साथ अग्री नहीं करता, हमारी ईगो हर्ट हो गई, हम रिएक्ट कर गए ना। जब रिएक्ट कर गए तब तो एनर्जी सारी चेंज हो गई उसके बाद,
1: रोती हुई आई मैम,
0: क्योंकि हमने यहाँ थॉट क्रिएट कर लिया वो गलत है। द मिनट आई एम सीइंग अ संस्कार विच इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, माई संस्कार सेज कि जिसने फोन उठाया उसको प्यार से पहले बात करनी चाहिए, विश करना चाहिए, कर्टेसी। माई प्रोग्रामिंग इज फिक्स्ड, तो मेरी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही मैंने उनको देखा, आईने के थ्रू देखा, तो मैं ये देख ही नहीं पा रहा कि सामने वाले ने इसलिए बात नहीं की क्योंकि उसका नजरिया क्या था कि अमेरिका से फोन है, वाई टू वेस्ट देयर पर मिनट एनी। आप उस सिचुएशन के अंदर नहीं है, यू नो, एक होता है सिचुएशन के अंदर घुसे हुए और एक है सिचुएशन से साक्षी है। वो दो लोग सिचुएशन के अंदर है। अब एक है जिन्होंने फोन किया, आपने कहा उनको उस बच्ची ने विश नहीं किया तो वो उनकी ईगो हर्ट हो गई, एक। फिर जब उन्होंने डांटा तो वो बच्ची की ईगो हर्ट हो गई तो वो रोते हुए आई, उसने भी तो उनका नजरिया नहीं समझा ना, दोनों ने नहीं समझा, जोर से डांटा ना।
1: अब इतनी भी अकल नहीं है तो
0: हाँ, लेकिन वो बच्ची भी, उसने भी तो वो नजरिया नहीं देखा ना कि हाँ इन्होंने इसलिए डांटा कि मैंने विश नहीं किया इसलिए डांटा। द पावर टू बी एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, इम्पोर्टेंट इज वी आर नॉट एबल टू सी द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, वी कैन सी ओनली वन पर्सपेक्टिव, सिर्फ एक नजरिया।
1: जिसने फोन उठाया उसको क्या समझ में आई, क्यों झाड़ रहा है मुझे।
0: जब हमें किसी ने कुछ कहा या किया तो हमें उतना पॉज होना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका क्या रीजन, पर्सपेक्टिव या इंटेंशन था। जब तक हम वो नहीं देखेंगे हम ना व्यक्ति को ना परिस्थिति को परख पाएंगे। इसीलिए तो वो खिड़की खुली नहीं है, खिड़की नहीं खुली ना,
1: मिरर के थ्रू
0: मतलब सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव के थ्रू, सिर्फ उस आईने के थ्रू ही हम देख सकते हैं सबको। बहुत सारी सारा दिन में हमारे से छोटी छोटी गलतियां इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम सब
1: छोटी नहीं हुई ना, ये बात इतनी बड़ी बाद में,
0: लेकिन ये बात
1: वो जब वो घर आए तो बात भी नहीं करी, महीनों चला इसको कि बोलती मुझे आज तक किसी ने इतनी जोर से नहीं डांटा।
0: दोनों तरफ नजरिया नहीं देखा, दूसरे के संस्कार को नहीं समझा, फिर उसके बाद ईगो को हील नहीं कर पाए, बात को लेट गो नहीं कर सके, इतना लंबा चलता है, चीज इतनी होती है इतनी सही नहीं परखी, तो फिर बाद में निर्णय के लिया इनसे बात नहीं करनी, अभी जल्दी जल्दी ऐसे डांटते हैं ये। कर्म बदल गया, भाग्य बदल गया, ये सारा दिन में अगर हम चेक करेंगे ना, तो पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट निकलेगी कि जो हम ये कितनी बार ऐसा करते हैं। इसीलिए जितनी पावर्स हमने अभी तक देखी, पावर टू लेट गो, ये सब जो पुरानी बातें हुई बीत गया, लेट गो, छोड़ना है।
1: पावर टू टॉलरेट,
0: फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति कि दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना। तीसरा एडजस्ट करने की शक्ति कि समाने की शक्ति। लेकिन ये तीनों चीजें भी करने के लिए जो चौथी शक्ति, वो ये वाली शक्ति है, परखने की शक्ति। मीन्स राइट रॉन्ग, सही गलत, हम बचपन से सीख रहे हैं, सही गलत की परख होनी चाहिए। परखो तो सही क्या था, गलत क्या था, सच क्या है, झूठ क्या है, परख के फिर निर्णय लो। वी हैव हर्ड दिस सिंस चाइल्डहुड। लेकिन जो हम पहले परखने की शक्ति बोलते थे, दैट वॉज अ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या है, गलत क्या है, देखो तो नो, बट अ लॉजिकल स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है राजयोग मेडिटेशन से, जो हम अपने पर वर्क करते हैं, और हर एक अनुभव भी करेगा उसको, कि जितना माइंड थोड़ा थोड़ा साइलेंस की तरफ, साइलेंस मतलब ये क्लटर जो नॉइज है ये कम होने लगती है, हम अपने ओरिजिनल संस्कार की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो जो परखने की शक्ति इमर्ज होती है, वो एक आउटवर्डली परखने की शक्ति नहीं होती है कि लॉजिकली राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, नॉलेज क्या कहती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन वो होती है एक इनेट, अंदर से एक जो इनर वॉइस जिसको कहते हैं, जिसको हम इंट्यूशन कहते थे, नहीं जब कहते अंदर की आवाज कहती है ये राइट है ये रॉन्ग है।
1: अंदर वाला तो हमेशा मुझसे बात करता रहता
0: है ना,
1: और कई बार बोलते है मत कर, मत बोल, मत बोल, और मैं हमेशा फंसा।
0: फंसा मतलब अगर नहीं माना तो फंसा।
1: मैं कई बार फंसा बाय नॉट लिसनिंग टू माय अंदर वाला,
0: नॉट लिसनिंग। हाँ
1: सिस्टर, एक बार मैं लोनावला जा रहा था अपने फार्म हाउस, तो अंदर वाला बोला चाबी तो ले लो। तो मैं ऐसा हाथ बढ़ा, मैंने क्यों, माली है उसके पास चाबी है, वहाँ सब खाना पका के देंगे। वहाँ गया तो मालिक के घर में किसी की डेथ हो गई, वो गांव चला गया।
0: जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं ना, वो एक परखने की शक्ति है जो अक्वायर्ड बातों से नहीं, लोगों के ओपिनियन के आधार से नहीं, जो इस समाज में रहते हुए जो बिलीफ सिस्टम्स हमने बने उसके थ्रू नहीं परखता, लेकिन जो आत्मा की इनेट विजडम है, आत्मा को जो अंदर से पता होता है कि सही और गलत क्या है। नहीं, कई बार हम कहते हैं मुझे अंदर से मालूम है कि ये सही है मेरे लिए, मुझे अंदर से मालूम है ये गलत है, वो जो आवाज आती है, वो जो राइट और रॉन्ग हमें बताएगा, वो हमेशा राइट निकलेगा। इट ऑलवेज बी राइट फॉर अस, बट नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज स्टार्ट यूजिंग इट मोर एंड मोर।
1: विवेक, मेरा बेटा और मैं अपने लिए लैंड लेने गए थे, तो उसके नंबर के लिए विवेक पूछ रहा, बोलने लगा, और मैं कि हम लोग वास्तु वाले को बुला लें, उसको पूछ ले तेरे अंदर वाला क्या बोल रहा है। डैडी आई लव इट, डैडी मुझे अच्छी लगी। मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी। ना नंबर पूछो ना वास्तु पूछो, तुम और मैं दोनों फंसेंगे, क्योंकि वो कुछ बोलेगा ये कुछ बोलेगा, ये हाथ से चीज चली जाएगी।
0: सही बात है।
1: आज तक हमको इतना सुख है उस प्रॉपर्टी से।
0: वन इज अक्वायर्ड नॉलेज एंड वन इज द इनेट नॉलेज दैट द सोल हैज।
1: दिस इज ब्यूटीफुल, आपने मुझे याद दिला दिया।
0: अंदर सही वाला। और गलत की जो आवाज, जो हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो जैसे आपने कहा ना अभी, जो जब माइंड क्लटर्ड में होता है तो हमेशा बाहर ढूंढता है सही क्या है गलत क्या है, इससे पूछें इससे पूछें, ये करें, इधर पढ़ें उधर चेक करें। अगर हम सिर्फ दो मिनट साइलेंस में बैठ जाए, सिर्फ दो मिनट, हर आत्मा को हर बात का आंसर पता है। We don't need to find out anything from anyone or anywhere. Every soul knows the answer to every question, every issue and every problem in their life.
1: You're so right. ये practically मैंने किया sister. विवेक को किसी ने बोला आप member of parliament के youngsters की जरूरत है, आज आप क्यों नहीं किसी party से ticket लेके लड़ते, this that, you're so good in speech. तो मेरे से वो advice लेने आया। मैंने कहा एक काम करो, बाबा के सामने बैठो, मंदिर में बैठो, मेडिटेट करो और अंदर वाले से पूछो, आपको जवाब आएगा।
0: बस
1: वो गया ही नहीं।
0: एक बार परखा सही, फिर निर्णय लेना इज इजियर। इम्पोर्टेंट तो वो परख की शक्ति राइट होनी चाहिए ना। तो जितना आत्मा इस इनेट से अब आंसर निकालने शुरू करेगी हर चीज में, इवन अब अगर जब हमें डिफरेंट

0: उनके साथ कोई गलत भी व्यवहार करता है।
1: वो तो मैंने देखा, लेकिन मैं महात्मा नहीं हूँ ना।
0: महात्मा तो, नहीं हो तो, एक मिनट
1: हम तो
0: महात्मा नहीं हो, मैं दिव्य आत्मा नहीं हूँ, मैं संत आत्मा नहीं हूँ।
1: उस टाइम क्या करना है?
0: उस टाइम मैं नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्टेड हूँ।
1: Let us talk to people like me and we are talking to people like us only. आप बीच में महात्मा मत लाइए ना। महात्मा तो करता ही है, मैंने देखा हुआ है। एक मेरे सामने जगत गुरु के आदमी इतना बोला, उन्होंने सिर्फ बोला आप शायद इसे गलत समझ रहे हैं, ये बात सत्य नहीं है।
0: पहली बात तो हम बार बार ये विक्टिम फीलिंग क्रिएट करते हैं ना कि हम तो संत आत्मा नहीं है।
1: इसमें विक्टिम की बात नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल है। आप यही चीज जो उसने जगत गुरु से बोलता ही जा रहा था, बोलता मैं सुन के मेरा मन करता अभी मारो, और वो देख रहे हैं बोलते शायद नहीं, आपके ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी।
0: तो अब वो संत आत्मा उस क्षण उस सीन में ही लेकर आते हैं कि एक व्यक्ति आया, ठीक से नहीं बात की, अब्यूजिव लैंग्वेज, रॉन्ग लैंग्वेज यूज की, यहाँ वो संत आत्मा बैठे हैं, यहाँ आप बैठे हैं, वो शांत थे,
1: मैं तो बहुत शांत
0: हो रहे थे। ओके, नाउ What was the difference between the two souls only at that time? आप में और उनमें उस समय क्या फर्क था?
1: वो महात्मा थे, मैं एक्टर था।
0: महात्मा थे, मैं एक्टर था, मतलब क्या?
1: हाँ, मतलब है।
0: महात्मा कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है,
1: तो फिर
0: कोई प्रोफेशन थोड़ी है कि वो महात्मा थे, मैं एक्टर था। महात्मा कोई प्रोफेशन थोड़ी है। महात्मा है मतलब
1: क्वालिटीज तो है उनमें,
0: है मतलब डिवेलप की
1: ओरिजिनलिटी भी है, काम भी है उनका, और उनको
0: उसके प्रैक्टिस,
1: महात्मा को प्रैक्टिस भी तो होती है ना।
0: प्रैक्टिस तो हम भी कर रहे हैं ना। सी, ये सब प्ली देके अपने आप को छुड़ाना नहीं है उस पुरुषार्थ से, वो महात्मा थे मैं एक्टर था, नहीं, वो आत्मा है मैं आत्मा हूँ। वो आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड थे, मैं आत्मा उस क्षण अपनी ओरिजिनलिटी से डिस्कनेक्ट होके अपने ईगो में था। नहीं, सिर्फ आपने कहा हम संत आत्मा नहीं है, हम सब संत आत्मा है। परमात्मा हमें कहता है आप सब ओरिजिनली ब्यूटीफुल प्योर दिव्य आत्मा हो, सिर्फ संत आत्मा भी नहीं हो, दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल, देवी देवता। देवी देवता मतलब डिवाइन आत्मा, हर आत्मा वो है, डिविनिटी। संत आत्मा प्रोफेशन नहीं है। आप एक्टर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ईगो होनी चाहिए और आपको ऐसे
1: ईगो होनी चाहिए, नहीं बोला मैं एक्टर हूँ, महात्मा नहीं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है।
0: मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
1: तो क्या हुआ?
0: तो मैं एक्टर हूँ इज अ प्रोफेशन।
1: महात्मा तो
0: इज नॉट अ प्रोफेशन।
1: तो
0: महात्मा हूँ, एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
1: महात्मा का बिहेवियर,
0: एक महात्मा एक्टर बन सकता है?
1: क्यों नहीं बन सकता?
0: सिंपल, मतलब आत्मा महान है, प्रोफेशन कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि मैं एक्टर हूँ तो ईगो होना है इज फाइन।
1: सही बात है, कई महात्मा तो मर्डर भी करते हैं।
0: हाँ, दैट्स इट, राइट। सो इट्स नॉट अबाउट हमने कौन से कपड़े पहन लिए,
1: आपका पॉइंट समझ में आया,
0: हमने कौन से कपड़े पहन लिए, हम आश्रम में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, या एक बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं, इट डजेंट मैटर। महात्मा इज नॉट अ रोल, महात्मा इज नॉट अ प्रोफेशन। महात्मा
1: मीन्स, रिपीट करेंगे, बहुत सुंदर,
0: महात्मा मीन्स वो आत्मा,
1: वो आत्मा
0: जिसने अपनी महानता को, मतलब अपनी डिविनिटी को, अपनी ओरिजिनलिटी को इमर्ज किया है। फिर उसके बाद चाहे वो एक्टर का प्रोफेशन है या बिजनेसमैन है, वो फादर है, वो कुछ भी हो सकता है।
1: यू सो राइट, अभी मेरे बात समझ में आई, क्योंकि अब मुझे थॉट आया कि मैं कई महात्माओं को जो ये रोल करते हैं लेक्चर देने का, रिलीजियस एक्स्ट्रा जो भी है, वो लोगों को मैंने गुस्से में भी देखा है, लड़ाई करते हुए भी देखा है, एकदम लो लेवल की बातें भी देखी है, पैसों के लिए भी उनको ग्रीड देखा है।
0: बिल्कुल,
1: यू आर राइट।
0: विच इज ओके, अगेन हम यहाँ जजमेंटल नहीं,
1: मैं एक्टर और उसको नहीं करूंगा,
0: बट यहाँ हम उनके बारे में भी जजमेंटल नहीं हो रहे, ठीक है? वी आर नॉट हियर टू बी जजमेंटल अबाउट एनीबडी, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि आत्मा, एवरी सोल, एंड एवरी सोल मीन्स एब्सोल्युटली एवरी सोल ऑन दिस प्लैनेट। परमात्मा ने कहा हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, चाहे इस समय वो कुछ भी कर रहे हैं, एंड कुछ भी कर रही है मीन्स कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। अगर आज कोई आत्मा निमित्त बनती है,

0: मर्डर करने के, टेरर क्रिएट करने के विश्व के अंदर, वो आत्मा भी ओरिजिनली, वो आत्मा भी ओरिजिनली बहुत ब्यूटीफुल एंड प्योर आत्मा है, लेकिन इस समय किसी कारण से जो कंडीशनिंग हुई, जो सिखाया गया, जिस प्रभाव में आए, जो भी रीजन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अपनी ओरिजिनलिटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। वो एक एक्सट्रीम है कि ओरिजिनलिटी से इतने डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि हम ऐसा कुछ कर्म करने लगते हैं। एक है हम सब लोग, लेट से मेजोरिटी, जो अपनी ओरिजिनलिटी से उतना डिस्कनेक्टेड नहीं है कि हम किसी के साथ ऐसा मर्डर करे या कुछ करे, लेकिन हम ओरिजिनलिटी से थोड़ा डिस्कनेक्टेड है, तो हम गुस्सा करते हैं और ये सब सब कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट आर ओरिजिनल। और एक ऐसी सेट ऑफ आत्माएं हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको फिर हम लेबल करते हैं नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट दे वेयर एंड हाउ दे लुक, बट बिकॉज ऑफ हु दे आर, कि वो आत्मा संत आत्मा है। जरूरी नहीं है जो संन्यास करते हैं, आश्रम में रहते हैं, या जो आपने कहा वर्कशॉप्स कराते हैं, वो संत आत्माएं होते हैं। आपको सारा दिन में चलते फिरते आपको ऐसी आत्मा मिलेगी, आपको कोई गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा, कोई आप रेस्टोरेंट में जाएंगे आपको जो खाना परोस रहा होगा, आपको उससे मिलकर ऐसी एक वाइब्रेशन आएगी, आप कहेंगे संत आत्मा है ये, बिल्कुल आएगा कि नहीं आएगा।
1: लोग तो यहाँ तक बोलते, मैं किसी गाय को हाथ लगाने वाला था तो मैंने पूछा ये मारती तो नहीं है, तो बोले नहीं, तो एक तो बिल्कुल संत है।
0: तो संत मतलब किसको हम संत लेबल करेंगे,
1: जिसको मतलब
0: जो आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी से ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब जो आत्मा शांत रहती है, प्यार करती है, अनकंडीशनली हमें एक्सेप्ट करती है, जिसकी वाइब्रेशन, और किसको बोलते हैं संत, छोटे बच्चे को,
1: फ्रेंडली चाइल्ड,
0: छोटे बच्चे को जिसकी इतनी प्योरिटी है, इतनी डिविनिटी है, विच मीन्स इट कैन बी एनीबडी नाउ, नॉट इट्स नॉट गोइंग टू बी पीपल जिनके पास सिर्फ टाइटल है कि वो संत आत्मा है, ये 100% है। ना हमें ये सोचना है कि जिनके पास ये टाइटल है कि ये संत आत्मा है वो सारे परफेक्ट होने चाहिए, वो भी नहीं हमें देखना, क्योंकि आज क्या होता है, ऐसा देख के फिर हम कई बार डिसइल्यूजन हो जाते हैं, हम परखने की शक्ति रॉन्ग उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत लोग आजकल कहते हैं ओ ये लोग भी ऐसे करते हैं, तो फिर हम क्या, फिर वाई आर वी कंपेयरिंग विद एनीबडी, वाई आर वी जजिंग एनीबडी, लेट्स हैव नॉलेज। नॉलेज ये कहती है कि हर आत्मा प्योर है, राइट, हर आत्मा अपनी प्योरिटी से अलग अलग मैग्नीट्यूड में डिस्कनेक्ट हुई है, कोई थोड़ा, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, लेकिन हर आत्मा के पास वो पावर है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी पे वापस जा सकती है। कोई आत्मा हो सकती है घर गृहस्थ में रहती है, सारा दिन बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अपनी ओरिजिनलिटी से बहुत कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, तो वो अपनी डिविनिटी को अपने डे टू डे कर्म में रेडिएट करती है। कोई आत्मा हो सकती है कि वो आश्रम में सेवा करती है, कहीं भी पूरी दुनिया में, लेकिन वो आत्मा अभी जर्नी पर है, वो अभी अपनी ओरिजिनलिटी से उतनी कनेक्ट नहीं हुई है, वो वर्क कर रही है अपने पर, मेहनत है, लेकिन हुई नहीं है। तो हमें ऐसे को देखकर डिसइल्यूजन भी नहीं होना है, जजमेंटल भी नहीं होना कि ऐसे आश्रम में रहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, संन्यास किया, फिर भी गुस्सा करते हैं। नो, इट्स ओके, दिस इज कंपैशन, दिस इज अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, एंड उससे क्या होगा, ना हम उनके प्रति जजमेंटल होंगे और ना हम अपने को डिसएम्पावर करेंगे।
1: संत के जो आश्रम खोल के बैठे रहते हैं उनको गुस्सा करके तो देखता भी हूँ और बोलता भी हूँ ये संत थोड़ा ही है।
0: हमें किसी के ऊपर जजमेंटल नहीं होना है, हमें हर आत्मा की यात्रा पता नहीं है। आज अगर आप मुझे देख रहे हैं, सपोज आई एम ऑन दिस जर्नी, दिस जर्नी इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, ऐसा नहीं है आज डिसाइड किया तो ये ठीक हो गया, आज डिसाइड किया तो ये परफेक्ट हो गया, नो। अब आज अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ यहाँ, एंड आप कहेंगे फिर फायदा क्या है, आप इतना सुना रहे हैं और आप ही गुस्सा कर रहे हैं।
1: मुझे बोलते हैं कि आप शिवानी दीदी के साथ इतने सारे सीरियल किए और छोटी सी बात पे आपको गुस्सा आ गया, तो फायदा ही क्या हुआ जाके,
0: हाँ।
1: मुझे बोलते हैं,
0: राइट,
1: तो दे आर राइट।
0: हमें ये चेक करना है
1: सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल। देखिए मैं किसी महात्मा को देखूं गांजे पी रहा है, मैं किसी को देखूं सिगरेट पी रहा है, किसी को देखूं मैं खराब काम कर रहा है, किसी को देखूं मैं लालची कर रहा है, तो मैं चुप रहूं और बोलूं हा हा हा हा ऐसे तो होता ही है, ऐसे पॉसिबल है? एवरीबॉडी हैज टू प्ले द रोल। हाँ तो फिर आपने, आप कितने एपिसोड में बोला आपने ड्यूटी करनी चाहिए?
0: हमारी ड्यूटी पहली ड्यूटी है कि हमें दूसरे के प्रति जजमेंटल और क्रिटिकल नहीं होना है।
1: हम जजमेंट कहाँ करें, परखने की शक्ति जो आप बोल रहे हो वो परख रहा हूँ मैं।
0: हमें उनसे कुछ सीखना है, कुछ लेना है या नहीं लेना है, आवर चॉइस, वो परखना है। ठीक है, अगर आपको मेरे अंदर कुछ बहुत गलत दिखाई देता है तो अगर आपको मेरे साथ बैठ के नहीं शेयर करना है या आपकी चॉइस, फाइन, ये परखने की शक्ति। लेकिन लेबल करना, जजमेंटल हो जाना, क्रिटिकल हो जाना, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये ऐसे ही करते हैं, फायदा क्या है? इससे तो आपकी पावर डिप्लीट हो जाएगी, मेरा नुकसान नहीं होगा।
1: लेकिन मैं परखा कि ये आदमी, ये संत का ये सब दरबार खोल के बैठा है और इतना बड़ा आश्रम खोल के बैठा है, वहां मैं अपने बच्चों को भी बोलूंगा, वाइफ को भी बोलूंगा कि वहां बिल्कुल जाने की कोई जरूरत नहीं है आपको,
0: विदाउट बीइंग क्रिटिकल।
1: समझाएं कैसे विदाउट बीइंग क्रिटिकल?
0: कोई भी चीज ऐसी ना करें जिससे अपने ही शक्ति डिप्लीट होती है। इट्स लाइक ये दिखा, ये ठीक नहीं है, उधर से नहीं चलो, पांव टूटेगा, सिंपल। इतना ही परखना है सिर्फ, उधर नहीं
1: चक्कर में आ जाते हैं ना इनके,
0: तो वो अपनी परखने की शक्ति की कमी
1: है। मेरे अगर बच्चे और बीवी है तो मेरा काम है ना, मैं तो परख लिया,
0: परख लिया,
1: तब उनको समझाऊं कि ऐसा है, ऐसा ऐसा मत।
0: वेरी ट्रू, विदाउट बींग क्रिटिकल एंड जजमेंटल अबाउट द अदर पर्सन, दिस इज नो, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
1: सिस्टर, लोग अपनी जायदाद दे देते हैं ऐसे लोगों को, ज्वेलरी दे देते हैं, पैसा देके बैठ जाते हैं, क्या क्या कैसे कैसे काम होते हैं आपको मालूम है क्या?
0: अपनी परखने की शक्ति की कमी है ना, हमें करना है करें, हमें नहीं करना है नहीं करें, इज फाइन। लेकिन जो हम बहुत ज्यादा दूसरे को क्रिटिसाइज करने की जर्नी पे चले जाते हैं, राइट, सपोज मेरी वाइट ड्रेस है लेकिन उसपे काले दाग है, ठीक है, आपने देख लिया, आपको नहीं आना नजदीक, दूर रहना है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, परख लिया। लेकिन दूर बैठकर अगर आप मुझ पर लगे हुए काले दाग के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, उससे नफरत करेंगे, तो उससे मेरे काले दाग पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं अपनी यात्रा पर हूं अपने दाग को कम करने के लिए, लेकिन मुझे क्रिटिसाइज करते करते आपकी ड्रेस पर काले दाग ज्यादा लग जाएंगे।
1: मेरी ड्रेस पर काले दाग कैसे लगेंगे सिस्टर? मुझे एक बहुत जरूरी ये जानना है और मैं इसको इमीडिएटली नेक्स्ट एपिसोड में आपसे ये पूछूंगा।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू। ओम शांति।
2: वी डू नॉट सी द वर्ल्ड थ्रू अ विंडो, we see the world through a mirror. Seeing the world through a window means seeing people and situations as they are. Seeing the world through a mirror means seeing situations and people through our sanskars. When we see people through the filter of our sanskars, we will perceive their emotions, words and actions according to our sanskars, and we may not be able to understand them truly as they are. Raj Yoga meditation helps to silence our turbulent sanskars of ego, anger, hurt. This helps us to understand situations and people as they are, and this increases our power to discern. Power to discern or discriminate means to know what is right, what is wrong, what is true, what is false. Often we discern what is right or wrong based on acquired information, people's opinion, or belief systems created by society. दिस मे और मे नॉट बी राइट फॉर अस. डिसर्नमेंट बेस्ड ऑन आर इनिट विजडम विच वी कॉल द इनर वॉइस और इंट्यूशन इज राइट फॉर द सोल.
0: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Rajyoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

कहे महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास डेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भूचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है। जो हमें बांधे वो धागा है, नहीं जंजीर है।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप वो उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड एंड इट कम्स बैक टू माई माइंड लेटर ऑन। शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब माई माइंड, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनहरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है स्वतंत्रता दिवस को। यह दिन हमें याद दिलाता है उन वीरों की कुर्बानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आजादी केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये गीत हमें उन शहीदों को याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र दिवस पर इस गीत की गुंज हमें यह एहसास कराती है कि आजादी केवल एक उपहार नहीं बल्कि बलिदान की अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यार

दोस्तों, इस मूल्यवान दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण होना बहुत ही जरूरी है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम हो या महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, हर संघर्ष ने हमें यह सिखाया है कि आजादी बलिदान से मिलती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान किया। यह इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाएंगे। दोस्तों, अभी हमने संग्राम की गाथा को याद किया। 1857 का प्रथम संग्राम, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान और नेताजी का आह्वान, इन सब ने हमें यह सिखाया है कि आजादी बलिदान से मिलती है। इसी भावना को सुरों में पिरोया गया है फिल्म हकीकत के उस अमर गीत में, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह गीत हमें याद दिलाता है कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दी। हर बार जब यह गीत गुंजता है तो दिल में गर्व और आंखों में आंसू दोनों साथ आते हैं। तो दोस्तों, सुनते हैं।

तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, यह है विचारों की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और समानता का संकल्प। आज हमें यह देखना है कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा से मुक्त करें। सच्ची आज़ादी वही है जब हर नागरिक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सके। स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती बल्कि यह हमें जिम्मेदारी भी सौंपती है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएं, अपने देश को प्रगति की ओर ले जाएं। इसी संदेश को सुरों में पिराया गया है फिल्म जागृति के इस प्रेरणादायी गीत में, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये गीत।

अमर गीत ए मेरे वतन के लोगों हर बार हमें रुला देता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी आज़ादी शहीदों के रक्त से रंजित है, उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर स्वर में यह एहसास करता है कि आज़ादी की कीमत बहुत बड़ी है और हमें इसे संजो कर रखना है। आइए शहीदों को नमन करते हुए सुनते हैं हे मेरे वतन के लोगों ये गीत।

तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और एकजुट बनाए। इसी जिम्मेदारी और संघर्ष की भावनाओं को सुरों में पिरोया गया है फिल्म जागृति के इस प्रेरणादायी गीत में। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह गीत हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मिली है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता को संजोग और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित सौंपे। तो आइए सुनते हैं ये गीत, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के।

तुम स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितने संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी सौंपे हैं। आइए सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और एकजुट बनाएंगे। हर नागरिक का प्रयास ही भारत को महान बनाता है। आप सुन रहे थे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। सभी भारतवासियों को रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं, कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वाली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबों का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए आज भी हम लोग एम अल्फाबेट के बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाने वाले हैं। और पिछली बार भी बहुत सारे एम अक्षर वाले गाने आपको सुनाए थे और आपके प्यार मैसेजेस के द्वारा जो मिला उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आज के इस शो में हम लोग 1969 का एक फिल्म जिसका नाम था चिराग, इस एल्बम का एक गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जैसे कि ये मेरे

जी हाँ मेरे बिछड़े साथी, सुनता जा। इस गाने को हम लोग सुनेंगे, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया हुआ, मदन मोहन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गीत है। किसी ने क्या खूब कहा है, सिर्फ गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाती, सिर्फ गुलाब देने से अगर मोहब्बत हो जाती तो माली सारे शहर का महबूब बन जाता। तो चलिए आगे बढ़ते हुए ये खूबसूरत सा गीत अभी आपके नाम, आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, चिराग, इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे अभी। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ, जो अपने आप में बहुत ही खास है। कहते हैं राज तो हमारा हर जगह पे है, पसंद करने वालों के दिल में और नापसंद करने वालों के दिमाग में है। जी हाँ, 1969 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जिगरी दोस्त। जी हाँ, इस फिल्म में भी एक गाना है और ये मेरे देश में पवन चले पुरवाए, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही प्यारा सा गीत है। जैसे कि आप थोड़ा सा मजा लीजिए इस गीत का।

जी हाँ, ये गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दी है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना अभी आपके नाम। खुश रहो, खुशियां बांटो।

है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जी हाँ, मेरे देश में पवन चले पुरवाई, ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना। जैसे जैसे गाने को सुनते जाते हैं वैसे वैसे आपके अंदर भाव आ जाता है कि भारत देश की बहार, भारत देश की जो महिमा है, पहाड़ों में बसने वाला भारत देश को कहते हैं एक गांव, जहाँ गांव में आत्मा बसती है भारत की। तो जहाँ गांव है वहाँ पर पहाड़ियाँ भी है, वहाँ पर पवन भी है, तो खूबसूरत नजारे भी है। तो ऐसे ही कुछ कुछ भाव भरा जो गीत आपने अभी सुना, और आशा करता हूँ आप सभी को जिगरी दोस्त इस एल्बम का ये गाना पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, मैं जब बात चल रही देश की तो देश की माटी की बात भी होनी चाहिए, जिसमें हीरे और सोने भी उगलते हैं, ऐसा मेरा भारत देश है। तो आइए, एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी उपकार, जी हाँ, जिन्हें आप सभी ने देखा होगा, 1967 का। इस फिल्म का एक गाना है जैसे कि ये।

जी हाँ, ये बहुत पॉपुलर गाना है और हर समय जो है आप देशभक्ति का ये गीत 15 अगस्त और 26 जनवरी को जरूर सुनते होंगे। और वैसे भी ये गाना अपने आप में कमाल का है और इसका जो म्यूजिक है वो कल्याण जी आनंद जी का है, जो बहुत ही सूदिंग लगता है और गांव का जो फ्लेवर है वो संगीत के साथ हमें पता चल जाता है। जैसे कि घंटिया है,

बैल चलने के, खेती में काम करने के जो मशीनरी है वो किस तरह से इसमें जो है बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया, इसको डेकोरेट किया गया है। जी हाँ, उपकार फिल्म का गुलशन बावरा साहब ने लिखा है, महेंद्र कपूर साहब ने आवाज दिया है। तो सुनते हैं इस गीत को। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे दे के जाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत लिखा है लिखने वाले ने। जी हाँ, जिंदगी को हर सुबह जब हम उठते हैं तो कुछ करने की शर्तें होती हैं और शाम होते ही एक अच्छा अनुभव हमारे पास रह जाता है जो हमारे दूसरे दिन के लिए काम आता है। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और गीत की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। 1962 में एक फिल्म आई थी, मैं चुप रहूंगी। जी हाँ, एक सोशल इशू पर यह फिल्म बनाई गई थी और इस फिल्म का कहानी जो है बहुत ही पॉपुलर रहा और ये फिल्म भी बहुत पॉपुलर रहा उस समय में। राजेंद्र कृष्ण साहब ने एक गीत लिखा था जैसे कि ये मेरे

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, चित्रगुप्त का बहुत ही प्यारा सा संगीत से सजा ये गाना अभी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ। हमारी शाम ही हमारी पहचान है, वरना कुछ लोग तो अपने में भी अभिमान है। हमारी शान ही हमारी पहचान है, वरना कुछ लोग तो अपनों में भी बदनाम है। आप सुने हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जी हाँ, ख्वाबों के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाने सुनकर कहीं ना कहीं आप दूसरी दुनिया में चले जाते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, कहते हैं किसी के पास ईगो है तो किसी के पास एटीट्यूड है, और हमारे पास तो एक दिल है, वो भी बहुत ही प्यारा सा है। और आपको प्यारे प्यारे गाने सुनाते हैं। चलिए 1958 की बात करते हैं, पोस्ट बॉक्स एस फिल्म का, पोस्ट बॉक्स 999, ये फिल्म आई थी 1958 में। और इस फिल्म का जो है एक गाना है, मेरे दिल में है एक बात।

0: क्या है।
1: कई बार दोस्त और दुश्मन इन दो शब्दों में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। कभी कभी दोस्त भी कुछ बात से नाराज होकर दुश्मन बन जाते हैं तो उन्हें मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और कोई अनजाने में दुश्मन है उसे मनाना उतना मुश्किल नहीं जितना कि दोस्त दुश्मन बना हो। शायद आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए अब एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलने वाला हूँ। वैसे सारे गीत अच्छे हैं। 1966 की बात करती है, आए दिन बहार के, ये फिल्म आई थी उस समय। इस फिल्म का भी एक गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा था, जैसे कि ये।

मोहम्मद रफी साहब ने आवाज दिया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसे संगीत से सजाया था। तो चलिए इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आपके नाम आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खाबों के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर सनी। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। चलिए, इसमें फिल्म की स्टोरी भी थोड़ी थोड़ी झलकती है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं 1968 की तरफ, जिसमें एक फिल्म आई थी साथी। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने इस फिल्म का एक गीत आपको सुनाया था। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा एक और गीत इस फिल्म का है, मेरे जीवन साथी।

लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत नौशाद साहब का संगीत से सजा अभी आपको सुनाने वाले हैं। और कहते हैं लोग लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। मैं हूँ आपका हम सफर। जी हाँ, अब आखिरी मोड़ पे पहुंचे हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो, वरना बड़ा मुश्किल होगा नीचे आने में। तो इसीलिए कहते हैं कि हर काम करो लेकिन उसके अंदाजों को ध्यान में रखते हुए, आगे पीछे चारों दिशा में उसके बारे में सोचकर फिर कदम बढ़ाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत की तरफ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। एक गीत आपको सुनाने वाला हूँ अमरदीप का, जो 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। अमरदीप एक प्रेम कहानी है और राजेश खन्ना पर पिक्चराइज किया गया था, और इस फिल्म का एक गीत है जैसे कि ये।

राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर का गाया, सी रामचंद्र का संगीत से सजा ये गाना आपके लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात। तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ। सलाम नमस्ते खमा गनीसा, खुश रहो खुशियां बांटो।

नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जाओ अब तुम अपने घर जाओ। देखो मुन्नी बच्चे ज्यादा शरारत नहीं करते, जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: देखो रात बहुत हो चुकी, मैं कहता हूँ जाओ।
1: नहीं जाऊंगी।
0: नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, छाया तो कैसे नहीं जाएगी, कैसे नहीं जाएगी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: लेकी अंगड़ाई सरे बजन बहुत पछताई, मुफ्त में हो गई बदनाम बढ़ी रुसवाई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्म आई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन।
2: अच्छा,
1: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है, कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ। पैसे, अरे पैसे पर रच काव्य, भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ। नोन मिर्च पर चौपाई, चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
2: अच्छा,
1: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
2: अच्छा,
1: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ो।
3: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया। सबको डांट रहा था तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद।
1: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

श्याम की जय हो सिया राम की और जय हो बंबई धाम की। यह है

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore cells है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore cells, एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore cells आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 more cells इन द बॉडी, 10,000 crore cells इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore cells कनेक्टेड टू 10,000 cells, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 cells इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सीक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ।
2: रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम यशस्वी भारत में। आज हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर रोमेश गौतम मिश्रा जी। आप सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ साथ आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर भी हैं, मीडिएटर हैं दिल्ली से। रोमेश गौतम जी, आपको रेडियो मधुबन में और यशस्वी भारत इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू
2: सर। जैसे आप एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ आप फॉर्मर एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, जहां पे चीफ मिनिस्टर स्वयं आपसे सलाह लेते हैं, कानूनी सलाह। बहुत ही कम उम्र में आपने पद्मश्री पाया है और ऐसा कानून भारत में आपने लेके आया जो कानून से जो मदद लेना होता है एक आम इंसान को, वो बहुत आसान कर दिया है। बचपन से आप ये ख्वाब देखते थे आपको एडवोकेट बनना है, या ऐसी क्या सिचुएशन थी जहां पे आपको लगा कि नहीं, हमारी भारत में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, या फिर क्राइम को कम करना है? क्या सवाल, क्या आपके अंदर ख्याल चलते
3: थे? देखो, ये तो मेरा एक बचपन का ड्रीम था जो मुझे लॉ का प्रोफेशन अडॉप्ट करना था। 4-5 साल की उम्र से ही मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को वकील बनना है, मुझे लॉयर बनना है। और मैंने किसी बड़े वकील को उस जमाने में देखा था और उनको देख के मुझे ये महसूस हुआ कि लॉयर का जॉब जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है देश के लिए, देश के विकास में, देश के निर्माण में वकील का काम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे वकील बनना है। ये मैंने बचपन में 4-5 साल की उम्र में ठान लिया और उस एम के साथ ही पढ़ाई करते हुए फिर मैंने वकालत पास किया। और ना केवल वकालत पास किया, वकालत में डिस्टिंक्शन हासिल किया डिग्री में भी, और पीएचडी किया। ये मेरा बचपन का ड्रीम। दूसरी बात रही कि जस्टिस की बात, तो जस्टिस के लिए मैं ये समझता हूँ कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं कि जिनको जस्टिस, बहुत सारे कारण भी हैं कि नहीं मिल पाता है। कई बार रिसोर्सेज नहीं होते आदमी के पास, कई बार ये आदमी ऐसी जगह पर होता है कि वो उसको कोर्ट की एक्सेस नहीं कर पाता है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक महसूस किया कि जस्टिस इज मेंट फॉर एवरीवन। सबको न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और मैं उसके लिए पूरा प्रयास करता हूँ कि उनको न्याय मिले। उनको इस हद तक कोशिश करता हूं कि जब उनका किसी का मुकदमा लड़ता हूं तो मैं अपना मुकदमा दिलो जान से लड़ता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि भाई ये मुकदमे में मैंने फीस ली है या नहीं ली, लेकिन उस मुकदमे को मेरा जीतना मेरा मकसद होता है, वही मेरा है।
2: ये आप सही कह रहे हैं कि आपके पास जो मुकदमा आता है उसको आपको जीतना है
3: जी।
2: लेकिन एक एडवोकेट न्याय के लिए लड़ता है या अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है?
3: इस बात में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे मतलब एंशियंट टाइम में माइथोलॉजी के हिसाब से हम देखेंगे तो कर्ण को ये पता था कि दुर्योधन गलत है। कर्ण को इस बात का एहसास था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन कर्ण क्योंकि दुर्योधन का दोस्त था तो वो दुर्योधन की तरफ से ही उसने लड़ाई की। तो जहां तक न्याय की बात है, हम चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय सबको मिले, लेकिन जब हम कोई भी मुकदमा किसी क्लाइंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा रोल यू आप ये समझ लीजिए सिंपल लैंग्वेज में कि करण वाला हो जाता है। तो वी आर कमिटेड टू दैट क्लाइंट, और उसको जस्टिस दिलवाना या वो जो चाहता है वो जस्टिस लेने के लिए प्रयास करना, वो हमारा ध्येय होता है, वो हमारा मोटिव होता है, और वही हम उसी डायरेक्शन में हम काम करते हैं। ये जानते हुए भी कि कई बार हो सकता है कि हमारा क्लाइंट

0: और जब प्रोफेशन में आ जाते हैं तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग या वो जो सपना है वो कहाँ चला जाता है?
1: ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि प्रोफेशनल एथिक्स की जहां तक बात होती है कि वी हैव ए कमिटमेंट टुवर्ड्स आवर क्लाइंट, बिकॉज देर इज रिटन एग्रीमेंट तो कुछ नहीं है, बट देर इज एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन ए लॉयर एंड द क्लाइंट. ही साइंस वकालतनामा फॉर यू, ही गिव्स यू द पावर टू कंटेस्ट फॉर हिम. सो इट इज योर प्राइम ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट विदाउट गोइंग इन टू एनी अदर थिंग, whether the case is false, whether the case is right, you have a commitment towards your client, you are doing your duty. और लॉर्ड कृष्णा ने भी यही कहा महाभारत में कि आप अपना कर्म करते जाइए और फल की इच्छा मत रखिए. तो हम अपना कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी होता है, जस्टिस देना जो है वो जज का काम है. हम अपना प्रयास करते हैं क्योंकि हमारा प्रयास हमारे क्लाइंट के लिए होता है, हमारा कमिटमेंट उसके साथ, तो हम उसके लिए काम.
0: सो सर, जैसे आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भारत में लेके आए हैं, उसको लागू कराया, उसके बारे में आप बताएंगे थोड़ा सा.
1: 1994 में कुछ मेरे क्लाइंट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग थी, उनके कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए, इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट थे, और इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स बहुत सारी कंट्रीज के साथ से, स्विट्जरलैंड स्विस बैंक कॉरपोरेशन के साथ थे तो स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, बार्कलेज बैंक लंदन के साथ थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, और KfW जर्मनी उसमें था, नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक फिनलैंड हेलसिंकी इन्वॉल्व था. तो उसमें कुछ फाइनेंशियल लोन्स हमारे होने थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा आना था, उस पैसे को लेके कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ डाउट्स थे कि ये अगर हम ये लोन दे देते हैं तो इस लोन की रिकवरी के लिए whether we will be able to recover that money from the corporation under the Indian law or not. That was one of the major point, because whatever loan is given has to be recovered. So that loan agreement ran into several crores. It was a huge money. So first point was about the recovery of the loan, whether the loan can be recovered under the existing Indian law or not. Secondly, how much loan should be given and how the loan should be disbursed and how should be the, you know, installments of the disbursement of the loan and all those things, for which the dispute had arisen, which dispute was sorted out under the ADR mechanism, and it was sorted out to the satisfaction of our Indian corporation, and we got the loan, and of course our country was benefited by that.
0: So, जैसे आप कह रहे हैं कि लोन्स है, इन सभी चीजों के लिए कानून काम आता है
1: जी.
0: वैसे तो भारत में न्याय व्यवस्था है और उसमें भी बहुत सारे कानून है
1: जी.
0: और जब आप किसी भी व्यक्ति को अगर अन्याय महसूस होता है तो वो कोर्ट में जाता है फाइल केस करने. लेकिन ये ADR से क्या फायदा होता है, क्या फर्क पड़ता है इस सिस्टम से बाकी सिस्टम से?
1: देखो, ट्रेडिशनल जो डिस्प्यूट कोर्ट में जाते हैं उसमें एक तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, पैसा बहुत खर्च होता है. तो पैसा खर्च करना, हमारा देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन गरीब है तो पैसा खर्च करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसमें लीगल टेक्निकलिटीज इतनी इन्वॉल्व होती हैं क्योंकि जो अच्छे वकील ही उसको समझ पाते हैं. फिर उस टेक्निकलिटीज़ के बावजूद भी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से मुकदमा होता है, फिर सेशन कोर्ट में जाता है, सेशन कोर्ट से मुकदमा होता है तो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है. तो क्योंकि डिस्प्यूट्स बहुत सारे पेंडिंग हैं तो इसमें टाइम बहुत लगता है, 20-25 साल लग जाते हैं डिस्प्यूट को रिजोल्व होने में, और फिर भी रिजोल्व होता है या दोबारा से एक नया चैनल शुरू हो जाता है, रिमांड बैक हो जाते हैं कई बार केसेस, तो वो एक दूसरा चैनल शुरू हो गया तो 10-15 साल के लिए फिर चली गई बात. कई बारी लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी में उन डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट होते हुए देख ही नहीं पाते हैं, उससे पहले तो वो चले जाते हैं. तो जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, इसमें जैसे मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, डिस्प्यूटरी बोर्ड है, आर्बिट्रेशन है, तो ये जो तरीका है ये अर्ली डिस्पोजल करता है. देर इज ए टाइम लिमिट कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये डिसाइड करना है. आर्बिट्रेशन एक्ट में, न्यू आर्बिट्रेशन एक्ट में 6 महीने के लिए लिखा हुआ है. DRB में आपका वर्क के साथ साथ आपका डिस्प्यूट भी रिजोल्व होता जाता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म.

0: है। तो इस तरह से जो है टाइम कम लगता है, वो टाइम कम लगता है तो ये लेस एक्सपेंसिव लिटिगेशन होता है, इसमें कम पैसा भी खर्च होता है। तो इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैं तो कहूंगा कि होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑप्ट करना चाहिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हमारी ट्रेडिशनल कोर्ट्स के पास तो वैसे भी ओवरबर्डन है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो इसलिए अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक अलग वाया मीडिया है जिससे जल्दी से डिस्प्यूट रिजोल्व हो।
1: तो इसके बारे में जनता को कितना अवेयरनेस है?
0: देखिए, मैंने तो ये काम किया था 1994 में, तब तो इंडिया में एक्ट भी नहीं आया था। एक्ट तो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के नाम से आया। लेकिन कॉरपोरेट हाउसेज तो इसके बारे में, ADR के बारे में अवेयर हैं, बट बहुत सारे लोग ADR के मैकेनिज्म को नहीं जानते और ADR की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है लोगों में पॉपुलर नहीं हो पा रहा है। इसके बारे में जितना लोगों को जानेंगे, अवेयरनेस होएगी, तो मैं कहता हूँ कि अवेयरनेस होने से जल्दी डिस्प्यूट रिजोल्व होंगे। और बहुत सारे डिस्प्यूट जो है, जैसे हमारे पुराने जमाने में पंचायत होती थी, तो पंचायत में डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाते थे। तो पंचायत वगैरह जो पंचायती राज सिस्टम है वो आज भी प्रिवेल करता है, लेकिन पंचायत के बाद भी लोग कोर्ट चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जो मेरे ख्याल से जो हमारा मेरा अपना सोच है, इसकी बिगिनिंग तो हमारे यहाँ से ही हुई थी, पंचायती राज सिस्टम से, जब पंचायत डिसाइड करती। तो ये मुगल पीरियड में भी रहा, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी रहा, ये तो हर वक्त चलते रहे। हाकिम होते थे, हाकिम डिसाइड करते थे, तो तब अगर हाकिम डिसाइड करते थे, हाकिम का जो डिसीजन होता था वो सबको मानना पड़ता था। तो उस तरह से मैं ये कहूंगा कि एक ऐसे डिसीजन होते जाएं जो जिसमें अपील का कोई प्रोविजन ना हो, क्योंकि कोर्ट में लिटिगेशन में लंबा चलता है तो पैसा बहुत खर्च होता है, और पैसा आदमी के पास है नहीं, अपना काम छोड़ के पैसों वकील को भी खर्चता है कोर्ट में, और पैसा भी खर्च होता है। तो वो सब करने की बजाय एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो मैकेनिज्म है, इसको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि डिसीजन जल्दी हमें डिस्प्यूट जल्दी रिजोल्व।
1: तो जैसे आपने कहा कि 1994 में पहली बार आपने इसको भारत में लेके आए, तो अभी लोग इस चीज को समझते हैं और यूज करते हैं?
0: हाँ, मैंने कहा ना, कॉरपोरेट हाउसेज इसको यूज करते हैं। कॉरपोरेट हाउसेज में DRB भी है, तो DRB कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को मैकेनिज्म को वो करते हैं, और मीडिएशन भी एक ऐसी चीज है कि मीडिएशन में भी लोग लॉयर्स को इन्वॉल्व भी करते हैं, और मीडिएशन इज द फर्स्ट स्टेज, जहां डिस्प्यूट ही नहीं है, जहां जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो मीडिएशन से सॉर्ट आउट हो जाती है। तो वो मैं समझता हूं कि वो पॉपुलर तो है, बट वो मैंने बताया कॉरपोरेट हाउसेज में है, आम जनता को इसके बारे में नहीं।
1: लेकिन ये जो ADR है वो सिर्फ कॉरपोरेट्स के लिए है और आम पब्लिक के लिए तो नहीं?
0: अभी तक तो ADR को कॉरपोरेट हाउसेज ही यूज कर रहे हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस हैं, वो सब यूज करते हैं। बट थोड़ा सा कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद इसको आम जनता भी फॉर स्मॉलर डिस्प्यूट, फॉर ट्राइबल मैटर्स वो यूज कर सकती है, और छोटे छोटे डिस्प्यूट जो है ना वो मतलब मैं कहता हूँ कि ग्राम पंचायत के लेवल तक खत्म हो जाने चाहिए। बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे होते हैं कि जो वो ग्राम पंचायत के लेवल पर खत्म हो जाने चाहिए, इससे कोर्ट्स का भी टाइम बचेगा। प्रेशियस टाइम होता है कोर्ट का, जजेज के पास बहुत ओवरबर्डन है, जजेज हमारे यहाँ पर बहुत पेंडेंसी है, इसलिए छोटे डिस्प्यूट्स को मैं समझता हूँ कि कोई मैकेनिज्म इस तरह से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरह से निकाला जाए और वो जल्दी से डिसाइड कर दे।
1: जी सर, आपकी इस एक छोटी सी कदम
0: जी,
1: भले वो कदम छोटी सी है लेकिन वो बहुत बड़ा प्रभावशाली था
0: जी।
1: आपने कभी सोचा था कि इस काम के लिए आपको पद्मश्री मिलेगी?
0: नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे को किस चीज के लिए मिला है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने तो अपना काम समझ के काम को किया है। मैं अपना काम को काम की तरह से करता हूँ, मैं किसी अवार्ड का मोहताज नहीं हूँ किसी भी काम को करने के लिए, और मुझे कोई अप्रिशिएशन भी उसकी नहीं चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो अगर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ उसको कोई अप्रिशिएट करता है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर कोई उसको अप्रिशिएट नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी को पूरे कमिटमेंट के साथ।
1: जिस दिन आपको समाचार मिला कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है, उस समय क्या आपकी भावनाएं थी या फिर क्या फीलिंग्स थे?
0: नहीं, जब आपका कोई भी काम एक्नॉलेज होता है, जैसे मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया तो मेरे को बस इंटीमेशन आई कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा रहा है, तो खुशी होती है। इट्स ए ह्यूमन नेचर। जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, जब आपको कोई भी अचीवमेंट होती है, तो आपको खुशी होती है, उसकी खुशी तो होती है, वो तो बात सही है। सेलिब्रेट भी करते हैं उसको, फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी करते हैं, खुशी तो होती है।
1: कई लोगों को हम देखते हैं कि जब उनको पद्मश्री मिलती है सो बहुत छोटे से उम्र में, उनको लगता है कि मतलब सेम फील्ड में जो लोग है, हम इतने समय से इस फील्ड में हैं लेकिन हमको नहीं मिली, इनको कैसे मिल गई?
0: ये आपने जो सवाल किया, इसमें ये तो जरूर होता है कि जेलसी तो लोगों को बहुत होती है। जेलसी इस हद तक होती है कि इसको ये अचीवमेंट क्यों मिला, इसका इतना नाम क्यों हुआ, इसको टीवी पर इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया, ये इस किस्म की जेलसी होती है। बट वो एक मैं इस पे एक आपको शेर कहूँगा, हैं, इस पर एक शेर कहूँगा, उर्दू का है कि गिरते हैं शह सवार, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो मेरे कहने का मतलब है, आदमी एफर्ट करता है, आदमी अपना काम करता है, तभी तो वो होगा। जो आदमी एफर्ट ही नहीं करेगा और वो दूसरों से जेलसी रखेगा तो उसको कोई अचीवमेंट तो नहीं मिल सकती ना, आपको एफर्ट तो करना पड़ता है।
1: आपको क्या लगता है कि हमारी जो भारत की न्याय व्यवस्था है
0: जी,
1: कई बार बहुत लंबा चल जाता है
0: जी,
1: एक एक फाइल को क्लोज करने में, और इसमें जो विक्टिम है मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ, हम विक्टिम तो डायरेक्टली नहीं कह सकते, जिनके साथ अन्याय हुआ है वो न्याय के लिए लड़ रहा है, जिस समय जो हादसा हुआ है उस समय की मानसिकता, संबंध और वो परिस्थिति सालों साल होते होते बदल भी सकता है उनके विचारों में, क्योंकि बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रभाव, बहुत सारे सवाल उसकी अपनी खुद की निजी विचार को भी प्रभावित कर सकते, तो 20-25 साल के बाद जब उसको न्याय मिलता है, कई बार उस समय तक वो व्यक्ति भी शायद ही जिंदा रहता होगा कई केसेस में, ऐसा क्यों हो जाता है इतना लंबा और क्यों हम जल्दी नहीं कर पाते हैं?
0: देखो, कोर्ट्स में पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जजेस की वैकेंसीज हमेशा रहती हैं, जजेस की वैकेंसी होने की वजह से कोर्ट्स में केसेस का डिस्पोजल उस ढंग से नहीं हो पाता है। तो अगर हम जजेस की स्ट्रेंथ, फुल स्ट्रेंथ वाले जजेस को अपॉइंट कर दें और अच्छे मेरिटोरियस लोगों को जजेस के तौर पर अपॉइंट करें, तो मेरा ख्याल है कि इतने केसेस की पेंडेंसी नहीं रहेगी, 25 साल नहीं लगेंगे, 4-5 साल के अंदर अंदर अगर न्याय मिलने लग जाए तो हर आदमी की मतलब मनस्थिति वही रहेगी जो केस करने के वक्त, वो बदल लेगी भी नहीं। और जब तक 25 साल होते हैं तो वो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको वो न्याय जो मिलता है तो उसको ये लगता है कि अब क्या मुझे मिला, मतलब मिला तो 25 साल के बाद मिला तो क्या। इसलिए जजेस की स्ट्रेंथ अगर बढ़ा दी जाए तो जल्दी न्याय मिलने लग।
1: जैसे हमारे पुराने जमाने का अगर हम सिस्टम देखते हैं
0: जी,
1: न्याय व्यवस्था में, उसमें पंचायत होती थी, पंत प्रधान होते थे, गांव में कोई भी हादसा होता था तो वो पंचायत में जाते थे और वहीं पे रिजॉल्व हो जाता था। लेकिन जब से ये न्याय व्यवस्था बनी है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स है, उसके बहुत सारे क्या कहे प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसका जो लंबा प्रोसीजर है, आप पहले कागज बनाओ फिर उसके लिए साक्षी भी चाहिए, तो इन सभी चीज़ों में एक आम इंसान जो इतना न्याय व्यवस्था का जानकारी नहीं रखता तो वो कैसे न्याय को पाए?
0: देखो, पहले आदमी सच्चे होते थे, आदमी के अंदर एक सच्चाई होती थी, धर्म पर चलने वाले लोग थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, जो बात सच होती थी वही करते थे। आज मतलब चाहे ये कहिए कि ये कलयुग का पीक होता जा रहा है, तो लोग झूठ और फरेब में बहुत विश्वास करने लग गए हैं, तो जो झूठ और फरेब में विश्वास करते हैं तो वो लोग किसी भी तरह से कुछ भी चाहेंगे कि हमारे तरीके से हो जाए। तो वो एक फर्क आ गया है, आदमी की अपनी सोच में फर्क आ गया, वो सच्चाई नहीं रही है। अगर वो सच्चाई रहती तो वो सब न्याय व्यवस्था हमारी जो पहले पंचायत राज सिस्टम था वो बड़ा ठीक था, उससे ठीक हो जाता था। कसमें खिला लेते थे मंदिर में खड़े होके, बोल दो ये बात सच है, बस इतना ही होता था, उसी से हो भी जाते थे फैसले।
1: सो अगर हम न्याय व्यवस्था को सिंप्लीफाई करें, जैसे आपने कहा कि सच्चाई होती थी, ऑब्वियसली उसमें सच्चाई होती थी, और सिंप्लीफाई करना है और जो काम जिस जगह से निकली है वहीं पे खत्म हो जाए। जैसे हम कई बार ये भी सुनते हैं कि जो मेंटेनेंस केसेस होते हैं उसमें कोशिश ये रहती है कई बार एडवोकेट्स या जजेस का भी, पहले वो लोग आपस में एक बार बातचीत कर लो, अगर वहीं पे वो सेटल हो जाते हैं तो कोर्ट तक आने की जरूरत नहीं पड़ती।
0: लेकिन शुरू शुरू में मैं आपको ये कहूँगा कि हर केस में शुरू शुरू में पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। जैसे आपने हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट का आपने रेफर किया कि मेंटेनेंस का केस, तो हस्बैंड वाइफ के केस में क्या होता है कि दोनों की में एक मतलब सॉर्ट ऑफ एनिमिटी जो डेवलप होती है रिलेशन में, तो वो कहता है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और वो कहती है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तो जब वो जब स्टेज होती है तो बहुत एग्रेसिव होते हैं उस टाइम पर, इसलिए वो डिस्प्यूट जो है वो आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं करना चाहते किसी भी सूरत में। वो चाहते हैं कि मतलब वाइफ ये चाहेगी हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसको जेल जाना ही चाहिए, इसके माँ बाप को, इसके बहन बहनोई को, इसको सबको जेल करवा दूँ। ऐसे मतलब ऐसी सोच होती है, मैं नहीं कहता हर आदमी ऐसा करता है, लेकिन ऐसी सोच के साथ वो शुरू करते हैं। लेकिन जब वो ये सब कुछ नहीं हो पाता है, कई बार केसेस में गलती नहीं भी होती हस्बैंड साइड की, किसी केस में हो भी सकती है किसी केस में नहीं भी होती, जब नहीं होती है तो वो धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन आने लगती है, और जब वो फ्रस्ट्रेशन आने लगती है ना तब वो सेटलमेंट की बात करते हैं। बट बाई दैट टाइम वो कोर्ट में तो आप चले ही गए ना डिस्प्यूट के लिए। अगर आपको यही बात जो चार साल बाद कर रहे हैं वही आप एक साल पहले कर लेते और कोर्ट में सेटल कर लेते कि भाई हम दोनों को एक साथ नहीं रहना तो हम म्यूचुअल डिवोर्स कर लेते हैं या मेंटेनेंस का अमाउंट इतना सेटल कर लेते हैं, तो वो मेरे ख्याल है ये एक बेटर वे है कि जिससे जल्दी डिस्प्यूट सेटल हो जाए। तो बट उस टाइम पर पार्टीज बड़ी एग्रेसिव होती हैं, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं होती। लड़की अपने माँ बाप की भी नहीं सुनना चाहती, लड़की अपने हस्बैंड से तो खैर खफा होती ही है, तो और हस्बैंड भी यही सोचता है कि भाई मैं तो मतलब। फिर भी एक और बात आपको लाइटर सेंस में कहूंगा कि मतलब हस्बैंड ये कहेगा तेरे जैसी मुझे हजार मिलेंगी मतलब, और वाइफ कहती है तेरे जैसे मुझे हजार मिलेंगे, अरे भाई फिर आपको जो ये पसंद ही नहीं है इस जैसे की क्या जरूरत है, फिर कोई दूसरी तरह का ढूंढ लो।
1: वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक है। सो हम अगर न्याय व्यवस्था को हम मदद करना चाहते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था को, और कोर्ट तक केस लेकर नहीं जाना चाहते, क्या कर सकते हैं ऐसे में?
0: मैं तो ये कहूंगा कि पंचायत डिस्प्यूट को रिजोल्व करे, पंचायत से डिस्प्यूट रिजोल्व करवाएं। नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, बीच में चार आदमी बैठ के बात करें, जिसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का नाम दिया जा सकता है, और इस तरह से कोर्ट में जाने की बजाय और डिस्प्यूट को रिजोल्व करके, और अपना मैं कहता हूँ कि यू बाई पीस, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड सेव टाइम। अपने अच्छे काम के लिए टाइम लगाएं, मतलब किसी चीज में अपना एनर्जी लगाएं अच्छे कामों के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, देश की तरक्की के लिए, अपने आप की प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, ना कि कोर्ट के डिस्प्यूट्स में जाके अपना टाइम जाया करना।
1: कार्यक्रम के अंत में सो न्याय क्या है?
0: देखिए क्लाइंट की नजर में, दोनों पार्टी के क्लाइंट की नजर में जो वो चाहता है, जो वो उसको मिल जाए तो वो न्याय।
1: और धर्म क्या है?
0: धर्म वो है जिसको हम कहेंगे कि जो सच्चाई। जब यक्ष ने युधिष्ठिर से, यक्ष युधिष्ठिर का संवाद आपने सुना महाभारत में, जब पूछा कि आदमी के मरने के बाद उसके साथ क्या जाता है, मरने के बाद साथ आदमी कुछ ले जा नहीं सकता ना, वो तो खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है, तो उसने युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि उसके साथ उस आदमी का धर्म जाता है। धर्म जो है ऐसी चीज है जो उसके साथ जाता है। धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म से मतलब जिस रास्ते पर, जिस सच्चाई के रास्ते पर वो चला, जो उसकी अच्छे कर्म है वो उसके साथ जाते हैं। तो धर्म जो है मैं ये समझता हूँ कि सच्चाई।
1: जी देश,
0: देश जो है हमारा, जैसे हम अपने लिए, हम अपने लिए अगर मतलब हम, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं तो हम, हमारे लिए हमारा देश जो है सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट की थ्योरी जिसको हम कहते हैं कि कंट्री फर्स्ट, बाकी चीजें बाद में हैं, पहले हम अपने देश के लिए सोचें, तो वो एक अच्छी चीज है और वो देश है। और मैं अपने देश के लिए हमेशा सोचता हूँ, मैं अपने देश के लिए अपने पर्सनल नुकसान भी करने को तैयार हूँ। अगर मेरे देश को मेरी जरूरत है तो मैं अपने देश के लिए कोई भी काम करने को तैयार हूँ।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू सो मच,
1: आपने इतना वैल्यूएबल समय निकाला, हमारे श्रोताओं से रूबरू किया, बातचीत किया।
0: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और आपने जो सवाल मेरे से किए ना, वो एक्चुअल में ये डिफरेंट तरह के सवाल हैं, और मुझे भी इसका जवाब देके अच्छा लगा। इट वॉज रियली गुड, एंड मैं समझता हूँ कि इससे लोगों को बड़ा कुछ सीखने को मिला।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
3: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड, मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टुडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूं, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा, और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार पुराना स्तंभ जी।
1: नमस्कार मनु, ये हाथ में क्या लिए टहल रही हो आज?
0: क्या बताऊं, मैंने अपने भाई के लिए एक शर्ट खरीदी थी पिंक रंग की, तो उसने पहनने से ही मना कर दिया। बोला लड़कों का कलर नहीं है पिंक।
1: अच्छा।
0: हाँ, वैसे तो लड़कों का कलर ब्लू और लड़कियों का कलर पिंक है ना।
1: ये किसने बोला?
0: बोला तो किसी ने नहीं, मगर सबको पता है। और कुछ काम लड़कों को सूट होते हैं तो कुछ काम लड़कियों को।
1: ये अंतर भी समाप्त करना है मनु। हर किसी का अपना अपना व्यक्तित्व है। किसी लड़के को बोलना कि लड़कियों वाले काम न करो या लड़कियों जैसे मत चलो, किसी लड़की को मर्दाना बोलना या लड़कियों की तरह रहो कहना, कुछ सिखाता नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व को दबाता है, उनकी भावनाओं का दमन करता है, वो बनने पर मजबूर करता है जो वो है नहीं। अगर कुछ समझाना भी है तो सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।
0: बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जाने अनजाने हम भी भेदभाव को बढ़ावा दे देते हैं और फिर किसी को बुरा भी तो लग सकता है।
1: मजाक करने और मजाक बनाने के बीच की पतली रेखा को देखना समझना बहुत आवश्यक है मनु।
0: ओके पुराना स्तंभ।

0: अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद का पता जानने के लिए राजगुरु पर अनेकों अमानवीय अत्याचार किए।
1: ओह नो।
0: किंतु वीर राजगुरु कतई विचलित ना हुए।
1: अच्छा।
0: पुलिस ने राजगुरु को अपने सभी साथियों के साथ लाकर लाहौर की जेल में बंद कर दिया। सभी साथी मस्त मौला वीर मराठा राजगुरु को देखकर बड़े खुश थे। लाहौर में सभी क्रांतिकारियों पर सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा चल रहा था।
1: और फिर
0: मुकदमे को क्रांतिकारियों ने अपनी फाका मस्ती से बड़ा लंबा खींचा।
1: अच्छा।
0: सभी जानते थे कि अदालत एक ढोंग है, उनका फैसला तो अंग्रेज हुकूमत ने पहले ही कर दिया था। राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जानते थे कि उनकी मौत का फरमान तो पहले ही लिखा जा चुका है, तो क्यों ना अपनी मस्तियों से अदालत में अंग्रेज जज को धूल चटाई जाए।
1: अच्छा।
0: एक बार राजगुरु ने अदालत में अंग्रेज जज को संस्कृत में ललकारा।
1: ओ।
0: जज चौंक गया, उसने कहा, तुम क्या कहता है? हाँ, राजगुरु ने भगत सिंह की तरफ हंसकर कहा, यार भगत, इसको अंग्रेजी में समझाओ, ये जाहिल हमारी भाषा क्या समझेंगे।
1: अच्छा।
0: सभी क्रांतिकारी ठहाका मार कर हंसने लगे। अदालत में इन क्रांतिकारियों ने स्वीकार किया था कि वे पंजाब में आजादी की लड़ाई के एक बड़े नायक लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेना चाहते थे।
1: ओ, उन्होंने खुद स्वीकार किया।
0: अंग्रेजों के विरुद्ध एक प्रदर्शन में पुलिस की बर्बर पिटाई से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जेल में भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने कैदियों के साथ होने वाले अमानवीय अत्याचारों के विरुद्ध अमरण अनशन आरंभ कर दिया, जिनको जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। वो पहले ही से क्रांतिकारियों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे, विशेष रूप से भगत सिंह के लिए। इस आमरण अनशन से वायसराय की कुर्सी तक हिल गई। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की हड़ताल तोड़वाने का जबरदस्त प्रयत्न किया, किंतु क्रांतिकारियों की जिद के सामने वो हार गए। राजगुरु और जतिन दास की इस अनशन में हालत बिगड़ गई। राजगुरु और सुखदेव से अंग्रेज विशेष रूप से हार गए थे। जतिन दास अमरण अनशन के कारण शहीद हो गए, जिससे जनता भड़क उठी। विवश होकर अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की सभी बातें माननी पड़ी। ये क्रांतिकारियों की विजय थी। उधर सैंडर्स हत्याकांड मुकदमे का परिणाम निकल आया। सैंडर्स के वध के अपराध में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को मृत्युदंड मिला। तीनों ही इस मृत्युदंड को सुनकर आनंद से विभोर हो गए और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे।
1: अच्छा।
0: राजगुरु को 23 मार्च 1931 की शाम 7 बजे लाहौर के केंद्रीय कारागार में उनके मित्र भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि फांसी को लेकर जनता में बढ़ते रोष को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों के शवों का अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला में ही कर दिया था। ये भी माना जाता है कि इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी की तिथि असल में 24 मार्च निर्धारित थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन अंग्रेज सरकार फांसी के बाद होने वाली परिस्थितियों से घबरा रही थी, इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही फांसी दे दी। राजगुरु के जन्म शती के अवसर पर भारत सरकार प्रकाशन विभाग ने उन पर संभवतः पहली बार कोई पुस्तक प्रकाशित की थी।
1: अच्छा।
0: इस सराहनीय प्रयास के लिए न केवल प्रकाशन विभाग धन्यवाद का पात्र है, बल्कि उस लेखक को भी कोटि कोटि बधाई है जिसने इस क्रांतिकारी की जीवन लीला से सभी को परिचित करवाया। पुणे का वह खेड़ गांव जहां राजगुरु का जन्म हुआ था, उसे अब राजगुरु नगर के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा, क्या बात है। कहानी सुनकर तो ये लगता है जैसे राजगुरु जी की नस नस में वीरता ही बहती हो खून बन के। उनकी कहानी सुनना तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी था।
0: ये वीरता की कहानियां ही नहीं, ये असल में हमारे देश की शान भी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आज की कहानी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पुराना स्तंभ जी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार

0: ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं। उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: अजय सुना सरदारा, की हाल है?

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: दीवाना।
3: एक दीवाना शहर में।
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।
3: दो दीवाने शहर में।

0: पुड़ेरी आवाज 107.8 FM खुश रहो खुशियां बांटो।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुड़ेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हमने ये समझ लिया कि आप जिस हैप्पीनेस की हम बात कर रहे हैं वो एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, मेरे अंदर की स्टेबिलिटी, कोई भी सिचुएशन हो, व्यक्ति कुछ भी कह रहा हो, कोई मेरा अपना भी कुछ भी क्रिएट कर रहा हो, वो स्टेबल रहना मेरा अपना कार्य है। मैं खुद उस स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी हैप्पीनेस इंडेक्स को खुद स्टेबल कर सकती हूँ, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन सुबह अगर बैठकर या आज अभी बैठकर मैंने ये सोच लिया कि मैं कर सकती हूँ, करा भी, थोड़ी देर के लिए किया भी, लेकिन कौन सी ऐसी बातें हैं, अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिन भर में होती हैं और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो क्यों जो इंडेक्स है वो फिर ऊपर उठना या नीचे जाना शुरू कर देता है। तो इस पर बात करते हैं, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: अगर हम देखें, मैंने तय तो कर लिया कि ठीक है मैं ही क्रिएट करूंगा वो थॉट कि आई एम अ हैप्पी बीइंग। और अगर लास्ट कड़ी को देखें तो हमने उसमें भी बात की थी अपने मेडिटेशन के दौरान भी। दिन भर में क्या हो जाता है ऐसे, कौन सी ऐसी बातें हैं अगर हम उन पर आज देखने की कोशिश करें कि जिनसे वो धीरे धीरे फिर खत्म होने लगती है शक्ति।
1: सबसे पहले अब हमारा बिलीव सिस्टम चेंज हुआ। ये बिलीव सिस्टम कि आई वॉन्ट हैप्पीनेस, इससे चेंज हो गया आई एम अ हैप्पी बींग। दिस इट्सेल्फ इज अ बिग शिफ्ट इन द वे आई एम गोइंग टू थिंक। और दूसरा, फिर जब मैंने ये समझा कि मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट नहीं है, मेरी हैप्पीनेस बाहर से नहीं आनी है, तो आई स्टॉप लुकिंग फॉर इट आउटसाइड। यू नो, अभी तक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर इट एंड मैं सब कुछ यही सोचकर कर रही हूँ कि इससे खुशी मिलेगी, इससे खुशी मिलेगी। अब मुझे ये डिसाइड करना है, मुझे खुश रहकर
0: चीजें करनी,
1: ये करना है। यू नो द फोकस शिफ्ट्स, एक है ये करना है फिर खुशी मिलेगी, और एक है खुश रहना है, मतलब खुश रहकर फिर ये करना है। इवन अ सिंपल थिंग लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, यू नो हाउ डज इट स्टार्ट। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारी फर्स्ट थॉट क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर एक के लिए। एवरी वन नीड्स टू चेक वॉट इज माई फर्स्ट थॉट। अगर मेरी फर्स्ट थॉट ये होती है ओह सुबह हो गई अब उठना है, एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हैव दिस थॉट आई हैव टू गो टू वर्क। तो जो हैव टू सोच कर करेगा वो खुश नहीं हो सकता कभी भी। पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा व्हाई डू आई हैव टू गो टू वर्क, आई डोंट हैव टू, नो वन इज सिटिंग देयर कि आपको जाना ही है काम पर। लेकिन हम खुद जाते हैं ये सोचकर कि आई हैव टू गो टू वर्क बिकॉज आई हैव टू गेट द मनी, व्हाई बिकॉज आई हैव टू बाय द थिंग्स, व्हाई बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आई विल गेट हैप्पीनेस। नाउ इट कैन चेंज टू आई एम हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू गो टू वर्क। किस लिए जाना है, अभी काम पर जाना था क्योंकि वहां से लाना है, वहां से लाना है और उससे खुशी आएगी। अब ये हो सकता है कि मुझे काम पर जाना है, वो तो ठीक है, जब वो पार्ट तो है ही धन का, लेकिन एक अलग पर्पस के लिए जाना है। एंड दैट पर्पस कुड बी कि ये जो मेरी वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, लव, पीस, हर एक के साथ जिसको मैं मिलने वाली हूँ आज सारा दिन में, आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू हैव एन एक्सचेंज ऑफ दिस एनर्जी। आई एम नॉट गोइंग टू गो टू वर्क ताकि मुझे ये मिले, लेकिन आई एम गोइंग टू गो टू वर्क ताकि आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस। पूरा पर्पस शिफ्ट हो जाता है। एंड एक फर्स्ट थॉट जो मॉर्निंग की है ये क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम अपनी वोकैबुलरी को चेक करें तो ये हैव टू वर्ड इसको निकालना,
0: इसको डिलीट ही कर देना चाहिए। एंड समवेयर अमेजिंग, ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव इट कि मैं सुबह उठूं और मैं ये सोचूं कि मैं आज अगर काम पर जाऊंगी तो मैं प्यार शेयर करूंगी, मैं हैप्पीनेस शेयर करूंगी। कैन वी डू दैट? या हम ये सोचें कि मेरा बॉस क्या करने वाला है?
1: देखो सारा दिन कैसा बीतता है ना, आज मेरा सारा दिन ऑफिस में कैसा बीतता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरी नेक्स्ट डे मॉर्निंग की थॉट कैसी होगी। अगर मेरा ऑफिस का एक्सपीरियंस सारा दिन एक स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, देन ऑब्वियसली आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू इट। मैं कल क्यों देखूंगी, जैसे आई हैव टू गो, ये एक मजबूरी है। लेकिन इफ आई गो टू वर्क ये स्टेबिलिटी के साथ, और सारा दिन मैं जिनके साथ भी मिलूं मैं उनके साथ ये एनर्जी शेयर करती हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होती, तो मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा? वो पूरा दिन तो बहुत, इट विल बी वेरी फुलफिलिंग, क्योंकि हैप्पीनेस, लव, ये एक ऐसी एनर्जी है कि जितना हम इसको शेयर करते जाएंगे ये मेरे अंदर सिर्फ बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं ऑफिस जाकर 10, 20, 50 लोगों से मिलने वाली हूँ और वो एनर्जी हर टाइम शेयर करते हुए मेरे अंदर बढ़ती जाएगी, विल आई नॉट एंजॉय गोइंग टू वर्क? और उसके लिए भले आप रात को वो थॉट क्रिएट करके सो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रात को हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं वो थॉट हमारे माइंड पर ऑटोमेटिकली पॉप अप करेगी नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अगर सुबह एकदम से नहीं याद रहने वाला है, आधा काम तो आप पहले रात को कर दो। रात को प्रिपेयर योर सेल्फ कि मेरा कल का दिन ऐसे, एंड लुक एट सी इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। कुछ भी अपने आप नहीं होगा। हम सोचते हैं हाँ समझ में आ गया ये तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप नहीं।
0: You'll have to do this.
1: अपने आप नहीं होगा। नहीं, बहुत ब्यूटिफुल चीज है जब हम अपने थॉट्स को देखना शुरू करते हैं, जैसे ही दिखाई देता है कि दिस थॉट इज नॉट वेरी, स्टॉप, चेंज इट। एंड चेंजिंग इट मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग इट विद समथिंग एल्स। हमने पहले ही देखा कि थॉट फीलिंग को जेनरेट करती है। ठीक है, थॉट पर नहीं पता चला कि अच्छी है या बुरी है, फीलिंग पर पता चल जाता है, फीलिंग पर पता चलेगा। व्हाई नॉट चेंज द थॉट? जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं, आई हैव टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी हमें ये पता है। अभी अभी करो, आई वॉन्ट टू गो टू वर्क, कैसी फीलिंग क्रिएट होगी? It is immediately happening inside. Let's try tomorrow morning. I want to go to work. क्योंकि जिससे आप शुरुआत करोगे, अगर हम यही सोचकर काम पे जाएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, ये मुझे करना पड़ता है, जबरदस्ती है, इस क्या एनर्जी फ्लो होगा, आप किस एनर्जी से वॉक इन करते हैं। सो अभी ये होगा कि अगर सारा दिन अच्छा बीतेगा तब मैं अच्छी थॉट क्रिएट करूं, अब वो नहीं, मैं अच्छी थॉट क्रिएट करती हूँ
0: तो मेरा दिन अच्छा बीतेगा।
1: So let me start from my tomorrow morning thought, my first thought in the morning. And अगर वो automatically अपने आप सिर्फ नहीं create हो रही, बैठ कर उसको करना है। बैठना है, अपने आप से दो मिनट बात करनी है, पहली good morning अपने साथ होनी चाहिए। It is very important. And prepare, I want to go to work. I'm very happy. Not, I have to go to work to earn this to get happiness. नहीं, equation change है. I am a happy being. और वो जो दो मिनट हम reflection रोज करते हैं, उसको सुबह में करके शुरू करना है। अब आप निकले morning.
0: तो अपने साथ जो हम बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, this conversation actually can go on.
1: आप वैसे भी सारे काम करते हुए conversation तो अंदर चलती
0: रहती है, you know. So why don't we consciously create this conversation?
1: और इसीलिए हम कहते हैं कि meditation कोई दो मिनट, दस मिनट या एक घंटे की चीज नहीं है। मेडिटेशन तो सारा दिन चलती रहती है, क्योंकि मेडिटेशन मींस क्या? मेडिटेशन की फर्स्ट स्टेज है अपनी इंटरनल कॉन्वर्सेशन। मेडिटेशन मींस थॉट्स तो चल रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन मींस अवेयर होके कॉन्शियसली राइट थॉट्स क्रिएट करना, राइट पावरफुल पॉजिटिव हैप्पी थॉट्स। तो ये हमें क्या बैठ कर करना पड़ेगा? हम सारा दिन कर सकते हैं, लेकिन क्यों बैठ कर करते हैं? क्योंकि सारा दिन में हम कहते हैं पता ही नहीं चलता कितनी, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी बैठ कर अगर हो गई, फिर अवेयरनेस सारा दिन करना बहुत इजी है। अब आप कल की अपनी जो दिन है ना, उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अभी साथ साथ देखते जाओ कि सुबह उठे विद द राइट थॉट, राइट थॉट से उठे, प्रॉमिस योर सेल्फ इमिडिएटली कि अब मेरा बच्चों को उठाने का तरीका, बच्चों को तैयार करने का मेरा तरीका। क्योंकि हम अपनी थॉट्स के साथ जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसी से एनर्जी भी पूरे घर के अंदर क्रिएट हो जाती है। कॉन्शियसली टेल योरसेल्फ ये सब कुछ आज स्टेबिलिटी के साथ होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए आई विल रिमेन स्टेबल। करना तो वही काम होता है, तैयार करना है, ब्रेकफास्ट देना है, स्कूल तक छोड़ना है। अब उसी को या तो ऐसे करके करो या
0: बच्चे
1: फिर
0: सुनते ही नहीं है, उठते ही नहीं है, तैयार नहीं होते।
1: पहले से ही तो थॉट क्रिएट कर लेते हैं इतने सारे। अच्छा, बच्चे सुनते नहीं है, उठते नहीं है, एक्सेप्ट इट ना, दिस इज पार्ट ऑफ चाइल्डहुड। मेरे चिल्लाने से कोई ज्यादा थोड़ी हो जाएगी वो चीज। हाँ ये है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाएगा। नाउ वंस आई स्टार्ट माई डे, चाहे वो घर पे है चाहे वो ऑफिस में है, हमें कुछ एक बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता। एक जो हमने पिछली बार भी देखी, जजमेंटल, ये तो फंडामेंटल है। आई डोंट नो अगर सबने ट्राई किया हो, नहीं किया हो तो अभी भी करें, कि जजमेंटल होने से हमारी बहुत सारी शक्ति वेस्ट हो रही है।
0: बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, सुबह पता चला आप ऐसे ही हो,
1: अब आपको शाम को ही करना पड़ेगा उसके ऊपर सोल्यूशन। सी, अब क्रिटिसाइज करके कुछ नहीं होने वाला। या तो कल शाम देखना चाहिए था उस बात को, या अब आज शाम को आकर देखेंगे। रॉन्ग एनर्जी देकर उसे भी स्कूल भेजना या खुद भी वो रॉन्ग एनर्जी क्रिएट करना, जब वो चीज का अब कुछ नहीं हो सकता तो व्हाट इज द पॉइंट? अननेसेसरी वी आर क्रिएटिंग। सी, लेट्स बी केयरफुल। जैसे हम बाकी शक्तियों का बहुत ध्यान रखते हैं, रिसोर्सेस का ध्यान रखते हैं, पानी तो हम वेस्ट नहीं करते आजकल बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी हम वेस्ट नहीं करते, पेट्रोल हम वेस्ट नहीं करते, एंड अपनी संकल्प शक्ति वेस्ट करते जाते वेस्ट करते. तो हमें ध्यान रखना है मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है. और ये बार बार से चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, दिस इज वेस्टेज ऑफ एनर्जी. खुशी चाहिए नहीं, खुशी है उसको वेस्ट मत कीजिए. आपके पास टैंक है उतना पानी का, आप ऐवे सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं पानी चाहिए, टैंक है. अब सिर्फ ध्यान रखो ना, ऐसे ही उसका नल चलता ना रहे, बह ही जा रहा है वो पानी, तो खुशी है. अब सिर्फ ध्यान रखना है कि अब जजमेंटल, क्रिटिकल, क्रिटिसाइज सारा दिन करते रहना, दिस इज वन बिग वेस्टेज ऑफ एनर्जी. और जजमेंटल में
0: मतलब दूसरों की स्क्रिप्ट लिखना, वो हम बार बार कहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, और कितनी बार तो हम पड़ोसी क्या कर रहा है उसके ऊपर भी बात करने लगते हैं. मतलब हम सोचने लगते हैं अननेसेसरली, देखते हुए ही. इनफैक्ट सो मेनी टाइम्स वी डू इट अननोइंगली.
1: हमें इसलिए देखना पड़ेगा, जिस तब जब तक हम देखेंगे नहीं ना, एक दिन अपने आप को, हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कितना ज्यादा करते हैं ये. और ये एक एक वेस्टेज ऑफ एनर्जी है. मैं कितना भी बैठकर औरों के बारे में सोचती रहूं, औरों ने मेरे हिसाब से चलना नहीं, वही एनर्जी अगर मैं अपने बारे में सोचते में लगा देती, तो आई वुड हैव बीन एबल टू डू मिरेकल्स. आई एम डूइंग माय वर्क and I'm thinking about other people and other people's work and the scenario, दुनिया में क्या हो रहा है उसके, wastage of energy. अब जैसे ही ये हम judgmental होने लगते हैं, लेकिन लोग तो हमारे अनुसार नहीं चलते, तो frustration create होता है. Suppose senior है, junior को बोल रहे हैं बार बार, लेकिन वो मानता ही नहीं, तो अब क्या होगा, और frustration आएगी, और गुस्सा आएगा, हम out of control चले जाते हैं. That is why we say anger is like temporary insanity. You go temporary इनसेन. वाई इनसेन? क्योंकि आप आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं. पहली चीज तो वो इमोशन ने आपको ओवर पावर कर लिया है. सो यू लूज योर क्रिएटिविटी.
0: एक्चुअली अगर हम देखें सचिवानी, हम बाहर लोगों को देख भी क्यों रहे थे, क्योंकि हमें कुछ और थोड़ा दिख रहा था. हमें जो दिख रहा था हम उसी को देख रहे थे, और फिर हमें गुस्सा चढ़ता था कि क्यों नहीं चेंज कर लेता, मुझे समझ में आ रहा है कि ये इसके लिए ठीक है.
1: बिल्कुल.
0: तो सिमिलरली अगर हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे, तो मुझे वही दिखेगा,
1: और मुझे ये समझ में आएगा कि मेरे लिए क्या सही है. जिसको देखते हैं उनके लिए कितना इजी है. ऐसे ही मैं आपको देखूं और मेरे को पता है कि आपके लिए क्या सही है, आप मुझे देखो और आपको ये पता चले मेरे लिए क्या सही है. लेकिन हम दोनों एक दूसरे को चेंज तो नहीं कर सकते. लेकिन दोनों अगर अपने आप को देखना शुरू करें उतने ही टाइम में कि मेरे लिए क्या सही है, वी विल डू वंडर्स. एंड दैट्स व्हाई एट द ब्रह्मा कुमारीज वी से कि व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस. हम बदलेंगे तो जग बदलेगा. क्यों? हम एक एक अगर बदलते गए, एक तो हम बदले तो हमारा दृष्टिकोण बदला, जग ही बदल गया हमारे लिए. और प्लस हम अगर एक एक बदलते गए तो विश्व तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा. इट इज सच अ नेचुरल प्रोसेस. लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट इसलिए बना दिया, जब आप बदलेंगे तब मैं बदलूंगी.
0: क्योंकि अभी तक मुझे दिख ही आप रहे थे.
1: yes. अवेयरनेस सारी बाहर है ना?
0: और मेरी डिपेंडेबिलिटी भी आपके ऊपर हो रही थी.
1: yes.
0: मेरी डिपेंडेंसी आपके ऊपर थी, मेरा हर चीज आपके ऊपर थी, तो फिर पूरा फोकस yes. आपके ऊपर था.
1: एंड दूसरी चीज जो बहुत बड़ा लीकेज बनती है हमारी खुशी में, वो होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस. हमने बहुत सभी से अपेक्षाएं बनाकर रखी हैं, और जब फिर लोग हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते, तो हमारी खुशी का इंडेक्स पूरी तरह से नीचे. इवन अ सिंपल चीज लाइक बस नहीं आई टाइम पर. मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना कि बस अगर रोज सुबह 8 बजे आती है तो आनी चाहिए. तो जैसे ही वो टाइम पर नहीं आई, मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स फॉल हो जाता. इसी तरह से अगर हम चेक करें हमने जीवन में किन किन लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कम अप टू, हाउ मेनी पीपल डू वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम? ऑलमोस्ट
0: एवरीवन. यस,
1: एवरीवन.
0: एंड देन वी कीप ऑन सेइंग वी डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. व्हाट इज रियली मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस?
1: या व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेक्टेशंस? एक्सपेक्टेशंस मतलब क्या? एक्सपेक्टेशंस मतलब दूसरे के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना.
0: ओके.
1: मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसा करेंगे.
0: आपके कर्म को ही मैंने,
1: कर्म या बोल, व्यवहार, जो भी. आई एक्सपेक्ट दैट यू विल डू दिस, मतलब आने वाले भविष्य में, दैट कुड बी द नेक्स्ट मिनट और इट कुड बी व्हाटएवर, आप क्या करने वाले हैं उसको मैं पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेती हूँ.
0: तो मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, ये कहते थे.
1: एक्सैक्टली. That's the point. तो आपको खुद को भी नहीं पता.
0: हाँ, आपका तो, हाँ, I know. जब वो हो जाता है तब हम कहते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद न थी.
1: तो मैंने आपका फ्यूचर बिहेवियर ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया है. एंड जब अगर आपका फ्यूचर वो नहीं हुआ जो मैंने प्रोजेक्ट किया था, देन आई विल से यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. तो अब आई हैव टू स्टॉप और अपने आप से लॉजिकली पूछना पड़ेगा, कितना इंटेलिजेंट आइडिया है ये.
0: हुए माई
1: तो फिर भी ठीक है, हुए माई तो डेफिनेटली इज अ क्वेश्चन, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं क्यों एज अ पेरेंट हम एक्सपेक्ट ना करें, एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ मैं एक्सपेक्ट ना करूं, एज अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ना करूं. एक्सपेक्ट, दैट्स वे इट्स वेरी, ये एक चीज है जिसको लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट है.
0: एक्चुअली वो तब तक नहीं पता चल पाता जब तक कि वो फेल नहीं होता कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे.
1: यस, लेकिन आप सारा दिन में देखना ना, सपोज मैं आप, एंड एक्सपेक्टेशन किस आधार पे भी है बेस्ड है, कि जैसे आप जिस तरह से बोलते आए हैं मेरे साथ, कल भी आप इसी तरह से बात करेंगे, लेकिन अगर कल आपने एक अलग तरह से बात कर ली, ऐसे आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. सो एक्सपेक्टेशन मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि कल आप इस तरह से बात करेंगे, ये आज आपने डिफरेंट तरह से कैसे कर लिया. सो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. तो किसी के पास्ट के साथ उसको कंपेयर करना कि ये जैसे करते आए हैं जैसा वैसे ही करेंगे, या जो आपके बिलीफ सिस्टम्स पहले थे आप वैसे ही चलेंगे, ये मैं पहले से ही दूसरे के लिए डिसाइड कर लेती हूँ, और फिर जब वो वैसा नहीं करते हैं, आई फील वेरी वेरी लेट डाउन, वेरी लेट डाउन, एंड वो हर्ट, फिर सैडनेस, एंड फिर एंगर. एंगर भी निकलता, आउटबर्स्ट तो निकलती है. अब बहुत दो बातों में हम फंसते हैं, एक तो औरों से एक्सपेक्ट करना, उसमें भी बहुत चैलेंजेस, और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, वो भी. ये दोनों चीजें हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को
0: मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मुझसे क्या चाहिए, बच्चे कितनी बार बोल रहे होते हैं, पेरेंट्स कितनी बार बोल रहे होते हैं.
1: दोनों केस में क्या है, इफ यू मीट माई एक्सपेक्टेशंस आई विल बी हैप्पी, एंड अगर मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट करती हूँ फिर आप खुश होंगे, तो दोनों चीजों में एक्सपेक्टेशंस का हैप्पीनेस के साथ बहुत डायरेक्ट हमने कनेक्शन रखा हुआ है. और हमें सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी को किस चीज पर डिपेंडेंट कर दिया, कि भविष्य में ये क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, वो मैं पहले प्रिडिक्ट करती हूँ और उसके ऊपर अपनी खुशी को डिपेंडेंट कर देती हूँ, फिर वो वैसा करते नहीं है और फिर मैं उदास हो जाती हूँ. Whose fault is this?
0: उनकी, it's so natural. See, again, you know, it's, now फिर हम बिल्कुल उस deep belief systems पे आ गए हैं जो जिन पर हम, वही पूरा मेरा प्रोसेस उसी पे खड़ा है, कि जो आप मुझसे एक तरह से बिहेव करते हुए आ रहे हो, एक तरह से बात करते हुए आ रहे हो, अगर आप मुझसे अलग तरह से बात करोगे तो इट्स एक्चुअली इट्स सो नेचुरल that it hurts me.
1: See, it's so natural it hurts me. It's so natural I get hurt.
0: I get hurt, yes.
1: Belief system change करने ना अपने सारे. I didn't hurt you.
0: I think language.
1: I just changed my behavior. ये बहुत critical हो जाता है कि future prediction पर अपनी खुशी को आधारित कर दिया है. वो खुशी कैसे stable होगी?
0: तो ये इस belief
1: system, क्योंकि वो तो एक भविष्य का prediction है ना. This is like an astrology के मैंने भविष्य का आपका prediction कर दिया और उस पर अपनी खुशी को base कर दिया, और फिर अगर वो सही नहीं निकली तो मेरी खुशी गई ऐसे. एंड फिर मैं उसका ब्लेम किस पर डाल देती हूँ? यू डिड नॉट मीट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. नो, मैंने एक्सपेक्टेशंस पहले क्रिएट क्यों की?
0: लेकिन मुझे पता भी नहीं होता ना कि मैंने की हुई है.
1: इसी को तो अब अवेयरनेस रखनी है कि किन किन लोगों से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं.
0: ऐसे हम कटते जाएंगे फिर सबसे?
1: नहीं, कटते क्यों जाएंगे हम सबसे? आपको पता है हमारे रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हो जाएंगे अगर हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखे? क्या होगा फर्क?
0: एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखी. एक्सपेक्टेशंस बच्चे के साथ अगर हमने नहीं रखी तो आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि ईदर यू गोइंग टू गिव मी रिस्पेक्ट इवन दिस मच. दिस इज ऑल्सो एक्सपेक्टेशन.
1: अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आपने कहा एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है, लेकिन क्या डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे
0: तब भी ठीक, नहीं भी किया तब भी,
1: लेकिन अगर नहीं किया तो हम ऐसे नहीं जाएंगे. ये तो कर सकते हैं साथ साथ, या ये नहीं कर सकते?
0: आई थिंक सो, यस.
1: क्योंकि नहीं तो फिर हम ऐसे
0: ऐसे होते रहेंगे.
1: अगर हमें अपने जीवन,
0: गुड, यू गिव अस वन सम ब्रीदिंग स्पेस, वी कैन डू दैट.
1: ये तो कर सकते हैं.
0: इवन हस्बैंड ने भी अगर बुरे तरह से रिएक्ट किया, मतलब अच्छा वाला प्यार से बात करते थे और आज आके ऐसे गंदे तरीके से रिएक्ट किया, तो हम परेशान नहीं करेंगे अपने आप को.
1: हाँ, वो तो हो सकता है ना, क्योंकि जैसे ही आप वो करोगे तब हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस फिर मीट भी हो जाएंगे कि वो आपकी स्टेबिलिटी से वो भी जल्दी से ठीक होकर ही विल कम बैक टू सी. इवन सेइंग आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, दिस इज अ वोकैबुलरी विच सेज डू इट अकॉर्डिंग टू मी. जो मुझे चाहिए आप अपने जीवन को वैसा. सी हम क्या होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट करने की कोशिश में कहीं ना कहीं हम अंदर बहुत सफोकेट होने लगते हैं हम, और फिर हमारी वोकैबुलरी भी ये कहती है मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उनके लिए ये कर रहा हूँ. इमेजिन अ लाइफ लाइक दिस, मैं इनके लिए ये कर रहा हूँ. नहीं, अगर किसी के कहने पर आप कुछ कर भी रहे हैं तो वोकैबुलरी शुड बी मुझे अच्छा लग रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ. क्योंकि अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, और फिर अगर आप मेरे से खुश नहीं हुए तो आपको पता है मैं कितना रिजेक्टेड फील करने वाली हूँ उसके बाद.
0: नो, बट इफ आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस, यू नो, सपोज मुझे पता है
1: आई वांट टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. इफ यू वांट टू मीट माय एक्सपेक्टेशंस, सबसे पहले आपको उनको अपना एक्सपेक्टेशंस बनाना पड़ेगा. सी अगर एक पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर बच्चा ये सोच सोच कर करेगा मैं उनके लिए कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इट्स द राइट एनर्जी. अगर बच्चे को पेरेंट की वो बात अच्छी लग रही है, समझ में आ गई है, एक्सेप्ट कर लिया, अब मैं अपने लिए कर रहा हूँ.
0: लेकिन बच्चा जो है समझता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है. सपोज एनडीए में जाना मेरा मन है, एनडीए में जाने का, पेरेंट ने मना कर दिया नहीं जाना, बच्चा मान जाएगा कि ठीक है, क्योंकि वो बहुत पेन में चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसे नहीं पसंद था, बट ही एक्सेप्टेड पेरेंट्स वर्डिक्ट, यू नो, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, और उसने वो किया जो वो चाह रहे थे, बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू सी.
1: नहीं, वो करने से पहले उसको अपने साथ सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी बात. दोनों में से एक तरफ डिसीशन लेने से पहले या तो बात करके उनके साथ अपनी बात शेयर करके आप सॉर्ट आउट कर लो. लेकिन अगर आप उनकी बात को स्वीकार कर रहे हो, आप उसको तब तक नहीं करो जब तक आपने उसको अपना नहीं बनाया. सी इफ आई रिस्पेक्ट यू, या मैंने आपकी खुशी के लिए कर लिया, चलो आपने कहा पेरेंट्स बहुत हर्ट हो जाएंगे, मैंने आपके लिए किया ना, लेकिन मुझे अपने आप को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा ये कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये खुश हो, और उसके लिए मैं ये करना चाहता हूँ. इट हैज टू बी मी. इफ इट इज नॉट माई डिसीशन आई विल बी इन पेन थ्रू आउट व्हाइल आई एम डूइंग इट. लेकिन अगर मैंने उसको अपने लिए कर लिया, फिर उसकी जिम्मेवारी, उसमें जितना एफर्ट चाहेगा. देखो, खुश रहकर कैसे करोगे, बात ये हो रही है खुश रहकर कर्म करना.
0: अगेन ओके, मैंने इसलिए किया कि मेरे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और उससे मुझे खुशी मिल रही है,
1: लेकिन अब मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ.
0: ओके, मैंने किया क्योंकि मुझे पता था ये करने से मेरे पेरेंट्स को खुशी मिल रही थी, विच वॉज गिविंग मी हैप्पीनेस, राइट. फिर काफी टाइम बाद मैंने किया, तो मेरे पास वो बात तो रही कि मैंने इसे अपना थॉट, अपनी सोच तब बना था, क्योंकि तभी तो मैं उसमें एक्सेल कर पाऊंगा. अगर मैंने उसे अपना बनाया होगा, मैं उसे एक्सेल भी कर जाता हूँ, लेकिन ये थॉट तो मेरे साथ ही रहा कि मेरे पेरेंट्स की खुशी इसमें थी और इसीलिए मैंने भी किया था.
1: लेकिन आपने सोच समझ के उस टाइम किया था. देखो, उसके बाद एक बार उसने आपने उस चीज को अपना बना लिया, आपके पेरेंट्स उस इक्वेशन से बाहर हो जाते हैं.
0: Because it is between you and the world.
1: Yeah, when whatever decision, आपने जो निर्णय लिया अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर का है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स का है, जब तक, आई नो वन ब्रदर जिनका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, द मदर डिड नॉट अप्रूव ऑफ द गर्ल, एंड भले उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए उन्होंने उस रिलेशनशिप को गिव अप किया. और ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है आज. लेकिन अब भले वो दूसरी तरफ सेट भी हो जाते हैं, कहीं और शादी हो जाती है, वो कॉन्स्टेंटली वो थॉट इतना डीप है माइंड पर, क्या मैंने सही किया या नहीं किया, लेकिन मेरी खुशी तो वहां थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने अपनी मदर के लिए किया. अगर बार बार मैंने अपने पेरेंट्स के लिए ये किया, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए किया, कहीं ना कहीं आपने, पहले तो आप दर्द में रहेंगे फुल टाइम जब तक आपकी वो थॉट है, और वो आपके रिलेशनशिप में आपके पेरेंट्स के साथ वो तो निकल ही आएगा सारा बाहर, मैंने आपके लिए क्या क्या किया. यू नो, एक दिन भी जब सामने वाला जिसके लिए आपने वो किया,
0: उसने अगर कुछ गलत किया, हाँ,
1: exactly.
0: क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी ज्यादा हो जाती है,
1: स्पेशली अगर मैंने आपके लिए कुछ कर दिया ये सोच करके मैंने आपके लिए किया, देन आई विल ऑल्सो एक्सपेक्ट के
0: आप वही
1: आप में, एंड अगर आपने फिर नहीं किया, मैंने कहा मैंने आपके लिए क्या क्या किया, और मेरी लिस्ट तो यहाँ टॉप ऑफ द स्क्रीन पे हमेशा रेडी होती है कि मैंने आपके लिए क्या क्या क्या क्या किया, आपने क्या किया. दिस थिंग बिकम्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड इट्स नो मोर अ रिलेशनशिप. फिर वो बहुत दर्द में रहेंगे, तो खुद भी दर्द में रहेंगे, पेरेंट्स के साथ जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो भी दर्द में है, जिस भी प्रोफेशन या जिस भी रिश्ते में जुड़े वहां भी दर्द है, और ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि पेरेंट्स को खुशी देने खुशी दे पाएंगे, इतना दर्द क्रिएट करके खुशी दे पाएंगे नहीं. तो टाइम लो, अपने आप से बात करो, समझाओ, जब तक वो चीज मेरी
0: अपनी
1: नहीं हो जाती. आपको खुशी देने के लिए भी अगर मैंने किया तो मैंने किया क्योंकि मैं खुशी वो दिन, देन इट्स ओनली मी माय डिसीशन, अदरवाइज आई वुड फील माइट एज वेल नॉट डू इट. ऐसे करने का कोई फायदा नहीं रहेगा जो पूरा टाइम ये माइंड पर चलता रहेगा, आपके लिए किया, आपके लिए किया, आपके लिए किया, वो दर्द क्रिएट करने वाला है. तो ये जो एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं और एक्सपेक्टेशंस मीट करने की प्रयास में जो सारा दिन लगे हुए हैं, ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ऊपर नीचे करता रहता है. तो एक एक्सपेक्टेशंस भले रखो कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरी खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है. उससे क्या होगा, आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे लेकिन अगर वो पूरी नहीं हो पाई
0: तो दैट्स ओके,
1: आप हर्ट नहीं होंगे. सारा रिएक्शन कब आता है, जब हम हर्ट हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशन तो साइड पर हो जाती है, लेकिन मैं हर्ट हो गई तब मैं रिएक्ट करती हूँ. हर्ट नहीं अगर हुई तो रिएक्ट नहीं करूंगी, रिएक्ट नहीं करूंगी तो आपको इम्पावर कर सकूंगी कि आप वो कर लेंगे. यू नो, बच्चे को 90% नहीं मिला, लेकिन अगर मैं हर्ट नहीं हुई, गुस्सा नहीं किया, एंड आई गिव दैट लव एंड एक्सेप्टेंस, वो अगली बार और बेटर परफॉर्म कर लेगा. लेकिन मैं, यू डिड नॉट लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारे ऊपर मेहनत हम इसलिए इतनी करते हैं, ऑल दिस वोकैबुलरी विल ब्रिंग यू डाउन. एनीथिंग विच ब्रिंग्स मी डाउन, नेक्स्ट इट विल ब्रिंग यू डाउन, एंड देन इट्स एनर्जी ऑफ पेन.
0: Wonderful. Somewhere it's unexpected to really understand what we have been expecting. बहुत बार हम कहते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि हमारी expectations कितनी high होती हैं और हमारे से जो expectations हैं उन्हें meet करने के लिए हम कितने तत्पर रहते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई बात मन में उठ रही है, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आने वाली कड़ियों में कुछ और बातें करेंगे. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आपका स्वागत करते हैं। हंसी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन अक्सर होता ये है कि ये मुस्कुराहट सिर्फ ऊपर तक रह जाती है, हंसी सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आती है और जिंदगी क्रोध से भरी रह जाती है। क्यों आता है क्रोध, ये हमने जाना। क्रोध हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो गुस्सा जिसे हम जायज मानते आए थे आज तक, वो कहीं ना कहीं हमें ही डिप्लीट कर रहा था, हमारी ही जिंदगी में मुश्किलें क्रिएट कर रहा था। जब ये जान लिया, तब अभी ये जानना भी बाकी है कि कितनी तरह के क्रोध होते हैं, क्या कुछ उनमें जुड़ा होता है और उसे दूर कैसे किया जा सकता है। ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये हमारे ही हाथ में है। अगर हमारे ही हाथ में है तो फिर तरीका जरूर जानना चाहिए। और इस पर बातचीत करने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब हम ओम शांति कहते हैं या ये मुस्कुराते हुए यूं दिखते हैं, तो सचमुच आज जब अपने आसपास लोगों से मिलते हैं, वो क्षणिक मुस्कुराहट, क्षणिक जो हंसी है, जो एक हम जिसे हम सचमुच में आनंद और सुख की बात करते हैं, वो इतनी क्षणिक ही रह जाती है और गुस्से को ही जिंदगी मान लेते हैं कि वही सच है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि गुस्सा जो है वो हमें कहीं ना कहीं बहुत अनहेल्दी जिंदगी की तरफ लेकर जा रहा है और उससे निवारण, उससे दूर होना जरूरी है। तरीके देखते हैं कि कितनी तरह के गुस्से जो है, या क्रोध जिसे हम कहते हैं एंगर, वो एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे।
1: अगर हम

0: देर लगा रहा है लॉग ऑन होने में, एंड यू विल गो लाइक क्या हो रहा है, कितनी देर लग रही है. नाउ दिस इज इरिटेशन, नॉट इन योर कंट्रोल, बट वी विल गेट इरिटेटेड. हम खड़े हैं ट्रैफिक में, जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है, आगे गाड़ी चल रही है जो अननेसेसरी धीरे जा रही है, और आपको रास्ता भी नहीं मिल रहा जाने के लिए. इरिटेशन, क्या कर रहा है, जल्दी चला या साइड ठीक करो. यू नो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इरिटेट करती रहती हैं. you know, आप मीटिंग में बैठे हैं, कुछ लोगों की आदत है वो ऐसे ही करते रहेंगे, दूसरे लोग कोई उससे इरिटेट हो जाता. कई बार होता है कि आप, जैसे हम लोगों के साथ होता है कि हम किसी वर्कशॉप में जाते हैं तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन ऑफ कीजिए. यू नो, देयर वाज दिस ब्रदर एंड वो हमेशा, मतलब गुस्सा नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते हैं इनफैक्ट, लेकिन जैसे होता है ना, किसी के लिए कोई चीज एक ट्रिगर हो जाती है, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था कि जब हमने वर्कशॉप में कह दिया कि आप फोन अपना ऑफ कर दीजिए, लेकिन क्यों हमेशा हर एक वर्कशॉप में कोई एक ना एक ऐसा जरूर होता जो बजेगा जरूर. अब दिस इज इरिटेशन एंड इट यूज्ड टू जस्ट यू नो ट्रिगर हिम एंड समवेयर उसकी पूरे उसके अंदर चलते चलते उनके फेस पर आ जाता था कि यू नो आई हैव नॉट लाइक्ड दिस थिंग. तो हर एक के लिए डिफरेंट ट्रिगर्स हो सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं. और सारा दिन जो यू नो, जैसे किसी को सफाई पसंद है, अब वो किसी और के घर जाएंगे जहाँ उतनी सफाई नहीं है जितनी उनके घर में होती है, तो छोटी छोटी बात इरिटेट करेगी. हस्बैंड एंड वाइफ में आप अपने सामान उठा के रखो, आप अपने जूते उठा के रखो, तो सारा दिन में अगर हम इरिटेशन की परसेंटेज देखें, इट्स मोर और लेस वेरी फ्रीक्वेंट. अब इसको क्या करें, हाउ डू आई एक्सेप्ट, आई विल हैव टू एक्सेप्ट that everything is moving at its own speed. Let it be. Why am I letting it overpower me? At every step, I will have to look for a solution. क्योंकि ये जो irritation के steps होती है ना, ये बहुत often है. जैसे ये भाई का मैंने बताया जो mobile phone का, तो वो कहते हैं मैं सोचता रहा कि मैं हर time irritate हो रहा हूँ. And workshop में almost हर दो दिन में एक workshop करा रहा हूँ. And हर वर्कशॉप में डिफरेंट लोग हैं, तो कितना भी आप बोल दो इट्स ऑफ नो यूज, क्योंकि एवरी टाइम यू विल हैव एटलीस्ट वन. सो यू रियली कांट डू एनीथिंग अबाउट चेंजिंग पीपल और कंट्रोलिंग पीपल, सो इट्स ऑन यू. सो व्हाट ही डिड, ही जस्ट चेंज्ड दिस थिंग इनसाइड. इट वाज जस्ट अ शिफ्ट दैट यू हैव टू मेक. इट्स जस्ट वन थॉट कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इरिटेटेड विद दैट मोबाइल रिंगिंग, आई विल स्टार्ट एंजॉयिंग द मोबाइल म्यूजिक. He's saying हर वर्कशॉप में डिफरेंट लोग डिफरेंट ट्यून, तो he's saying जब वो बजता है, and I actually saw him doing it, कि जब किसी का भी बज जाता था बीच में, he used to just stop very politely and बैठकर he said okay let's listen to the tune and then say thank you to that person for the wonderful music and then continue. And slowly, initially उनको forcefully करना पड़ा, अंदर से फिर भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन एक अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिनको हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्शियसली वो एक्सेप्टेंस डालनी पड़ेगी. इट्स ओके, द होल वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू मूव अकॉर्डिंग टू माई डिजायर, सो आई विल हैव टू एक्सेप्ट देम. कई बार यू नो, गाड़ी ड्राइव करते करते कुछ लोग होंगे हर एक पर गुस्सा करेंगे, जो उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी उन तक, तो एक्चुअली गुस्सा किसको कर रहे हैं, क्या कर रहा है, कैसे चला रहा है, ऐसे क्यों नहीं करता, ऐसे तो गुस्सा किसको कर रहे
1: हैं एक्चुअली,
0: कितनी कितनी अपने ऊपर नुकसान बार बार, क्योंकि आप एक घंटा ट्रैफिक में है, तो एक घंटे में आप कितनी बार इरिटेट हुए. तो इरिटेशन को हमेशा उसी स्टेज पर फटाफट से पकड़ लेना चाहिए, एंड यू नो डोंट लेट इट.
1: इनफैक्ट अगर इरिटेशन की बात करें सर शिवानी, तो इरिटेशन को तो हम इतना सहज मानते हैं. अभी तो हमने एंगर वो कर रहे थे जो बर्स्ट होता है, जो कि लास्ट स्टेज होती है शायद, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज इरिटेशन को तो हम मान के चल रहे हैं. जिस तरह के जो एग्जांपल्स आप हम बात कर रहे हैं, वो तो हम मानते ही हैं कि इट्स जस्टिफाइड.
0: बट देन दैट विल गेट मी इनटू द हैबिट.
1: डेफिनेटली, बट देन समवेयर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली.
0: एब्सोल्युटली. You can't start from there. आपको स्टार्ट यहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे ट्रिगर्स को फिनिश करेंगे तब तो जाके बड़ा वाला ट्रिगर वर्क नहीं करेगा. इरिटेशन के आगे नेक्स्ट लेवल पर हम पहुंचते हैं तो फ्रस्ट्रेशन, कि मैंने जो किसी को काम दिया उसने उस तरह से नहीं किया, या मैं जिस तरह से चाहता था उस तरह से नहीं हुआ, किसी को मैं बदलने की तब से कोशिश कर रहा हूँ वो बदलता ही नहीं है व्यक्ति. फ्रस्ट्रेशन, और वो फ्रस्ट्रेशन बहुत अंदर जैसे बिल्डअप हो जाती है. अगेन वी विल हैव टू गो टू एक्सेप्टेंस. हर स्टेप पे अगर हम देखें देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन,

0: एक्सेप्टेंस, स्वीकार करें. एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं वो राइट है मेरे हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी, लेकिन मुझे एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आपको फिर भी. तो आई एक्सेप्ट यू कि आप जैसे हैं, इट्स ओके, बिकॉज इफ आई रिजेक्ट यू तो दैट्स नेगेटिव
1: रिलेशनशिप ही ब्रेक
0: आप दूर चले जाते हैं. तो पहले एक्सेप्ट करना, कई लोग कहते हैं एक्सेप्ट मतलब वो सही है, पर वो तो है ही गलत. पहली बात, सही एंड गलत वी आर नॉट डिसाइडिंग, लेकिन अगर आपका ओपिनियन मेरे से डिफरेंट है लेकिन फिर भी मुझे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके काम करने के तरीके को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको एक्सेप्ट करने के बाद आई कैन शेयर विद यू कि प्रोबेबली दिस इज व्हाट आई फील यू कुड हैव डन, यू नो, आप इस तरह से कर सकते हैं. लेकिन एक्सेप्ट करने से आपको पॉजिटिव एनर्जी दी, आप मेरे नजदीक आए, तब तो मेरी आगे की कोई एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालेगी. अगर आप दूर चले गए, नथिंग वर्क्स. तो एक्सेप्ट करके फिर लोगों के साथ काम करना. और तीसरा होता है कि किसी ने मेरे साथ गलत किया, या किसी ने मेरी, मैं समझती हूँ किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी, तो वो एक अंदर पकड़ के रखना,
1: हर्ट
0: कहे या ग्रज, यू नो, मैं होल्ड कर लेती हूँ एंड आई कैन होल्ड दिस फॉर,
1: मेरे साथ गलत किया गया है,
0: अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. जैसे कि ऑफिस में मेरे साथ गलत हो गया, या इवन आजकल हम देखते हैं कई बार बच्चे फील करते हैं पेरेंट्स ने हमारे साथ ठीक नहीं,
1: एंड देन यू लैश, वांट टू लैश आउट, यू नो, समवेयर, कहीं आगे चल
0: के, यू कांट डू इट ओवर देयर, तो वो कहीं और निकलता है. लेकिन वो ग्रज बन के मेरे अंदर डीप रूटेड सालों साल रहता है, और इट्स लाइक वेस्ट, इट्स नेगेटिविटी, इट्स टॉक्सिन, जिसको मैंने सालों साल पकड़ के रखा है. तो आप समझिए कि डैमेज कितना हो रहा है. तो वो रिजेंटमेंट, यू नो, अंदर ही अंदर, और वो जितना टाइम रहती है उतना वो और स्ट्रॉन्ग होती जाती है. तो उसके लिए हमारी जो रियलाइजेशन, हमें अपने आप को जो समझाना होगा, नोबडी कैन डू एनीथिंग रॉन्ग टू मी, नोबडी कैन हर्ट मी, नोबडी कैन इंसल्ट मी, ये हमें पता है. तो इसको अभी इस समय हमें यूज करना पड़ेगा. उन्होंने जो किया वो उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया. मुझे हर्ट कौन कर रहा है?
1: मैं खुद.
0: और कितने साल से हर्ट कर रहा हूँ. उन्होंने एक बार कह दिया, पूरा किया, और मैं कितने साल से अंदर पकड़ के रखा है. आई मेट समबडी रिसेंटली, बहुत साल पहले उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया था, उन्होंने उसके व्यक्ति के साथ कनेक्शन पूरा तोड़ दिया, और कहने लगे कि मेरी उनके साथ कोई बोलचाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कुछ गलत हो जाए, तब मुझे कुछ
1: शांति मिलेगी, supposedly.
0: रिवेंज. तो वो क्या हुआ, कहते सारा दिन मेरे माइंड में ये रहता है कि मेरा उनके साथ कुछ गलत हो जाए, उनको ही कुछ हो जाए, क्योंकि शायद उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा नुकसान किया था. आई सेड, आप कह तो रहे हैं कि आपने कनेक्शन तोड़ दिया, बट एक्चुअली तो सारा दिन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हुआ है. कनेक्शन तो उस दिन टूटेगा जिस दिन आपको उस व्यक्ति की याद,
1: आपकी याद तो पूरा वक्त हो,
0: पूरा टाइम है. अब वो व्यक्ति नुकसान नहीं कर रहा आपका, अब आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं. एक्चुअली बहुत ज्यादा दूसरे लोग हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकते, वो जो करते हैं वो करते हैं. अब उसी परिस्थिति को कोई और बहुत हल्के रूप से लेके जा सकता है. तो ग्रज और रिजेंटमेंट हम अपने अंदर पकड़ कर रखते हैं, एंड द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंगर जो होता है वो है नफरत,
1: हेट.
0: कि किसी ने, जो हम कहेंगे कि किसी ने पाप किया है, या किसी ने, यू नो, इट्स अ क्राइम, या इविल, या उस तरह का लेबल अगर हम किसी को दे देते हैं, मेरी उनके प्रति जो भावना उत्पन्न होती है, दैट इज हेट. आई हेट एब्सोल्युटली, यू नो, दैट इज द डीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंगर, एंड दैट इज समथिंग विच टेक्स वेरी लॉन्ग टू ओवरकम. प्रोबेबली, यू नो, पीपल से आई विल हेट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, यू नो, पहले से ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इस पूरी जीवन में अब मेरा आपके प्रति कुछ परिवर्तन होना.
1: और वो नफरत रखते हैं, कंटिन्यूस रहती है वो, अगर कहीं खत्म हो रही होती है तो उसे फिर रिवाइव कर लेते हैं कि वो नफरत की ज्वाला जलती रहे.
0: यस, वी कीप इट बर्निंग, क्योंकि हम कहते हैं वो जो मेरी रिवेंज की भावना है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, यू नो, अपने अंदर उसको ट्रिगर करते
1: रहते हैं, उसे अपने जीने का मकसद बना लेते हैं कि दिस अमेजिंग जीने का मकसद.
0: यस, एंड द नेगेटिव एनर्जी को हम अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं. हम ये नहीं समझ पाते कि दूसरे ने जो किया, भले हम समझ गए कि वो रॉन्ग है, लेकिन उसने क्यों किया, उसके पीछे भी शायद कुछ रीजन था. दैट पर्सन ऑल्सो इज प्रोबेबली गोइंग थ्रू अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इवन इफ इट्स अ क्राइम और व्हाटएवर, दैट सोल ऑल्सो रिक्वायर्स एम्पथी, रिक्वायर्स कंपैशन, सहानुभूति चाहिए, समझने की कोशिश चाहिए. लेकिन नफरत इतनी जब भेज देते हैं उस आत्मा की तरफ, तो उस आत्मा की ऑलरेडी डिप्लीटेड स्टेज है और उसको चारों तरफ से इतनी नफरत मिलती, तो वो और भी ज्यादा.
1: अगेन एक बार हमने पहले भी बात की थी जैसे शिवानी क्राइम विक्टिम्स की, उनके साथ जो नफरत जुड़ी होती है कि जब वो क्राइम का एक हिस्सा बन जाते हैं, विक्टिम्स जो होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो, और वो नफरत वो उससे पार पाना बहुत मुश्किल हो जाता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो और वो जस्टिफाइड भी लगती है,
0: जस्टिफाइड लगता है, बट एक्चुअली नहीं है, क्योंकि जिसने वो किया है वो खुद ही एक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है. या तो कोई चाइल्डहुड की कोई उसकी प्रॉब्लम होगी, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण उसने ऐसा स्टेप उठाया. तो उसको हमारी मदद की जरूरत है, कंपैशन की जरूरत है, नफरत की नहीं. और उसको नफरत देने के लिए पहले,
1: अगेन वही बात है, उसको किसी चीज की जरूरत है या नहीं, लेकिन पहले हम वो सब कुछ अपने, एक्चुअली दिस इज समथिंग विच वी नीड टू रब इन, बिकॉज अगेन हम बहुत ये बनते हैं कि हम तो दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम अपने लिए इतना बड़ा नुकसान कर पाए. और कभी मुझे लगता है हम में से कोई नहीं सोचता कि ये सारी जो बातें आज हमने की हैं, इरिटेशन से लेकर नफरत तक का ये जो सफर है, जो गुस्से का इतने रूप देखे हैं, वो सब हमें तंग कर रहे हैं.
0: और सारा दिन की यात्रा में देखें तो कभी किसी से इरिटेट हो रहे हैं, किसी से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, किसी पे गुस्सा आ रहा है, किसी से नफरत हो रही है, लेकिन वो एक एक से हो रही है और वो सारी मेरे अंदर. तो मेरे अंदर क्या हो गया होगा यहाँ पे, व्हाट एम आई कैरिंग, वो बैगेज क्या है. तो वो इतना भारी बैगेज कैरी करेंगे तो शांति, प्रेम, ये तो फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा ना, ये तो वर्ड्स ही रह जाएंगे. इसीलिए आज इन शब्दों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि जहाँ इतना बड़ा टोकरा भरा हुआ है तो ये कैसे अनुभव होगा.
1: ये मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहती थी, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शक भी ये कहना चाहते हैं कि हम ये बात समझ तो लेते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई कीप ऑन सेइंग इट टू मी एवरी डे हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, यू नो दैट आई एम अ पावरफुल सोल, लेकिन मैं वो अनुभव नहीं करती. I am a loving soul, you know. लेकिन मैं वो प्यार को अनुभव नहीं करती. आप कितनी बार हम ये बात करते हैं कि प्यार हमें, हम प्यार से भरे हुए हैं, हमें प्यार देना चाहिए, लेकिन we don't feel that way.
0: Because this is filled, you know. तो इसको भी तो साथ साथ
1: निकाल.
0: See, आप मॉर्निंग में जैसे आपने कहा, आप उठकर कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल, एंड सारा दिन में तो वो थोड़ी देर 10 मिनट तो क्रिएट किया एनर्जी, लेकिन सारा दिन में इतना इतना इतना अक्यूमुलेट किया. एंड एक्चुअल वास्तविकता ये है कि अगर सारा दिन मन की स्थिति ऐसी थी, इरिटेशन, एंगर, तो मॉर्निंग में जब बैठेंगे भी तो आई एम अ पीसफुल सोल सिर्फ शब्द होंगे. आप अनुभव बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि मॉर्निंग का मेडिटेशन का अनुभव विल बी लार्जली बेस्ड ऑन कल का सारा दिन कैसा बीता था. इसलिए मेडिटेशन, इसलिए हम कहते हैं राजयोग सिर्फ 10 मिनट या आधे घंटे की मेडिटेशन नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल. अगर आप आत्म अनुभूति करना चाहते हैं, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, यू हैव टू कीप अटेंशन द होल डे, क्योंकि प्यार का सागर और नफरत की इतनी बड़ी टोकरी, ये इकट्ठे नहीं बैठ सकते together. So if you want God to be there with you, I will have to gradually pay attention on removing these. Both cannot live together. Then it's natural. फिर उसको एक्सपीरियंस करना बहुत इजी हो जाता है.
1: सिस्टर शिवानी भी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि ये एंगर जो है किस तरह से हमें उस प्यार के सागर से भी दूर रख रहा है, और दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. अब समय है कि उस सफर पर चले कि हम इससे दूर कैसे होंगे.
0: सबसे पहले चीज जो जैसे हमने देखी, कुछ एक स्टेप्स को हम फॉलो करते जाएं. सबसे पहले अवेयरनेस, अगेन अवेयरनेस के जैसे ही वो इरिटेशन ट्रिगर हो, आई नीड टू बिकम अवेयर, जागृता हो आ रहा है. वो अवेयरनेस आ जानी चाहिए. ये ना हो कि वो चल रहा है एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, यू नो गाड़ी आगे चल रही है, मुझे इरिटेशन हो रही है एंड आई एम नॉट अवेयर. इमिजिएटली स्टॉप, अवेयर कि हाँ ये शुरू हो रहा है. तो उसकी जागृता अंदर आने जाए कि कौन कौन सी चीजें सारा दिन के अंदर मेरे अंदर ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है. जैसे ही वो इरिटेशन क्रिएट होनी शुरू होती है, दूसरी चीज है अक्नॉलेज कर लेना, स्वीकार करना कि यस ये इरिटेशन है, लेकिन अक्नॉलेज करना कि इसका जिम्मेवार
1: मैं खुद.
0: अभी तक था क्यों नहीं गाड़ी ठीक से चल रही है, क्यों नहीं कंप्यूटर ऑन हो रहा, तो अभी तक उंगली वहां थी, अभी यस इरिटेशन क्रिएट हो रही है, इसका जिम्मेवार मैं हूं. लेकिन इसका जिम्मेवार मैं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि खुद से ही इरिटेट होने लग जाए कि यू नो व्हाई एम आई गेटिंग इरिटेटेड. जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट्स इन माय कंट्रोल. इफ आई वांट आई कैन स्विच इट ऑफ राइट नाउ. सो सेकंड इज जस्ट अक्नॉलेज कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेवारी है. और तीसरा एक्सेप्ट कर ले, यस आई एम इरिटेटेड राइट नाउ. स्टार्ट टॉकिंग टू दैट इरिटेशन, यू नो दैट इज वॉचिंग द माइंड. अपने मन को देखना शुरू करना कि हाँ इरिटेशन क्रिएट हो रही है, ये मेरी क्रिएशन है, मैं क्रिएटर हूँ, इरिटेशन मेरी क्रिएशन है, मैं इसकी रचना कर रही हूँ इस टाइम. तो उसको स्वीकार करना शुरू करें, और स्वीकार करने के बाद अब उससे ऊपर उठना शुरू करें, असेंट. असेंट अर्थात उससे डिटैच हो जाए कि ये मैं नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं हूं, गुस्सा मेरी क्रिएशन है सेपरेट. तो यहां कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस में गुस्सा नहीं है, मैं आत्मा इस समय ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हूं. ठीक है, तो उस डिस्टर्बेंस से या उस इरिटेशन से साक्षी हो जाए, मतलब जैसे कि उसको देखना शुरू कर दे ये इरिटेशन है. जैसे ही हम अपने इमोशन को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, वो इमोशन खत्म हो जाती है. क्यों? क्योंकि अभी वो इमोशन है, अभी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, अभी और ही हम उसमें एनग्रोस्ड हो
1: जी रहे हैं.
0: हाँ, क्यों नहीं होना ही चाहिए. तो क्या हो रहा है, हम उस इमोशन को और एनर्जी दे रहे हैं, वी आर एडिंग फ्यूल टू दैट. करना ही चाहिए, क्यों नहीं किया उसने, ऐसा क्यों नहीं किया. तो आई एम एडिंग फ्यूल टू द एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंस, तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ती जाएगी. इफ द अदर ऑप्शन, हम साक्षी हो जाएं कि हाँ मैं इरिटेट हो रही हूँ, अब मैं साक्षी होकर उसको देखना शुरू कर दूं क्या हो रहा है मेरे अंदर, तो जैसे ही मैं एनर्जी को विड्रॉ करूंगी तो वो इमोशन के अंदर से एनर्जी जो विड्रॉ हो जाएगी, इमोशन फिनिश्ड,
1: इन्वॉल्वमेंट खत्म होकर
0: डिटैचमेंट बेसिकली विड्रॉन द एनर्जी फ्रॉम इट. अभी तक हम एनर्जी उसको दे रहे थे तो वो और भी ज्यादा,
1: क्योंकि we felt it's justified,
0: तो वो डिस्टर्बेंस बढ़ती जा रही थी. अब हम डिटैच हो जाएंगे, दिस इज नॉट मी, दिस इज माई क्रिएशन, आई एम क्रिएटिंग इट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी जिम्मेवारी है, लेट मी लुक एट इट. उसको देखना शुरू करे, फील इट, यस इट्स देयर. एनर्जी को विदड्रॉ कर दे, जैसे विदड्रॉ किया जस्ट ट्राई इट इवन वंस. आप एक बार करके देखे, साक्षी हो जाए कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दिखाई देता, साक्षी हो जाए, इट विल फिनिश. एंड फिर फिफ्थ स्टेज, इमिजिएटली कम टू द सेंटर, मैं कौन, इरिटेशन थी, आई, मैंने क्रिएट की थी, मेरी जिम्मेवारी थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं उससे साक्षी हो गई, तो वो इरिटेशन धीरे से खत्म हो गई. अब मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा मैं कौन. आई एम अ पीसफुल सोल.
1: In fact, I'm a powerful soul also. Today I proved it.
0: Yes, I could overcome.
1: And then it means I could experience it. Yes. Actually, you know, see, saying it actually doesn't make a difference, but experiencing it, yes. You know, this is an experience, yes. Actually.
0: It will be, because एक बार भी आप करके देखो इसको आराम से, and you will be able to experience it. And फिर आप एक मिनट के लिए एकदम वो silence की स्थिति में जाओ, and you know, bring yourself back to मैं कौन. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैंने करके दिखाया. एंड एक बार जो मैंने करके दिखाया, आई कैन डू इट एवरी टाइम नाउ. तो ये कुछ एक स्टेजेस से गुजरिए, अवेयरनेस में लाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए, अक्नोलेज कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, स्वीकार कर लीजिए, फिर उससे डिटैच हो जाइए, तो वो इमोशन धीरे से खत्म हो जाएगा, और फिर उस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए कि मैं कौन, एंड यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल स्टेज. अब क्या हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि इमीडिएटली जब नेक्स्ट टाइम गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रही है, आई विल बी एबल टू डू ऑल दिस. इवन इफ आई एम एबल टू डू द फर्स्ट स्टेप कि अवेयरनेस कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, इवन इफ आई एम एबल टू डू वन मोर स्टेप कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, चेंज किसको होना पड़ेगा, मुझे चेंज होना पड़ेगा. फिर शाम को बैठकर जब हम अपना चेकिंग करते हैं, लेट मी लुक एट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट कि वो जो हुआ था उसमें क्या मैं कर सकती थी, क्या मेरी जिम्मेवारी थी, हाउ कुड हैव आई चेंज। तो वो जो रीचेकिंग होती है वो कल के लिए मुझे बहुत मदद करती है।
1: वही जो हमने आपने कहा था कि कौन सा बिलीफ था।
0: एब्सोल्युटली, दैट तो आई हैव टू फाइंड आउट कि वो कौन सा बिलीफ था, क्योंकि फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। तो ये सारा दिन में हमें कुछ एक अपने ऊपर अटेंशन थोड़ा सा रखना पड़ेगा। कुछ हो गई है बातें, एक्सेप्ट करो। लोग कुछ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करके

0: फिर उनको इंस्पायर करो चेंज होने के लिए. एक्सेप्ट कर लो, देन आस्क देम कि नॉट लाइक दिस, लाइक दिस. पास्ट में जो हो गया हो गया, बीत गया. पास्ट पर बहुत ज्यादा मंथन नहीं करना चाहिए. आने वाला, वर्तमान. अगर पास्ट पर मनन करेंगे तो एनर्जी चली जाती है, तो उससे मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर अफेक्ट हो जाता है. तो हम अपने फोकस को पास्ट से हटा के प्रेजेंट और फ्यूचर में शिफ्ट कर दें कि अब क्या करना है. ठीक है, वो गलत हो गया, फाइन. अब क्या, तो अब क्या करना है उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए ना. लेकिन वो गुस्सा करने में इतनी एनर्जी निकल जाती है कि ये अगला वाला भी खराब हो जाता.
1: एक्चुअली पास्ट पे हम मनन कभी नहीं करते, पास्ट पे हम नाराज रहते हैं या बैगेज लेके रखते हैं. हम वी कैरी दैट बैगेज,
0: दैट एनर्जी. इट्स जस्ट गोइंग, इट्स जस्ट गोइंग एवरी टाइम, वेस्ट होता जाता है.
1: अच्छा, यहाँ से शिवानी, जब हम इरिटेशन की बात कर रहे हैं, अगेन दो जितने भी इंसिडेंसेस हमने लिए, वो इरिटेशन के लेवल पे रहती है तो थोड़ी लो होती है, अपने अंदर ही चल रही होती है. सो वो ये सारे स्टेप्स से गुजरना आसान है. जहाँ वो बस्ट आउट तक की फीलिंग आती है, बाकी जो और तरह के हैं एंगर्स की हमने बात की है, वहाँ ऑलमोस्ट हमारे कंट्रोल के बाहर जा चुका होता है. वहाँ फिर इन स्टेप्स से
0: वहाँ पे भी ये स्टेप्स को बाद में एक बार कर लीजिए, क्योंकि अभी हम इमिजिएटली उस यात्रा पर चल रहे हैं. लेकिन पहले आई शुड बी कन्विंस्ड कि एंगर मेरे लिए अच्छा नहीं है, एंगर मेरी अपनी क्रिएशन है, इसको मैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने से फिनिश कर देती हूँ. अब जब गुस्सा आएगा कभी, तब वो स्टेप्स को फॉलो कीजिए. क्या हुआ था, व्हाट वाज द क्रिएशन, मेरा कौन सा बिलीफ सिस्टम था, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया कि वो था, मैंने क्यों क्रिएट किया, व्हाट वाज माय बिलीफ सिस्टम दैट टाइम, देन डिटैच फ्रॉम दैट. व्हेन विल आई बी एबल टू डिटैच फ्रॉम दैट, राइट नाउ आफ्टर द सिचुएशन, क्योंकि अभी मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है कि मैं सिचुएशन के टाइम पे कर सकूं. लेकिन सपोज मैंने अभी आप पे गुस्सा कर दिया, अभी तो कर दिया, अभी क्या होता है, गुस्सा करने के बाद भी बहुत देर अंदर तो गुस्सा चलता रहता है, इट डजंट फिनिश ऑफ इन दोस 10 मिनट्स. तो अभी एटलीस्ट मैं वो 5 स्टेप्स को तब यूज कर लू कि मैं अपनी सफरिंग क्रिएट, यू नो, सेल्फ काउंसलिंग, बहुत सेल्फ काउंसलिंग उस टाइम चाहिए कि मैं अपनी सफरिंग, अपनी भोगना क्रिएट कर रही हूँ कितनी देर के लिए. सोचे जा रही हूँ मैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ. कैन आई कंट्रोल देम? नो. क्यों कर रही हूँ? Why am I trying to do something जो possible नहीं है? बीत गया, मैं उसको चेंज करने की कोशिश. Talk, talk, talk to yourself. Keep on bringing your focus back कि past से हटा के present. And then अपनी programming कि next, next जब ऐसे होने वाला है, how am I going to be prepared? मैं अपने कौन से belief systems को change करने के लिए ready हूँ? Am I taking the responsibility कि anger normal नहीं है? एंगर हेल्दी नहीं है, एंगर से काम नहीं होता है, प्यार से काम हो सकता है,
1: एंगर मुझे पावर नहीं देता है, एंगर मुझे सेवियर नहीं है.
0: एम आई रेडी टू वर्क ऑन दोज बिलीफ सिस्टम्स? बिलीफ सिस्टम भी अगर चेंज हो गया ना, नेक्स्ट टाइम यू आर चेंज्ड, एब्सोल्युटली चेंज्ड. एंड फिर मेडिटेशन तो है ही, मेडिटेशन रोज करते हैं और हर एक घंटे के बाद एक एक मिनट के लिए करते हैं, तो वो अवेयरनेस, ये जो इस तरह से गुस्सा आने वाली बात है, ये नेचुरली अगर आएगा नहीं, इफ यू आर स्टॉपिंग आफ्टर एवरी वन आवर फॉर 1 मिनट, बिकॉज यू आर ऑन दैट जर्नी, देन सो इट विल गो वेरी स्लो.
1: बिल्कुल. और सिस्टर शिवानी, एक बात मैं और जानना चाहूंगा कि चाहूंगी कि गुस्सा की जो हम बात कर रहे हैं वो एक नेगेटिव एक इमोशन है, क्योंकि हम अगेन पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन की बात करते आ रहे हैं, लेकिन इमोशन इटसेल्फ मींस डिस्टर्बेंस. तो ये हर तरह के इमोशन में आपके ये स्टेप्स काम हो सकते हैं.
0: Absolutely.
1: जहां अवेयरनेस क्रिएट हुई, देन यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग एंड यू नो एंड देन
0: टेंशन, एंग्जायटी, वरी,
1: फियर, हर्ट, एक्चुअली ये सारे जो इमोशंस कहीं ना कहीं कर सकती हैं. दैट्स वंडरफुल एक्चुअली एसएसएस शिवानी, थैंक यू सो मच. जो आज एक बहुत क्लैरिटी से, क्योंकि हर बार एक सिचुएशन क्रिएट कर देना और ये कहना कि जिसे हम सही मान रहे थे वो गलत है, और उसके बाद हम सही की तरफ ना जा पाए इन सहज तरीकों से, तो फिर वो एक और कॉन्फ्लिक्ट तैयार करता है. तो ये आज आपने बहुत क्लियरली हमें बताया कि जब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि एंगर इज नॉट गुड फॉर मी, देन उसको मैं रिमूव भी कर सकती हूँ अपने सिस्टम से. और जो एक बार हमने पहले बात की थी कि कंप्लीट रिमूवल, थोड़ा थोड़ा गुस्सा अच्छा है, वो अगेन दैट इज नॉट टू बी यू नो केप्ट इन माय माइंड. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ओम शांति. एंगर को दूर करना, गुस्से को दूर करना, जिसे हम जिंदगी का सच मान बैठे हैं, हमारे अपने ही हाथ में है. एक बार फिर उस शक्ति का एहसास हमें हो जाता है जिससे हम भरपूर हैं. हमारी अपनी सही पहचान अब हमें हो चुकी है, अब जरूरत इस बात की है कि इसे सही तरह से अनुभव कर लें। जब हम कहते हैं कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ, या मैं एक पीसफुल सोल हूँ, या मैं एक शक्तिशाली पावरफुल सोल हूँ, तो कहीं ना कहीं कहने और अनुभव करने का जो फासला है उसे दूर करने में ये स्टेप्स काम आएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे इस कार्यक्रम में शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 09999344555, 09999344666, 09873666555, और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का अभिवादन। भारत भूमि पर अनेक वर्षों तक विदेशियों का आधिपत्य और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विफल होने के कई कारणों में से एक था भारतवासियों का विभिन्न जाति समुदाय और संप्रदायों में बटा होना। सन 1857 की क्रांति के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने इसे भली भांति समझा और विदेशी ताकतों से मुक्ति प्रयास के साथ ही देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन का भी संकल्प लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन में जातीय बंधन और अमीरी गरीबी के भेदभाव को दूर करने तथा दलित व पतित उद्धार के अनेक कार्य जहां स्वयं किए वहीं अपनी रचनाओं से भी इसे व्यक्त किया। वे कहती हैं कि ईश्वर जो सर्वोच्च है सर्वज्ञ है उसकी आराधना के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ निर्मल हृदय का समर्पण पर्याप्त है।

आजादी की पहली लड़ाई की प्रणेता महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के 47 साल बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म मानो उनके छोड़े हुए अधूरे काम को पूरा करने के लिए ही हुआ। तभी तो राष्ट्रभक्तों से जुड़े स्थल उन्हें खींचते थे, प्रेरित करते थे उन काव्य पंक्तियों के लिए जिन्हें लिखकर वे निर्भय हो जेल की यात्राएं करती और जिन्हें सुन और पढ़कर लोग भारत माता के बंधन दुगने जोश से खोलने को तत्पर होते थे। वे देश प्रेम में इस कदर डूबी थी कि प्रकृति के मनोरम दृश्यों में भी वे मातृभूमि के बलिदानियों का ही स्मरण करती थीं।

इसीलिए ऋतुराज वसंत के आगमन पर जहां अन्य कवि उसके स्वागत की रचनाएं लिखते, वहीं वसंत पंचमी को यह असार संसार छोड़ने वाली सुभद्रा जी की लेखनी उन लोगों की अनुभूतियों में डूबी हुई है जिन्होंने इस ऋतु में अपना सब कुछ खोया है या खोने की स्थिति में है। उनकी पहली रचना वीरों का कैसा हो वसंत, देश की रक्षा में जुटे वीरों की मनस्थिति पर सवाल करती है, तो दूसरी रचना जलियांवाले बाग में वसंत पाठकों और श्रोताओं को निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार से बारंबार रुलाती है। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, ये है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना।

0: मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार तापसी नागराज, संगीतकार तापसी श्रीधर नागराज, आलेख साधना उपाध्याय, उद्घोषणा मुरलीधर नागराज, कार्यक्रम परिकल्पना श्रीराम तिवारी की, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय।
1: आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से।

0: सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू, आप सच बोलेंगे। देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो कुनरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है स्वतंत्रता दिवस को। यह दिन हमें याद दिलाता है उन वीरों की कुर्बानियों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। आजादी केवल शब्द नहीं बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, ये गीत हमें उन शहीदों को याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र दिवस पर इस गीत की गुंज हमें यह एहसास कराती है कि आजादी केवल एक उपहार नहीं बल्कि बलिदान की अमूल्य धरोहर है। तो दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर और प्यारा गीत।

दोस्तों, इस मूल्यवान दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण होना बहुत ही जरूरी है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र संग्राम हो या महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन, हर संघर्ष ने हमें यह सिखाया है कि आजादी बलिदान से मिलती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे वीरों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान किया। यह इतिहास हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाएंगे। दोस्तों, अभी हमने संग्राम की गाथा को याद किया। 1857 का प्रथम संग्राम, महात्मा गांधी का सत्याग्रह,

भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु का बलिदान और नेताजी का आह्वान, इन सब ने हमें यह सिखाया है कि आजादी बलिदान से मिलती है। इसी भावना को सुरों में पिरोया गया है फिल्म हकीकत के उस अमर गीत में, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यह गीत हमें याद दिलाता है कि शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दी। हर बार जब यह गीत गुंजता है तो दिल में गर्व और आंखों में आंसू दोनों साथ आते हैं। तो दोस्तों सुनते हैं यह गीत।

तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अर्थ केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं है, यह है विचारों की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और समानता का संकल्प। आज हमें यह देखना है कि हम अपने देश को भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा से मुक्त करें। सच्ची आज़ादी वही है जब हर नागरिक खुशहाल और सुरक्षित जीवन जी सके। स्वतंत्रता हमें केवल अधिकार नहीं देती बल्कि यह हमें जिम्मेदारी भी सौंपती है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएं, अपने देश को प्रगति की ओर ले जाएं। इसी संदेश को सुरों में पिराया गया है फिल्म जागृति के इस प्रेरणादायी गीत में, जागो मोहन प्यारे, जागो मोहन प्यारे। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव नहीं है, यह उन वीरों की याद का दिन है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आजादी दिलाई। लता मंगेशकर जी का यह अमर गीत ए मेरे वतन के लोगों हर बार हमें रुला देता है। यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी आजादी शहीदों के रक्त से रंजित है, उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर स्वर में यह एहसास करता है कि आजादी की कीमत बहुत बड़ी है और हमें इसे संजो कर रखना है। आइए शहीदों को नमन करते हुए सुनते हैं हे मेरे वतन के लोगों ये गीत।

तो दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस हमें ये याद दिलाता है कि आजादी के साथ जिम्मेदारी जुड़ी है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और एकजुट बनाए। इसी जिम्मेदारी और संघर्ष की भावनाओं को सुरों में पिरोया गया है फिल्म जागृति के इस प्रेरणादायी गीत में। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। यह गीत हमें याद दिलाता है कि आजादी कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मिली है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता को संजोग और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित सौंपे। तो आइए सुनते हैं ये गीत, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के।

स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितने संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कर्तव्य भी सौंपे हैं। आइए सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने देश को स्वच्छ, सशक्त और एकजुट बनाएंगे। हर नागरिक का प्रयास ही भारत को महान बनाता है। आप सुन रहे थे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। सभी भारतवासियों को रेडियो पुनेरी आवाज की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी, तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड न्यूज स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: पुडेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: हुआ यूं के जब आप बात करती हैं तो कुछ होमवर्क मिलता है तो हम पढ़ने जाते हैं, पढ़ने भी जाते हैं, करने भी जाते हैं, उतने में आजकल ऐसी ही चीजें आ जाती है सामने। इट सेज ग्रोइंग अप मीन्स लर्निंग टू डिग बीनीथ सरफेस सरफेस बिहेवियर एंड डिसर्न द ट्रू मोटिव्स ऑफ अदर्स एंड डिसर्न द ट्रू मोटिव्स ऑफ अदर्स एंड टू रिस्पॉन्ड टू इंटेंट नॉट बिहेवियर।
2: कितनी प्यारी लाइन है। ग्रोइंग अप मीन्स मतलब आत्मा की मेच्योरिटी अगर बढ़े, आत्मा की शक्ति अगर बढ़ रही है तो उसका साइन क्या है कि व्यवहार को ऊपरी लेवल पर सिर्फ व्यवहार को नहीं देखना है, ना औरों के
1: बिहेवियर,
2: ना औरों के ना अपने। इट सेज अदर्स बिहेवियर बट द सेम थिंग इज एप्लीकेबल ऑल्सो टू अस, अपने लिए भी, कि सिर्फ ऊपरी लेयर को नहीं देखना है क्या बोला क्या किया, लेकिन गहराई में जाना है उसके कि इसके पीछे का
1: इंटेंट
2: क्या था, मोटिव क्या था, और जिसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं उसके पीछे का संस्कार कौन सा था,
1: भाव कौन सा था,
2: भावना कौन सी थी, संस्कार कौन सा था, ये करके फिर परखना है। सी, परखने की शक्ति इसलिए इतनी वैल्यूबल है ना, अगर हम किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखेंगे तो फिर शायद हम सही नहीं परखेंगे, और अगर सही नहीं परखेंगे तो सही निर्णय नहीं लेंगे। तो किसी भी चीज को परखने के लिए थोड़ा सा उसके तले में जाना है, गहराई में जाना है, ताकि हमारा निर्णय सही होना चाहिए। जैसे हम पिछली बार भी देख रहे थे कि इंट्यूशन पावर, परखने की शक्ति, वो आंतरिक आवाज हम सबने महसूस की है, हम सबने अनुभव की है, लेकिन ज्यादातर हमने वो आंतरिक आवाज, द इनर वॉइस, हमने बाहर की सिचुएशंस और दूसरे लोगों के लिए यूज की है, विच इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल, वेरी प्रेशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसी सिचुएशन में राइट जज कर पाना, डिसीशन ले पाना, किसी व्यक्ति को परख पाना कि व्यक्ति कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब इस परखने की शक्ति को और एक लेवल डीपर लेकर जाते हैं, एंड वो है अपने आप को परखना, अपनी सोच को परखना। एक है वो शक्ति को बाहर यूज करना, एक है उसी शक्ति को अंदर यूज करना, अपने एटीट्यूड्स को परखना, अपने बिलीफ सिस्टम्स को परखना, अपने संस्कारों को परखना। ये परखने की शक्ति अगर हम यूज करने लगे तो फिर जीवन में हम बहुत सारे डिसीशंस जो लेते हैं, एंड लाइक द कोटेशन सेड, कि आपका रिस्पांस चेंज हो जाएगा, फिर बहुत सारे हमारे द वे वी रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस एंड पीपल विल चेंज, अगर हमारी परखने की शक्ति सही होगी। स्पिरिचुअल स्टडी से पहले जिसको हम कहेंगे इग्नोरेंस, एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान, ज्ञान से पहले हमने कभी अपनी थॉट्स को नहीं परखा था कि ये सही है क्या, ये जो हम सोच रहे हैं कि सही है क्या। हमने लगा था जो हम सोच रहे हैं वो, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो थॉट्स तो आती जाती है। अब हमें समझ में आता है कि थॉट्स हमारी चॉइस है, अगर हम थोड़ा सा स्लो डाउन होके उनको परखें तो नेक्स्ट चीज जो हम कर सकेंगे हम उसको चेंज कर सकेंगे, लेकिन परखेंगे ही नहीं, चेक ही नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि राइट है या रॉन्ग है, तो चेंज का कॉन्सेप्ट थॉट लेवल पे इट नेवर वॉज देयर, इट वॉज ऑलवेज आउटसाइड। आज से थोड़ा सा हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। एम आई थिंकिंग राइट, आर दे डूइंग राइट, देखना बहुत ईजी है। आर दे बिहेविंग राइट, ये भी चेक करना बहुत ईजी है। इज द सिचुएशन राइट, ये भी ठीक है, लेकिन एम आई थिंकिंग राइट, ये चेकिंग, ये परखना, ये जहां डायरेक्शन इनवर्ड चला जाएगा तो मिरेकल्स क्रिएट होने लगेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले ही देखा कि बाहर का अगर हमने परख भी लिया सही, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते।
1: जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो जो हाथ देखने वाले और वो कुंडली, उनके पास कितनी दर्द में जाते हैं लोग, कितने फेथ में जाते हैं लोग, जब वहां आपकी इंटेलिजेंस को इतना, हमको तुम इतना भी बेवकूफ तो मत समझो ना यार। और ठीक है, मैं अपने अंदर परख के बोल रहा हूँ कि राइट नाउ आई एम एंग्री, फाइन, लेकिन इतना कोई करे तो क्या एंगर भी नहीं आएगा?
2: एंगर भी नहीं आएगा तो लाइन अप हो ही नहीं सकती। अगेन हाउ मच वी हैव टू गो बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू इट। दूसरा चाहे कुछ भी करे, गुस्सा तो आता ही है, अब ये लाइन नहीं हो सकती। ये बिलीफ सिस्टम को भी तो परखना है कि क्या ये बिलीफ सिस्टम सही था। जैसे आपने अभी कहा, कोई मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट करे तो वो तो कमी
1: डाउट नहीं करे, कम समझे आपको,
2: तो वो किसकी परखने की शक्ति की कमी है? वो सामने वाले की परखने की शक्ति कमी है। लेकिन उसने अगर जैसा भी समझा, जो भी समझा, गुस्सा हम हुए मतलब ईगो हमारी डिस्टर्ब हुई ना, अहंकार हमारा डिस्टर्ब हुआ। उसने जो समझा जो किया वो उस आत्मा का कर्म, हमारा अहंकार डिस्टर्ब हुआ तो हमने अभी परखना किसको है? इवन ये भी तो एक बिलीफ सिस्टम है ना। आप अपने आप को इस बिलीफ सिस्टम पे वर्क करें अभी और आप देखिए चेंज हो जाएगा। कोई अगर मेरी इंटेलिजेंस पे डाउट करे, कोई मुझे कम इंटेलिजेंट समझे, तो मुझे तो गुस्सा आना ही है ना। ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, ये तो एक प्रोग्रामिंग है। इस प्रोग्रामिंग को परख कर अब चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हर बार अगर प्रोग्रामिंग को नहीं चेक किया, हर बार डिसीशन गलत हुआ, हर बार गुस्सा करते गए, तो संस्कार हमारा बन रहा है। आज इस प्रोग्रामिंग को चेंज कीजिए।
1: कैसे करेंगे बताइए?
2: हर बार जब भी कोई मुझे अंडर एस्टिमेट करता है या मुझे इंटेलिजेंस को मेरी नहीं ठीक से इवैल्यूएट करता, तो मुझे तो गुस्सा आता ही है। प्रोग्रामिंग चेंज। दूसरा मुझे उसी नजरिए से देखेगा जो उसकी लेवल है, समझने की परखने की जो भी है वो उसकी है। मुझे ये पता है हु आई एम, तो मुझे डिस्टर्ब होना, हर्ट होना, ये आज तक मेरी चॉइस थी, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज इन माई ईगो। ईगो मीन्स मैं ये हूं और लोगों को मुझे उसी नजरिए से देखना चाहिए। फ्रॉम टूडे आई एम इन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। हम भी तो शिफ्ट हो रहे हैं। आज से मैं अपने स्वमान में हूँ, अहंकार में नहीं हूँ। जब तक हम अपने अहंकार में थे, हमने कहा गुस्सा तो आना ही है, गुस्सा तो आना ही है, बोला फिर गुस्सा किया, डिसीशन लिया कि गुस्सा तो करना ही है, फिर उसके के साथ व्यवहार भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ ही होगा, कर्म गलत भाग्य गलत। आज से चेंज कि अगर कोई मुझे उस तरह से समझे भी, व्यवहार भी करे, मुझे अपने आप के बारे में जानना है, हु एम आई। फोकस हैज टू कम बैक टू आवर सेल्व्स। जितना हम अपने ऊपर फोकस करेंगे, हमारी पावर बढ़ती जाएगी।
1: मुझे किसी ने आज से 1980 में बोल दिया था डिस्कशन में, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस, हम इंटेलेक्चुअल्स की बात है, आप तो छोटे मोटे एक्टर हो, अनपढ़ हो। इमेजिन क्या लड़ाई हुई मेरी।
2: आपकी लड़ाई हुई उससे उस बात पे? ओहो, अच्छा।
1: मुझे बताना पड़ा कि मेरी भी नॉलेज है।
2: तो कैसे बताया?
1: नॉलेज बताया, गुस्सा किया, छोड़ के चला गया, फाइनली वो पार्टी से निकल गया मैं।
2: एक्चुअली अगर हम देखना अभी साक्षी होकर अब अगर देखें, क्या आपको आज भी लगता है वो रिस्पॉन्स राइट था?
1: देखिए, वो रिस्पॉन्स की बात नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं, ये आपसे नहीं उठा सकते आप।
2: नहीं, अभी हम उसको नहीं, उसको नहीं डिस्कस करना, उसको नहीं बात करनी कि उसने राइट बोला कि नहीं। आप सिर्फ अभी परखे कि उस दिन वो रिस्पॉन्स राइट था क्या?
1: इसलिए राइट था कि अंदर रख के मैं घर ले जाता तो उससे बेटर था, मुंह पे बोल दिया।
2: अंदर रखना भी क्या राइट था क्या?
1: अंदर नहीं रखना मुझे नहीं आता था तो मैं बाहर निकल।
2: दैट्स ओके, नहीं आता था इज फाइन। आज हम चेक करें क्या आज, क्योंकि हम ग्रो कर रहे हैं ना, ये कोटेशन इतनी
1: जरूरी था उसको भी समझाना।
2: क्या समझाना जरूरी?
1: उसको भी मालूम होना चाहिए कि इस तरह बात नहीं करे लोगों से।
2: हम हमेशा दूसरों को समझाने की कितनी चिंता करते हैं।
1: जरूरत थी मुझे मेरी इंटेलिजेंस को कम समझने में।
2: उन्होंने जो कहा सही या गलत, लेट्स लीव दैट राइट नाउ। अपने आप को सिर्फ चेक करना है, क्योंकि दिस इज रियलाइजेशन पावर। मेरा वो रिस्पॉन्स, गुस्सा करना, एंड और क्या किया, लड़ाई की उसके साथ?
1: हाँ, उसके बात नहीं की बहुत दिन तक।
2: अच्छा, लड़ाई की बहुत दिन तक, बात नहीं की, पार्टी से वॉकआउट कर गए। आज भी लगता है वो रिस्पॉन्स राइट था?
1: हाँ, राइट।
2: आज भी लगता है कि देयर वाज नो बेटर रिस्पॉन्स टू दैट?
1: क्या करेंगे भाई, आप किसी के घर जाओ तो वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल और हमको ऑर्डिनरी बोले तो?
2: अगर हम रियली इंटेलिजेंट है,
1: कई बार इससे झगड़ा हुआ मेरा कई बातों पे। मैं किसी के घर गया, यूजली तो रहता नहीं, उन्होंने बोला हम गाड़ी भेजेंगे। हाँ। एक कोई घटिया सी गाड़ी भेज दी, घर गए तो उनके पास पोश में मर्सिडीज खड़ी थी।
2: हाँ।
1: और खुद ऑफिस वो लेके गए।
2: हाँ।
1: मुझे बहुत बुरा लगा, मैं घर छोड़ के होटल चला गया।
2: हाँ।
1: खुद के लिए मर्सिडीज।
2: हाँ।
1: और मेरे लिए एक पुरानी कोई।
2: दिस इज वेयर वी आर अलाउइंग, हम अलाउ कर रहे हैं कि दूसरे हमारी शक्ति को टप टप टप टप टप डिप्लीट कर दे।
1: Somebody is not treating you well.
2: Somebody is not treating you well. Let me at least treat myself well.
1: That is what I did.
2: No, we didn't.
1: बिल्कुल, मैंने बोला ठीक है, I afford a 5-star, so I treat myself better.
2: आपने अपने आप को ट्रीट बेटर नहीं किया लेकिन उस दिन, क्योंकि आप वहां से भले हट गए, आप भले वापस चले गए, आप भले होटल 5-स्टार में चले गए, तो आपने अपने आप को ट्रीट तो सिर्फ फिजिकली वेल किया ना, इमोशनली अंदर क्या क्या चला, चाहे वो इस इंसिडेंट में जब किसी ने हमें ट्रीट वेल नहीं किया, चाहे पहले वाले इंसिडेंट में कि किसी ने कहा आपको नहीं समझ में आएगा, उन्होंने हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने हमें अच्छा ट्रीट नहीं किया, उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया, हमने अपने आप को क्या किया? दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: अपने आप को क्या किया सिस्टर?
2: अपने आप को,
1: आप मेरे घर आएंगे,
2: सी अगेन, लेट्स नॉट फोकस ऑन देम।
1: मैं आपको एक सड़ी गंदी गाड़ी भेज दूं।
2: अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। उन्होंने क्या किया इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या मैंने अपने आप को अच्छा ट्रीट किया उस दिन? स्टेबिलिटी, पीस एंड पावर मेरी नेचर थी, किसी और ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो उससे ज्यादा बुरा तो मैंने अपने आप को ट्रीट किया उस दिन। दिस इज द रियलिटी। रिफ्लेक्ट बैक राइट नाउ, सी आज हमने क्या किया। दूसरे ने क्या किया? दूसरे ने सिर्फ गाड़ी नहीं दी हमें। एक और ने क्या किया? एक और ने सिर्फ बोला आपको समझ नहीं आएगा, उतना ही ट्रीट बैडली किया। अगर हम उसको वैसे कहते हैं कि दे ट्रीटेड मी बैडली, दे अंडर एस्टिमेट मी, मैंने अपने आप को क्या किया उसके बाद? मैंने गुस्सा गुस्सा गुस्सा गुस्सा, इतना गुस्सा अंदर, इतनी इतनी गलत थॉट्स क्रिएट की।
1: इतना पछता है कि मैं इसके घर आया, क्योंकि वो रोने लगे, प्लीज आप एक दिन आइए और घर तो चरण रखिए।
2: उसके बाद अपने आप को कैसा ट्रीट किया इज ओनली द रियलाइजेशन राइट नाउ। उन्होंने क्या किया इज नॉट इम्पोर्टेंट।
1: अगेन, इफ दे डोंट ट्रीट मी वेल, आई ट्रीट माई सेल्फ वेल।
2: वी डिडंट ट्रीट आवर सेल्फ वेल दैट डे। हमने नहीं किया। आपने उस दिन गुस्सा किया, आप अंदर परेशान हुए,
1: अपने आप को मैंने कोसा,
2: अपने आप को कोसा, तो उन्होंने तो कोसा भी नहीं,
1: मैंने तो कोसा।
2: तो हू ट्रीटेड हू बैडली? दिस इज परखने की शक्ति। नाउ एटलीस्ट आज हमें इसको रिफ्लेक्ट करके चेंज करना पड़ेगा।
1: आई स्टिल फील कि मैंने अच्छा किया उस दिन, ऐसा किया, उसके बाद में कभी किसी गरी नहीं।
2: वो लगता है उस दिन अपने आप को कोसना, अपने आप को अब्यूज
1: कर, सुधरा वो सुरेश ओबेरॉय की किसी की बातों में
2: नहीं सुधरा, वो
1: नहीं ये झूठ बोल रहे हैं,
2: वो सुधरा उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं सुधरा बाहर। हाँ, उसने वो डिसाइड किया हमने कि आगे से हम किसी के घर नहीं जाएंगे। पहली बात तो वो भी पता नहीं सही है कि नहीं है सही बात,
1: वो तो है मेरा रूल ही है वो तो।
2: दिस इज व्हाट हैपेंस, एक पास्ट एक्सपीरियंस के कारण, एक बिलीफ सिस्टम जो बनता है, एक पास्ट की बात को लेट गो नहीं करते, उस पास्ट को हर बार प्रेजेंट में यूज करते जाते हैं, हर बार प्रेजेंट में यूज करते जाते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, वी नॉट लेट गोइंग वन ओल्ड 30 इयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस। पास्ट में वो हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट उस दिन हमने सपोज ये रूल भी बना लिया कि मैंने आगे से ऐसे नहीं करना, विच इज फाइन, ठीक है, वो भी ठीक है, चलो। लेकिन क्या हमने उस दिन अपने आप को अच्छा ट्रीट किया? किसी ने गलत व्यवहार किया, मैंने जो रिस्पॉन्ड किया, हमें आज भले पुरानी बातें, भले कल की बातें,
1: कोई गलती की तो अपने आप को पनिशमेंट नहीं दो?
2: पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट तो हमें औरों को भी नहीं देनी, तो अपने आप को क्या देंगे? हम ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी पर हैं। अगर हमने पनिश कर दिया ना अपने आप को, फिर हम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे।
1: हुआ ना, उसके बाद कहीं नहीं रहा ना।
2: उसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हुए कि कहीं रहे नहीं, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म नहीं हुए,
1: ना रहे ना गाड़ी मांगी ना,
2: लेकिन
1: कुछ।
2: ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन तो ये होनी थी कि कोई अगर ठीक व्यवहार नहीं भी करे तो मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। इफ पीपल डोंट ट्रीट मी वेल इट्स फाइन, आई विल।
1: इतना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि दोनों राइट है, फिर ये भी करना है ट्रांसफॉर्म वो भी, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था।
2: आई नीड टू ट्रीट माई सेल्फ वेल, पीपल माइट नॉट ट्रीट मी नाइसली, इट्स फाइन, आई कांट चेंज देम। लोग मुझे कैसा ट्रीट करते हैं, लोग मुझे कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, लोग मुझे कितनी वैल्यू करते हैं, आई कैन नॉट चेंज दैट। लेकिन हर बार जब दूसरों ने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की जितना मैंने सोचा कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या जितना लोगों ने उस तरह से मुझे नहीं ट्रीट किया जितना मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए, उस दिन हर बार मैंने ही अपने आप को अच्छा ट्रीट नहीं किया, उस दिन मैंने ही अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दी, उस दिन उनसे ज्यादा मैंने अपना नुकसान किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हुआ? संस्कार तो पक्का होता गया। आज भी अगर आप चेक करेंगे, अगर आप अभी भी ये फील करेंगे, आई थिंक व्हाट आई डिड दैट टाइम वाज राइट।
1: क्या प्रोटोकॉल मैंने मांगा? मैंने कोई बोला था कि आप आइए?
2: अगेन
1: मैंने कुछ मांगा?
2: देखो कितना जस्टिफिकेशन।
1: मैंने बोला सिर्फ गाड़ी ड्राइवर भेजना प्लीज, आप मत आना, मेरी तरफ से मैंने इतना बोला।
2: जस्टिफिकेशन फॉर आर ओन बिहेवियर, देखो जस्टिफिकेशन हो रहा है ये अभी, मेरी शक्ति का नुकसान हो रहा है। उन्होंने तो सिर्फ गाड़ी नहीं भेजी, मैंने तो अपनी पावर ही गवा दी।
1: गाड़ी भेजी लेकिन एकदम खटारा भेजी।
2: नहीं, उन्होंने नहीं भेजी ना जो चाहिए थी, उस एक
1: चाहिए थी उनके पास रख के,
2: वट एवर, मैंने तो
1: के लिए रखे।
2: पर मैंने तो इसी, कितना सारा जस्टिफिकेशन उनके कर्म के बारे में हो रहा है, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया, उन्होंने गलत किया। मैंने क्या किया अपने साथ उस दिन?
1: मुझे सिंपल ऐसा लगा, तुम, मैं इस गाड़ी के काबिल नहीं और तुम हो,
2: खुद
1: जा रहे हो अपने ऑफिस।
2: उन्होंने क्या किया? नहीं, मैंने क्या किया?
1: मैंने क्या किया?
2: मैंने अपने आप के साथ कैसा व्यवहार किया उस दिन?
1: अपने आप को पहले तो डांटा, कर्ज किया।
2: हाँ।
1: दूसरा बोला कि आज के बाद तू जिंदगी में ये
2: नहीं करेगा। इतना सब जो किया ना, इतना सब जो किया, तो उन्होंने तो उतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं की थी मेरी।
1: आई एम वेरी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद माई सेल्फ।
2: दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट, दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट। अगर स्ट्रिक्ट होना है ना अपने आप के साथ, तो स्ट्रिक्ट इस लेवल पर होना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी कर ले, सामने वाला कुछ भी बोल दे, आई एम गोइंग टू बी सो स्ट्रिक्ट कि कोई मुझे हिला नहीं सकता। ये स्ट्रिक्ट
1: बोले जा भाई, एक काम करो, बाहर निकलो एयरपोर्ट से,
2: एक
1: राइट हैंड पे जाना, वहाँ रिक्शा मिलेगी, रिक्शा में बैठ के आ जाना, मैं पैसे दे दूंगा।
2: उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए।
1: व्यापी सर,
2: प्रैक्टिकल लाइफ की ही तो बात हो रही है ये।
1: सुधार तो इसी तरह होगा ना?
2: सुधार किसका?
1: मेरा हुआ ना?
2: नहीं हुआ। सी, सुधार नहीं हुआ। आज भी हम फील करते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स राइट था। अगर आज भी हम फील करेंगे कि वो रिस्पॉन्स राइट था, इट विल मीन हम आज भी हम वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे।
1: हाँ,
2: तो फिर सुधार का
1: अब मैं सिचुएशन ही नहीं आने दूंगा ना।
2: कोई और सिचुएशन तो आ जाएगी ना, सिमिलर, आइडेंटिकल सिचुएशन नहीं आएगी। आइडेंटिकल नहीं आएगी ना, कोई और तो कितनी सारी आएंगी जहां आपको लगेगा कि लोगों ने आपको वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा करना चाहिए, उतना सम्मान नहीं दिया जितना देना चाहिए। सिचुएशंस आएंगी नहीं उसके बाद, इस 30 सालों में, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद, अब तक 30 इयर्स आपने कहा ना, इस 30 इयर्स में इतनी कितनी सिचुएशंस आई होंगी ऐसे कि जहां लोगों ने वैसा ट्रीट या रिस्पेक्ट नहीं किया होगा जितना आप समझते हैं कि मिलना चाहिए, आई होंगी या नहीं आई होंगी?
1: बहुत आई,
2: बहुत आई होंगी। एंड मेजोरिटी में आप डिस्टर्ब हुए ना हर बार?
1: मेजोरिटी में हुआ, कहीं बहुत बार चला गया तो वापस, काम है इससे बोल दिया और निकल गया, उसके बाद उनके भर घर कभी नहीं गया, कई बार हुआ।
2: तो फिर किसने किसका नुकसान किया? कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुई? जहाँ आप बोल रहे हो मैं सुधर गया, कहाँ सुधर गया मैं? आप कह रहे हैं मेरे अंदर मैं स्ट्रिक्ट हो गया, कहाँ स्ट्रिक्ट हो गए? यही अगर उस
1: बॉम्बे जाके किसी के घर नहीं रहना, वो तो स्ट्रिक्ट हो गया ना।
2: बट उससे क्या हुआ? और वो सिचुएशन आई नहीं, और सिचुएशंस आ गई। सी वो एक सिचुएशन नहीं आई ना फिर से, आपने कहा मैं स्ट्रिक्ट हो गया।
1: मैंने एक बड़े वीवीआईपी के साथ बैठा हुआ था,
2: हाँ।
1: तो वो चीफ गेस्ट था और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर, दोनों मतलब चीफ गेस्ट ही थे बराबर के। तो बाद में कोई और बड़े वीआईपी आए तो हम लोग स्टेज के सामने बैठे थे, तो हमारे सामने जगह थी वहाँ और सोफे ला के लोग लगाए उनको बिठा दिए, और ये बार बार बोले मैं तो घर जा रहा हूँ, मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरे सामने दूसरे लगा दिए।
2: तो फिर आपको
1: तो मैंने उसको समझाया बहुत, मैंने बोला रहने दो ना, आप अपना स्पीच दे के जल्दी चले जाना, उठ के घर चला गया वो।
2: तो वो बात सही लग रही है अब कि वो उठ के चला गया,
1: उनको भी तो समझ होना चाहिए।
2: उनको नहीं, वो उठ के चला गया वो बात सही लग रही है।
1: He thought it was right. मैंने गया, मैं तो थोड़ा दोस्त था मेरा वो आदमी।
2: हाँ लेकिन हाँ, आप कितनी बार उठ के चले गए थे?
1: हाँ, मेरा फ्रेंड नहीं होता तो मैं चले गया।
2: पावर, आत्मा कितनी वल्नरेबल है, कितनी वल्नरेबल है। रिस्पेक्ट ऐसे मांग रहे, रिस्पेक्ट दो। मेरी रिस्पेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? मेरी रिस्पेक्ट इस पे डिपेंडेंट है कि मैं कहाँ बैठूंगा, कैसे चलूंगा।

0: गाड़ी
1: कौन
0: कौन
1: सी
0: सी
1: गाड़ी
0: आएगी,
1: आएगी।
0: मकान कौन सा होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी रिस्पेक्ट उन चीजों पे डिपेंडेंट
1: दुनियादारी है कि नहीं सिस्टम?
0: है। लेकिन अगर सामने वाला वैसा नहीं करेगा जैसा हम सोचते हैं कि राइट है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखेंगे ना। हम कितने वल्नरेबल हैं, इतने कमजोर हैं कि किसी ने वो नहीं दिया जो हमें चाहिए था, तो हम हिल ही गए पूरी तरह से अंदर।
1: आप ही तो कई बार कहते हैं ना, दूसरे का भी मान देना चाहिए, दूसरे को मान देना
0: हाँ, वो
1: चाहिए।
0: उनको देना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन जिसने नहीं दिया हमें, तो हम अपने को नहीं मान देंगे, हम अपने सम्मान में नहीं
1: मैं तो
0: रहेंगे।
1: समझा कि अपने को मान देना है कि चलो भाई, जहाँ जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहां नहीं रहना, खत्म।
0: कौन वॉकआउट करेगा ऐसी सिचुएशन से जो इतना डिस्टर्ब हो जाएगा कि वहां बैठ ही नहीं सकता। अब उसके बाद वही वॉकआउट करेगा ना, कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही उतनी नहीं है कि वो एक सोफे के बिना बैठ नहीं सकता अब उस जगह के ऊपर। ये सेल्फ रिस्पेक्ट
1: नहीं, उसके सामने आगे मैं तो उसकी
0: वही
1: बात
0: ना,
1: कर रहा
0: मतलब
1: हूँ।
0: फर्स्ट रो पे नहीं मिली ना सीट बैठने
1: नहीं,
0: के,
1: बैठा तो फर्स्ट में था,
0: बट उसके
1: वो
0: बाद तो
1: सामने
0: वो
1: लाके और
0: सेकेंड रो हो गई ना,
1: सेकंड हो गई,
0: तो एक सोफा नहीं
1: तो थर्ड
0: मिला,
1: भी हो गई।
0: एक गाड़ी नहीं मिली, एक सलाम नहीं मिली, एक प्यार से किसी ने बात नहीं किया, एक किसी ने मुझे अच्छा ट्रीट नहीं किया, एक किसी ने कह दिया आपको ये बात समझ नहीं आएगी, एक किसी ने कहा आप तो इंटेलिजेंट नहीं है। 30 इयर्स में कितनी सिचुएशंस आ गई, सेम सिचुएशन तो आनी ही नहीं, फिर से डिफरेंट आई। अगर उस दिन जो फिर वापस जाते हैं, उस दिन आपने एक रूल बनाया कि इसके बाद मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, अगर उस दिन एक अलग रूल बना लेते हैं कि इसके बाद लोग मुझे कैसा भी ट्रीट करें, कैसा भी ट्रीट करें, क्योंकि मैं जो हम ध्यान रख सकते हैं हम रख सकते हैं, लेकिन सब चीज का हम ध्यान नहीं रख सकते। इट्स नॉट इन आर कंट्रोल, द वर्ल्ड इज नॉट इन माई कंट्रोल। लेकिन अगर हम उस दिन ये रूल बना लेते हैं कि किसी का व्यवहार, किसी की बाह्य रिस्पेक्ट मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं हिला सकती, अगर वो रूल उस दिन बना लिया होता, 30 इयर्स में कितनी एनर्जी बच जाती। बाह्य चीजों के कितने रूल्स बना लेते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें ऐसा हो, ये सब बाहर के रूल्स हैं, अंदर के लिए तो रूल ही नहीं बनाया कभी, और उस दिन भी नहीं बनाया। फिर 30 साल में वही संस्कार वर्क होता गया, आज भी अगर फील करेंगे कि वो राइट था, तो और 30 साल फिर उसी संस्कार से चलेंगे, चेंज नहीं आएगा। अभी भी जब हम चेक कर रहे हैं, परख रहे हैं उस सिचुएशन को, तो हमें उनकी ही गलतियां दिखाई दे रही हैं सारी। हमारा फोकस किस पर होना है? दिस इज द पावर टू डिसर्न। मैं उस दिन डिस्टर्ब हुआ, मेरा बिलीफ सिस्टम ये था कि रिस्पेक्ट मीन्स, सी व्हाट इज आवर बिलीफ सिस्टम, रिस्पेक्ट मीन्स दिस, रिस्पेक्ट मीन्स आई एम अनडिस्टर्ब्ड, दिस इज माई रिस्पेक्ट टूवर्ड्स माई सेल्फ, दिस इज माई डिग्निटी फॉर माई सेल्फ। वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन दूसरे ने गाड़ी नहीं दी, किसी ने फूल नहीं दिया, किसी ने सलाम नहीं किया, उन छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब। आज एक नया रूल बनाते हैं
1: जी,
0: कि लोग मुझे क्या सम्मान देते हैं, वो भी आउटवर्डली सम्मान। ये तो एक्चुअली सम्मान भी नहीं है, इसको सम्मान नहीं कह सकते। सम्मान तो वो होता है जो वाइब्रेशन कोई मुझे देता है, रिस्पेक्ट तो उसमें है। कोई गाड़ी आपको दे भी सकता है, बड़े से बड़ी गाड़ी, लेकिन वो अंदर अगर आपके लिए अच्छा नहीं सोचे तो उसको रिस्पेक्ट बोलेंगे? पहली बात तो वो भी रिस्पेक्ट ही नहीं है, रिस्पेक्ट गाड़ी में तो है ही नहीं, रिस्पेक्ट तो उसकी भाव और भावना में। अभी आपने पढ़ा था ना शुरू में, डोंट गो बाय द आउटवर्डली बिहेवियर, सी द इंटेंशन, द इंटेंट, द मोटिव ऑफ द पर्सन। तो रिस्पेक्ट बिहेवियर में नहीं, रिस्पेक्ट तो इंटेंशन में। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिले,
1: नहीं सिस्टर, मैं ये इंटेंशन की बात अगले एपिसोड पे बात करूंगा, क्योंकि उनकी इंटेंशन से ये पता चलता है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा होता या उनके घर चीफ मिनिस्टर आ रहा होता, तो वो अपनी मर्सिडीज जो घर पे रखी हुई है वो घर पे रहने देते क्या?
0: वो क्या करते, और
1: तो इंटेंशन उनकी रॉन्ग थी।
0: वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगेन, सी डीप बिलीफ, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन नॉट। आप कितने लोगों को इस तरह से एनालाइज करेंगे, कितनी एनर्जी जाती है, कितना एनालाइज हम कर रहे हैं, उतनी देर में अगर हम फोकस अपने ऊपर कर लेते, इवन इफ इट मेंट

0: कि ठीक है मुझे ये सही नहीं लगा, चाहे वो इतनी छोटी बात या बड़ी बात, मुझे ये सही नहीं लगा, मैं अभी यहाँ नहीं रह सकता, इवन देन। लेकिन अंदर की स्थिति कैसी थी, अंदर जो डिस्टर्ब हुए, अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट की स्थिति से हिले, फिर उनको इतना अंदर क्रिटिसाइज किया होगा, उनको कितनी नफरत क्रिएट
1: की। आज तक नहीं गया फिर उनके घर,
0: आज तक फिर उनके घर भी नहीं गए,
1: नहीं एक बार भी नहीं गए।
0: ये है लैक ऑफ अपने आप को अच्छा ट्रीट करना। जब तक हम सब अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट कर पाएंगे, हम दूसरे की कहाँ रिस्पेक्ट कर पाएंगे। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ओनली दिस, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी इतनी इंटरेस्टिंग है। सारा दिन कितनी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों में स्पिरिचुअलिटी मीन्स फोकसिंग ऑन द स्पिरिट, अपने पर फोकस करके चलना।
1: सर अगले एपिसोड में बात करते, लेकिन मैं उनके घर कभी जाऊंगा भी नहीं,
0: वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: ओम शांति।
1: थैंक यू।
2: पावर टू डिसर्न विल बी एक्यूरेट when we go beneath surface behavior and see the intentions and the sanskars which caused that behavior. It gives us an accurate understanding not only of other people but also an understanding of our own self. It is the power to discern our sanskars, belief systems, thoughts, feelings, attitudes, behaviors, and decide what is right for us, what is healthy for us, irrespective of the situations and other people's behavior. We need to pause and ask ourselves, am I thinking right? What will be the consequence of my thoughts? What will be the result if these thoughts come into words or actions? Are these thoughts increasing soul power or depleting me? Discern our thoughts and then decide the response to people's behavior. We cannot control how people treat us. Important is to treat ourselves well by remaining stable and not wasting our energy. Self-respect means not getting disturbed in response to people's lack of respect.
3: If you wish to discuss your problem, or have a question to ask, or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

नमस्कार, मैं हूँ पेंचल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स। क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: आनंद अच्छे सुर पुण्याचा नाद अपुन एकतायत रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: इतिहास से, भूगोल से,
3: समाज से, संस्कार से,
2: आधुनिकता से और विचार से,
3: खूबियों से भरा अनोखा है मेरा भारत।
2: एक महान राष्ट्र है मेरा भारत,
4: अतुल्य भारत।
3: चलिए आपको बताते हैं
2: भारत की 69 ऐसी विशेषताओं के बारे में
3: जो बनाती हैं भारत को पूरी दुनिया से अलग
2: और प्रदान करती हैं हमें एक गर्वित भारतीय नागरिक होने का हक।
3: क्या आपको पता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्रधान संस्कृति है? ये कोई गर्वोत्ति नहीं बल्कि वास्तविकता है। हजारों वर्षों से भारत की सांस्कृतिक प्रथाओं, भाषाओं, रीति रिवाजों आदि में विविधता बनी रही है जो कि आज भी विद्यमान है, और यही अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। भारत के निवासी और उनकी जीवन शैलियाँ, उनके नृत्य और संगीत शैलियाँ, कला और हस्तकला जैसे अन्य अनेक विधाएं भारतीय संस्कृति और विरासत के विभिन्न वर्णों को प्रस्तुत करती हैं, जो देश की राष्ट्रीयता का सच्चा चित्र उभारते हैं।
2: भारत की विशेषताओं को करते रहिए सलाम।
3: पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो। जय हिंद,
2: जय भारत।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोर सरस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

दैया री दैया।

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: सही श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, जीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: करके टोना टोटका सब तूने हिम्मत हारी। बस में तेरे आज तक आई न चंचल नारी। दे दे साड़ी एक छपा के बात बने अलबेले,
1: बात बने अलबेले।

भगवान ले लो भूखा हिंदुस्तान, ले लो ये मेड इन जापान, ये है लल्लू ये है ज्ञान, ये है कल्लू ये है प्राण, तू क्यों रोता चंद्रभान, माने बेटा मेरी जान, ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान, ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान, बचा ले अपने घर।

सच लो तो आगे ये बात जान तारा तारा, ये बात जान तारा वो पूरा आँखें कतार दिखा मेरा वार, तेरा दिल किया है परा परा, तेरा दिल किया है परा परा वो पुरा।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ।

0: हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहे जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहे जमाना चाहे हमको दीवाना आज हमको

जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे।

आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा।

0: असली थोड़ा हमसे सुनो।
1: सही नाम तो सही तो सही नाम तो सही तो सही नाम तो सही तो सही।

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया, डोरी मेरे पास हो तो सैया तो खींच लूं, जाने ना दूं आंखों

0: बाबलिया।
1: नहीं बापू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए।
0: इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, तू आएगी और मैं सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा।
1: अच्छा बाबू।

बजता था जीवन गीत तो सांसों के